हम आकाशवाणी के शुभपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। आज शुक्रवार है, सक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 22वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 12 जून सन 2026। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा।

0: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रही हैं, एफएमएंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 6 बजने को हैं। हिंदी में समाचार कुछ ही पलों में आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियाँ अपनाने और उन्हें लागू करने के महत्व पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ मिला है।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में चल रहे संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसीबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए ये चिंता व्यक्त की। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति की अनुकूल परिस्थितियां बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने तेजी से अस्थिर होती दुनिया में जोखिम कम करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता लाने, अधिक मजबूती और अतिरिक्त क्षमता विकसित करने के महत्व का भी उल्लेख किया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सत्तेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज किया। सरकार ने कहा है कि वह खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत परिवहन महानिदेशालय ने संघर्ष प्रभावित जल क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 2 दिन के लिए स्विट्जरलैंड की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन और आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन बुडलीगर आर्टेडा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रमुख प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा की शुरुआत की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुआई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं एफएम एंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, आरंभ कर रहे हैं इस मातृ वंदना के।

अभी आपने सुनी समूह स्वर में ये खूबसूरत मातृवंदना कार्यक्रम। वंदना इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए समूह स्वर में एक और खूबसूरत भजन।

अभी आपने सुना समूह स्वर में ये खूबसूरत भजन। कार्यक्रम वंदना इस समय हम आकाशवाणी के शुभपुरी केंद्र से बोल रही हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला भजन सुरेश वाडेकर के स्वर में है।

कौन कितना जीता है, बजाय इसके ये देखो वो कैसे जीता। जीता हो अगर वो कुछ ऐसे, तो जाने के बाद भी वो याद रहता। कुछ ऐसा ही अर्थपूर्ण प्रतिपादन स्वामी राजेंद्र सुरीश्वर जी महाराज अपने प्रवचन में किया करते थे। शायद आज हमारी भी यही कोशिश है कि इस कैसेट के माध्यम से कुछ यादगार चीजें हम अपने सुनने वालों को दे सकें। इस कैसेट की अपनी एक खासियत है। इसमें पहली खास बात यह है कि यह कैसेट सभी रूप इस कैसेट के प्रस्तुत करता है अजय भक्तिपूर्ण सुरीला सफर।

अभी आपने सुना सुरेश वाडकर के स्वर में ये खूबसूरत गुरुदेव का भजन। कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए अनूप जलोटा और शंकर महादेवन के स्वर में ये खूबसूरत कृष्ण भजन।

अभी आपने सुना अनूप जलोटा और शंकर महादेवन के स्वर में ये खूबसूरत कृष्ण भजन। कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम के आखिर में एक और खूबसूरत भजन। स्वर हैं राजन साजन मिस्र के।

0: इस भजन के साथ ही कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.2 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चिंतन। चिंतन में आज का विषय है सेवा। वाचन स्वर है डॉक्टर दिवाकर विद्यालंकार के।
1: सेवा धर्मः परम गहनो योगिनाम अप्यगम्यः, अर्थात प्राणी मात्र की निस्वार्थ भाव से सेवा करना मानव का परम धर्म है। सेवा कर्म को धर्म समझकर अपना अनिवार्य कर्तव्य मानकर करना ही मनुष्य मात्र का धार्मिक अनुष्ठान कहा गया है, जिसकी गहराई को बड़े बड़े योगी भी नहीं जान सके हैं। धर्म शब्द का वास्तविक अर्थ हम भूल चुके हैं। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की उस प्रमुख विशेषता को धर्म कहा गया है जिस गुण के न होने से उस वस्तु का अथवा व्यक्ति का अस्तित्व स्वरूप ही समाप्त हो जाए। जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है जिसके न होने से अग्नि का स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। कहा गया है धारणात् धर्म इत्युच्यते तथा धार्यते अनेन इति धर्मः। ठीक इसी प्रकार महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सेवा कर्म को अपना परम धर्म मानकर अपनाया। गांधी जी ने अपने जीवन के लगभग 14 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रहकर वहां रहने वाले प्रवासी भारतीयों पर अंग्रेज शासकों द्वारा किए जा रहे अन्यायों तथा अत्याचारों का अहिंसात्मक विरोध किया। गांधी जी बैरिस्टर थे, अतः न्यायालयों में भारतीयों पर गोरे अंग्रेजों द्वारा लादे गए अन्यायपूर्ण मुकदमों से कानूनी लड़ाई लड़ने के साथ साथ अंग्रेजी शासन से अहिंसात्मक असहयोग भी करते रहे। इसके लिए प्रवासी भारतीयों द्वारा गांधी जी को भरपूर सहयोग मिलता रहा। अपनी सत्यनिष्ठा, अहिंसा और असहयोग आंदोलनों के चलते गांधी जी गोरे शासकों की आँख की किरकिरी बन गए थे। सत्य, अहिंसा, सेवा आदि मौलिक मानवीय गुणों के प्रशिक्षण के लिए गांधी जी ने वहाँ फिनिक्स नामक स्थान पर आश्रम की स्थापना की थी। ठीक इसी उद्देश्य से जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फार्म की भी सन 1910 में स्थापना की थी, जहाँ बहुत बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष अलग अलग कुटियाओं में रहते हुए अपना भोजन बनाने से लेकर शौचालय सफाई तक का सारा काम स्वयं करते थे। दीन दुखियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए सत्यनिष्ठा और अहिंसा का प्रथम पाठ यहीं सिखाया गया था। वास्तव में फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फार्म ही थे प्रारंभिक प्रयोगशालाएं थी जिनमें गांधीवाद के नाम से सेवा, सत्य और अहिंसा आदि मानवीय गुणों के साथ अनासक्त कर्ममूलक जीवन प्रणाली को कसौटी पर कसकर संसार ने गांधी जी को समझा था। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि गांधी जी ने विलायत में रहते हुए मानवता की सेवा करने के अपने महाव्रत को शिथिल नहीं होने दिया। वे अंग्रेजी शासन की रीति नीति का अहिंसात्मक विरोध करते थे, किंतु अंग्रेजों से नहीं। गांधी जी ने प्रथम विश्वयुद्ध में आहत व्यक्तियों की सेवा शुश्रूषा के लिए वहाँ भारतीय स्वयंसेवकों की टोली बनाकर सेवा का अद्वितीय तथा प्रशंसनीय उदाहरण प्रस्तुत किया था। आगे चलकर सन 1915 में भारत आकर अहमदाबाद में साबरमती आश्रम और वर्धा के निकट सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की। आश्रम वासियों को सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, ब्रह्मचर्य, सेवा धर्म, अस्पृश्यता का विरोध आदि तथा स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अनिवार्य आदर्शों का प्रशिक्षण दिया एवं उन्होंने अपने स्वयं आचरण के द्वारा रचनात्मक उदाहरण प्रस्तुत किए। यहाँ तक कि कुष्ठ रोगियों की सेवा वह स्वयं उनके बीच रहकर करते थे। वर्तमान स्वतंत्र भारत में सेवा धर्म का यह आदर्श हम भारतवासियों के लिए पथ प्रदर्शक बन सकता है।
0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिंतन। चिंतन में आज का विषय था सेवा। वाचन स्वर थे डॉक्टर दिवाकर विद्यालंकार।

अहंकार के। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसारण। आज की कड़ी में गायक स्वर हैं कविता कृष्णमूर्ति के।

ज्ञान तथा भक्ति में भेद संबंधी गरुड़ के प्रश्न का उत्तर देते हुए काकभुशुंडी कहते हैं, जीव ईश्वर का अंश होता है, अतः वो स्वभाव से ही अविनाशी, चैतन्य तथा निर्मल होता है। किंतु माया बड़ी बलवती होती है और जीव उसके प्रभाव से अपने को मुक्त नहीं रख पाता। वो माया के वशीभूत होकर अपने आप बंध जाता है। इस प्रकार जड़ और चेतन के बीच ग्रंथि आ जाती है और जीव आवागमन के भंवर में पड़ जाता है। अज्ञान रूपी अंधकार में वो गांठ दिखाई नहीं पड़ती और जो दिखे ही नहीं उसे खोलें कैसे। हरि कृपा से मन में यदि श्रद्धा का आविर्भाव हो तो धर्माचार और आस्तिकता के अवलंबन से निवृत्ति और विश्वास उपजता है।

0: अभी आपने सुना श्री रामचरितमानस का संगीतमय प्रसारण। आज की कड़ी में गायक स्वर थे कविता कृष्णमूर्ति के। इस समय प्रातः के 6:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए कृषि सामयिकी में सुनिएगा फसलों में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, और इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मुकेश कुमार भार्गव।
1: बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, उन बदलावों के साथ हमारी जो खेती में पोषक तत्वों की श्रृंखला है उसका समन्वय करते हुए समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाना भी बहुत जरूरी है। यह मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं कि आप प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, रासायनिक खेती ये आजकल सुन रहे हैं, इसके साथ साथ एक सबसे महत्वपूर्ण है इन सब के बीच की बात है समन्वित खेती में पोषक तत्व प्रबंधन। तो पोषक तत्व प्रबंधन के लिए सबसे पहले अभी आप लोगों के खेत खाली होंगे, उन खाली खेतों में गोबर आधारित जो भी खाद है आपके पास, चाहे वो कंपोस्ट खाद हो, नाडेप खाद हो, परमी कंपोस्ट है, घनजीवामृत है, उसको आप खेत की आखिरी तैयारी के समय जुताई से पहले मिला दें और 5 से लेकर 10 टन प्रति हेक्टर के मान से मिला सकते हैं। यदि बर्मी कंपोस्ट है या घनजीवामृत है 2 से 5 टन भी मिला सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण फसल के लिए लाभकारी परिणाम देगी। साथ ही साथ किसान भाइयों, जो किसान भाई ने हरी खाद के रूप में सनई है, डेंचा है या मूंग है, उड़द की खेती की है, कहीं कहीं मूंगफली की भी खेती करते हैं, तो उसका जो रेसिड्यू है या उसके जो अवशेष हैं उसको भी मिट्टी में मिला सकते हैं। और डेंचा सनई तो मिट्टी में पलटाई करीब 25-30 दिन पर कर देते हैं, उसमें मिट्टी में जैविक जो अंश है, जीवांश है जिसको कहते हैं, उसकी एक बहुत अच्छी वृद्धि होती है और फसल को लाभ होता है। तो ये पूरी श्रृंखला, चाहे गोबर की खाद हो, हरी खाद देना, ये समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन की श्रृंखला में ही आते हैं। इसके बाद जब हम फसल बोने जा रहे हैं, कौन सी फसल बो रहे हैं, अनाज बाली बो रहे हैं, धान बोएंगे या मूंगफली बोएंगे, सोयाबीन बोएंगे, उसके लिए मिट्टी का परीक्षण यदि आपने कराया हुआ है तो उसके अनुसंधान रूप, यदि नहीं कराया है तो अभी भी करा सकते हैं। हमारी शिवपुरी में कई मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला हैं, वो आजकल तो कई प्राइवेट सेक्टर में भी कर रहे हैं, तो इनसे आपको जांच के उपरांत पता चल जाएगा। तभी हमको रासायनिक उर्वरक जो हमारे DAP है, NPK है, पोटाश है, यूरिया है, सुपर है, अलग अलग श्रृंखला होती हैं, और किसान भाई DAP के पीछे पड़े रहते हैं। मैं तो कहूंगा आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश तीनों एक में ही आते हैं, उसका प्रचलन मिल रहा है। यदि नहीं है तो हम अलग अलग भी कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं, उत्पादन में कोई कमी नहीं आती। तो ये समन्वित और अनुशंसित मात्रा में देना बहुत जरूरी है रासायनिक उर्वरकों का। इसके साथ साथ किसान भाइयों, कुछ जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर इनको कहते हैं, जो दलहनी फसलों के लिए जैसे राइजोबियम है, और अनाज वाली फसलों के लिए एजिटोबैक्टर है, और धान के लिए ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको BGA कहते हैं, तो नील हरित शैवाल, तो इससे हम बीजोपचार कर रहे हैं। तो बीजोपचार के लिए करीब 10 ml प्रति किलोग्राम बीज के मान से जैव उर्वरक से उपचार कर लेते हैं तो वो बड़े लाभकारी होता है। साथ ही साथ फास्फोरस सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया, इससे भी 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के मान से उपचार करने से जो फास्फोरस हमने पहले से दी है वो पौधों को पूरी फसल को उपलब्ध नहीं हो पाती, या केमिकल रिएक्शन के माध्यम से जमीन में फिक्स हो गई है, तो उसको वो घुलनशील बनाते हैं। यहाँ किसान भाइयों में एक सुझाव भी देना चाहूंगा, इन रसायनों को आपने दिया है वो जमीन की उत्पादकता बढ़ाने में लाभकारी के लिए जैव उर्वरकों के द्वारा उनको उपलब्ध फॉर्म में लाने के लिए आप करीब 20-25 किलो मिट्टी ले लें या रेत ले लें, उसमें जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम है, एजिटोबैक्टर डाल दें,

0: और खेत की आखिरी जुताई के समय भुरकाव कर दें, तो वो बैक्टीरिया बढ़ के पूरे खेत में प्रसारित हो जाते हैं और आपकी जो जमीन है उसमें घुलनशील फॉर्म है सल्फर या जो फास्फोरस है या जो भी पोषक तत्व है उसको एक लाभकारी परिणाम देते हैं। इसके साथ किसान भाई जब हम फसल बोते हैं तो बोते समय हमको आधी मात्रा अनुशंसा की अनुरूप उर्वरकों की देनी चाहिए और बची हुई शेष मात्रा जैसे हमारी जो धान वाली फसल है तो खड़ी फसल पे दी जाती है। लेकिन जब दलहनी फसल की बात करते हैं तो दलहनी फसलों में बहुत कम आवश्यकता होती है क्योंकि नाइट्रोजन स्थिर करने वाले इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं दलहनी फसल की जो जड़ों में पाए जाते हैं तो वो अपने आप स्वतः वातावरण से नाइट्रोजन लेते हैं और फसल को लाभ कराते हैं। आवश्यकता ये है कि हमको जो इनका उपचार करके एक टीकाकरण करना चाहिए वो बहुत जरूरी है। इस प्रकार आप देखें ये एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन प्रणाली में एक बार मैं फिर किसान भाइयों से अनुरोध के साथ कहना चाहूंगा, इससे आपकी फसल की लागत भी कम होगी और उर्वरक की जो रासायनिक निर्भरता है वो भी कम होगी। इसके लिए आप गोबर की खाद चाहे वो नाडेप खाद हो बर्मी कम्पोस्ट हो घंजीवामृत हो इसका उपयोग करें, हरी खाद का प्रयोग करें। यदि आपने जो जायद में फसल लगाई हुई है जैसे मूंग की फसल लगाई है तो कुछ आपने फली की तुड़ाई कर ली हो बाकी शेष फसल को आप मिट्टी में मिला सकते हैं तो वो मिट्टी को पोषण देती है और मिट्टी की तासीर एकदम से बदलाव होती है, ये बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो जैव उर्वरक हैं उनका भी अपना एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है मिट्टी सुधार में और जो पोषक तत्व दिए जा चुके हैं उनको उपलब्ध कराने में। इस प्रकार आप जो अनुशंसा हैं उनके अनुरूप आप आगामी समय में खरीफ फसलों में पोषक तत्व की प्रबंधन करेंगे तो आपकी फसलों से भरपूर उत्पादन होगा, फसल की लागत कम होगी, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता भी कम होगी।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि सामयिकी। कृषि सामयिकी में आज आपने सुना फसलों में संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन। इस विषय पर हमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मुकेश कुमार भार्गव। हम आकाशवाणी के शुभपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगा हर्ट्स पर। इस समय प्रातः के 6:50 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी प्रातः 7:05 पर सुनिएगा पर्यावरण संदर्भित लघु वार्ता वसुंधरा, 7:20 पर सुनिएगा गांधी चर्चा, गांधी चर्चा में सुनिएगा बाल सुंदरम एवं 3 पौंड का कर। वाचक स्वर रहेंगे श्री राजेंद्र कुमार के। 7:35 पर सुनिएगा फिल्म संगीत और दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिएगा 7:45 पर। 8:30 पर एक बार फिर सुनिएगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। प्रातः 9 सुनिएगा लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। लोक रंग कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं नरेंद्र कुमार राहुल और इनके साथी, साथ ही एक और कलाकार हैं बलराम सिंह दांगे। इन दोनों कलाकारों के लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम लोक रंग में। प्रातः 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश और प्रातः 10 सुनिएगा भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम जिले की चिट्ठी। प्रातः 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार होंगे घनश्याम वासवानी। 10:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत और प्रातः 11 से सुनिएगा आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम।

संध्या 7:21 पर सुनिएगा ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम चौपाल। चौपाल कार्यक्रम में सुनिएगा चर्चा पर्यावरण संरक्षण एवं स्वरोजगार का उत्तम साधन शहरी कंपोस्ट। मधुमक्खी पालन एक लाभदायक व्यवसाय। स्वच्छ शौचालयों का करें प्रयोग। इन सभी विषयों पर चर्चा। साथ ही सुनिएगा भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय रहेगा शिवपुरी जिले के आयुष विभाग की सुविधाएं। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अनिल वर्मा और भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। साथ ही सुनिएगा लोकगीत और होगी मौसम की जानकारी। श्रोताओं, इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है।

0: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय प्रातः के 6:55 होने को हैं। संस्कृत में समाचार
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। नवदेहल्यां नीति आयोगस्य शासी परिषद उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्वन् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् यदा विश्वस्य प्रमुखाः अर्थव्यवस्थाः आर्थिक समाह्वानानां सामुख्यं कुर्वन्तः सन्ति तस्मिन् काले अपि भारतस्य विकासयात्रा विश्वम् अविरतं प्रेरयति। तेन ऊर्जा क्षेत्रे वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतीनां स्वीकरणाय आत्मनिर्भरतां प्रति देशस्य संकल्पं दृढयितुं बलं प्रदत्तम्। प्रधानमन्त्रिणा राज्यानि एकं मण्डलं एकः उत्पादः ODOP तथा रक्षा निर्माण क्षेत्रे निर्यातोन्मुख नीतीनां विकासाय प्रेरितानि। अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारत @2047 कृते समावेशी मानव विकासः आसीत्। नीति आयोगस्य उपाध्यक्षेण अशोक लाहरी महोदयेन सबलं प्रोदीरितं यत् सुशिक्षिता कौशलयुक्ता च जनसंख्या एव देशस्य सफलतायाः मार्गो वर्तते। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्यारभ्य उत्तराखण्डस्य द्विदिवसीय आधिकारिक प्रवासे भविष्यति। अस्मिन् प्रवासे राष्ट्रपतिः देहरादून स्थिते भारतीय सैन्य अकादमी इत्यस्य 58-तम नियमित पाठ्यक्रमस्य निरीक्षणं विधास्यति। भारतस्य खरीफ वपनर्तौ प्रविष्टे सति तैल बीज कृषेः अनुसंधान आधारित ज्ञानं कृषकाणां चलदूरभाषे प्रदातुं ऑयल सीड्स किसान मित्र नामनी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा प्रकटीभूता। अत्रावधेयं यत् कृषि कृषक कल्याण मंत्रालयेन प्रख्यापितं यत् अनया नूतन व्यवस्थया भारतस्य कोऽपि तैल बीज कृषकः केवलं व्हाट्सएप माध्यमेन निःशुल्कं विश्वसनीयं तत्क्षणं च सस्य संबद्धं परामर्शं स्वभाषया सारल्येन प्राप्तुं शक्नोति। फिनलैंड देशे आयोजितायां कुंतरांता वार्तायां भागं गृह्णन् विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकरः चिन्तां प्रकटयन् अब्रवीत् यत् प्रचल्यमानाः वैश्विकाः संघर्षाः स्वक्षेत्रात् बहिरपि विश्वस्य उपरि भारं वर्धयन्ति। तेन कूटनीतौ अनुकूल परिस्थितीनां निर्माणाय तथा आपूर्ति श्रृंखलायाः विश्चक निवारणाय विविधीकरणाय च बलं प्रदत्तम्। भारतस्य ऊर्जा नीतिं ब्रुवन् मन्त्रिणा प्रख्यापितं यत् भारतस्य ऊर्जा चयनं राष्ट्रहितेन प्रेरितम् अस्ति यत्र उपलब्धता मूल्य सुलभता च प्रमुखा वर्तते। वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य स्विट्जरलैंड देशस्य द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। यात्रायामस्यां मंत्री स्विट्जरलैंड देशस्य राष्ट्रपतिना गाय पार्मेलिन इत्यनेन सह मिल्यात्। श्रीगोयलः तत्रत्य भैषज उद्योगस्य प्रमुख प्रतिनिधिभिः साकमपि विचार विनिमयं करिष्यति। वाणिज्योद्योग मंत्रालयेन उक्तं यत् एषः प्रवासः भारत स्विट्जरलैंड आर्थिक सहयोगं सुदृढं करिष्यति, सहैव भारत EFTA व्यापार आर्थिक संधेः कार्यान्वयनस्य चर्चां सुगमां करिष्यति। एतदतिरिच्य मंत्री ज्यूरिख नगरे स्विस विपणिभिः निवेशकैः च सह मिलित्वा द्विपक्षीय व्यापारस्य निवेशस्य संस्थागत सहयोगस्य विस्ताराय अवसराणां गवेषणं च विधास्यति। सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन स्पर्धायाः महिला एकल वर्गे PV सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य प्रागुपान्त्य चक्रं प्रविष्टवत्यौ। आगामी क्रीडायां सिंधुः चेन युयू इत्यनया सह स्पर्धिशिष्ट। एतद् पश्चात् पुरुष एकल वर्गे किरण जॉर्ज सनी दयानन्दः तरुण मेन्नेपल्ली च स्वस्व क्रीडासु पराभूताः। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत का विकास विश्व को लगातार प्रेरित कर रहा है। उन्होंने विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट प्रणालियां अपनाने के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में कल नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के सुझाव और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ है। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में कल गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृह मंत्री ने कहा कि निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
2: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया भर में जारी संघर्ष क्षेत्रीय सीमाओं से परे व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में फिनलैंड की विदेश मंत्री एलिना वाल्टोनेन और संयुक्त अरब अमीरात की सहायक विदेश मंत्री लाना नुसेबेह के साथ उभरती शक्तियों और नई भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पर हुई चर्चा में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने संघर्षों के परिणामों को कम करने और कूटनीति का वातावरण बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में कल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया है। सरकार ने कहा है कि खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले भारतीय और विदेशी ध्वज वाले जहाजों पर कार्यरत सभी भारतीय नाविकों को अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन की उत्तराखंड यात्रा पर जा रही हैं। इस दौरान राष्ट्रपति देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी के 158वें नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 2 दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मेलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिगा से मुलाकात करेंगे। वे स्विस दवा उद्योग के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। देश में किसान मित्र नाम से एक व्हाट्सएप आधारित AI सलाहकार सेवा शुरू की गई है। इस सेवा में खरीफ की बुवाई का मौसम शुरू होते ही किसानों को तिलहन की खेती से संबंधित जानकारी सीधे मोबाइल पर दी जाती है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के शुभपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय प्रातः के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए पर्यावरण संदर्भित लघु वार्ता वसुंधरा।

0: पर्यावरण वसुंधरा यानी चारों ओर लहलाते हरे भरे वृक्ष, उन वृक्षों पर खिले रंग बिरंगे खुशबूदार फूल फल और वृक्षों की डालियों पर बैठे प्यारे प्यारे पक्षी, जो न केवल पक्षियों के मधुर स्वर से गूंजता पूरा वातावरण जो न केवल मन को सुकून से भर देता है, नदियों और झरनों का कलकल करता जल मन को शीतलता देता है। वातावरण में बहती ठंडी ठंडी पवन दिल में जोश भर देती है। और यदि हम संपूर्ण पर्यावरण या फिर ये कहें कि पर्यावरण की हर एक चीज़ को देखें तो ये सब हमें जीवन जीने की कला सिखाती हैं। जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने की प्रेरणा हमें देते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है, ये सभी आज हमारे लिए कल्पना मात्र बनता जा रहा है। आज पेड़ पौधों वादियों की जगह बड़ी बड़ी इमारतों ने ले ली है। सुंदर पक्षी और उनके कलरव की जगह वाहनों भीड़ का शोर सुनाई देता है। शुद्ध और ठंडी हवा के बदले वाहनों कारखानों फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं हमारी सांसों में रमता जा रहा है, जो न केवल कितनी बीमारियों को बढ़ा रहा है। और जल यानी पानी, इसके लिए तो किसी भी शहर या किसी भी नगर गांव कस्बे में हम चले जाएं, एक घड़े पानी के लिए लंबी सी कतार में खड़े खड़े सुबह से शाम गुजर जाती है। क्या यही पर्यावरण है जिसकी सुंदरता सौम्यता का बखान करने के लिए कवियों और लेखकों को कई कई दिन और महीने लग जाया करते थे? तब भी प्रकृति और उसकी एक एक चीज़ की सुंदरता का बखान करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। आज चंद शब्दों और चंद लाइनों में सिमट कर रह गई है ये पर्यावरण की सुंदरता। और पन्ने के पन्ने किताबें की किताबें ना सिर्फ भरे पड़े हैं उनके संरक्षण और संवर्धन की चेतावनी देने में। और ये सब समझते हुए सब कुछ जानते हुए भी हम जुटे हुए हैं अपनी इच्छाओं अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति करने में। जरा सोचिए, जहाँ पहले एक निश्चित समय पर हर ऋतु के आने का हम इंतज़ार करते थे, वहाँ हम भिन्न भिन्न परिवर्तन देख रहे हैं। और आज उसी का परिणाम है, भीषण गर्मी सुनामी सूखा बाढ़ सब हमें झेलना पड़ रहा है। जलवायु में आने वाले इन परिवर्तनों का कारण भी हम स्वयं ही हैं, क्योंकि हमने ही अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए हर वो कार्य किया है जो हर तरह के प्रदूषण को बढ़ाने में सहायक हुआ है। हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ 70% लोग आज भी खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन कृषि मानसून के ऊपर निर्भर है और किसान होने के नाते उन्हें मिट्टी से जुड़ने की मानो आज सजा मिल रही है। वे विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं और यही नहीं, मनुष्य और प्रकृति का शाश्वत संबंध माना जाता है वह रिश्ता भी अब टूटता प्रतीत हो रहा है। कहते हैं, सुबह का भूला यदि शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो मित्रों, बिल्कुल सही है, माना हमने गलतियां की हैं, प्रकृति की सुंदरता के साथ छेड़छाड़ की है, लेकिन अब समय है संभल जाने का और अपनी हर गलती को सुधारने का और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक बनाने का। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आने वाली पीढ़ी को इसके लिए जागरूक करने का। अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण संदर्भित लघु वार्ता वसुंधरा। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.2 MHz पर। प्रादेशिक समाचार कुछ ही देर में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: जन जन सब गाए मिल मधुर।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर। देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड का करेंगे निरीक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। और 10वां ICC महिला T20 विश्व कप आज से शुरू। पहला मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर हैं। वे इस दौरान देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी NDA के 198 नियमित पाठ्यक्रम और 141वें तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम की पासिंग आउट परेड का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने राज्यों से लखपति दीदियों की संख्या 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने, युवाओं के कौशल विकास और जल संरक्षण पर जोर देने का आह्वान किया। उन्होंने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने के लिए केंद्र और राज्यों की साझी भागीदारी को अनिवार्य बताया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल रात इंदौर में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आए विदेशी प्रतिनिधियों के सम्मान में भव्य रात्रि भोज का आयोजन किया। इस अवसर पर प्रदेश की लोक कला, आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक विविधता पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
1: यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर अलग अलग सभी देशों के साथ संबंध बनाते हुए एक दूसरे की अनुकूलता का लाभ लिया। ऐसे समय में कृषि सेक्टर हमारा, खासकर एग्रीकल्चर ईयर हमने डिक्लेयर किया। कृषि मंत्रियों का और कृषि से जुड़े हुए विद्वानों का एक बड़ा सम्मेलन है। कृषि एक तरह से व्यक्ति को जोड़ने का सबसे उत्कृष्ट माध्यम है। मैं सभी मंत्रियों का, राजनयिकों का, राजदूतों का सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को सुबह 6:15 पर आयोजित होने वाले विशेष ऑनलाइन योग सत्र में शामिल होने की अपील की है। आयुष मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन के तहत आयोजित इस 20 मिनट के सत्र में कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता है। टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर पंजीयन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि प्रदेश ने केंद्र की तय समय सीमा से पहले ही नक्सलवाद का खात्मा कर लिया।

0: है और अब प्रभावित क्षेत्रों में विकास की गति तेज की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आयुष्मान योजना, पीएम मित्र पार्क, कौशल विकास और नदी जोड़ो परियोजनाओं का भी उल्लेख किया। प्रदेश से राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रिटर्निंग अधिकारी ने भाजपा की आपत्ति स्वीकार करते हुए 9 जून को उनका नामांकन रद्द कर दिया था। भाजपा का आरोप था कि नटराजन ने अपने खिलाफ दर्ज एक मामले की जानकारी नामांकन पत्र में नहीं दी थी। प्रदेश से राज्यसभा के लिए भाजपा के तरुण चुग, रजनीश अग्रवाल और महेश केवट निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। कल रिटर्निंग अधिकारी अरविंद शर्मा ने तीनों को निर्वाचन प्रमाण पत्र भी सौंपे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तथा सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस दौरान सरकार ने गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण तथा सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। आकाशवाणी की 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला के आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की अध्यक्षता में कल भोपाल में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में विधेयक के प्रमुख प्रावधानों, उच्च शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता, गुणवत्ता अनुसंधान और नियामकीय सुधारों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मंत्री श्री परमार ने कहा कि यह विधेयक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों तक ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। आज 12 जून को बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस हर बच्ची की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही बाल श्रम उन्मूलन का सबसे कारगर रास्ता है। टीकमगढ़ जिले के अस्तोन गांव में कल 3 मासूम बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। कोतवाली थाना क्षेत्र के सिद्ध सागर तालाब में नहाने के दौरान तीनों बच्चे गहरे पानी में जा फंसे। मृतकों में 12 वर्षीय प्रिंस अहिरवार और 13-13 वर्षीय दीपेश व राज अहिरवार शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताते हुए तीनों परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। वहीं प्रदेश के युवा अजय अहिरवार ने इंडिया स्किल्स नेशनल कंपटीशन में ब्रिक लेइंग स्किल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। उनका चयन सितंबर 2026 में शंघाई में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन और जून में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली ग्लोबल स्किल चैलेंज के लिए भी किया गया है। राज्य कौशल विकास बोर्ड ने उनकी तैयारी के लिए विशेष वित्तीय सहायता भी प्रदान की थी। प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा 2026 का परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। परीक्षार्थी मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbsc.mponline.gov.in पर रोल नंबर और आवेदन संख्या दर्ज कर अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। ये परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी जो मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाए थे या अपने अंक सुधारना चाहते थे। मंगोलिया के 10 दिवसीय आध्यात्मिक प्रवास के बाद भगवान बुद्ध के परम शिष्यों सारिपुत्र और महामौध गलायन के पवित्र अवशेष कल भोपाल के राजा भोज विमानतल पहुंचे। मंगोलिया की राजधानी उलान बातर के गंदन मठ में आयोजित प्रदर्शनी के दौरान 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने इन अवशेषों के दर्शन किए। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून 3 से 4 दिन की देरी से आएगा। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के दक्षिणी जिलों में मानसून 17-18 जून को दस्तक देगा और अगले 10 से 15 दिन में पूरे प्रदेश को कवर करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक आज मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर में ओलावृष्टि का अनुमान है, जबकि भोपाल सहित प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी और बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट के निर्देशन में कल NRLM आजीविका भवन में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मास्टर वॉलंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। आगरमालवा में 40 दिवसीय योग अभियान चल रहा है, जिसके तहत योग के महत्व, स्वस्थ जीवन शैली और नियमित योगाभ्यास के लाभों की जानकारी दी जा रही है। खंडवा में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण के लिए 6, 7 और 8 जुलाई को विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों का ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। ITI इंदौर में एक निजी कंपनी ने तकनीशियन के 50 पदों के लिए युवाओं का चयन किया और केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद दुर्गादास उइके ने बैतूल में 18 जून को प्रस्तावित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम आध्यात्मिक जागृति से जनजाति समाज का सशक्तिकरण की तैयारियों का जायजा लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के उत्तराखंड के दौरे पर, देहरादून में NDA की पासिंग आउट परेड का करेंगे निरीक्षण। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री हुए शामिल। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई और 10वां ICC महिला T20 विश्व कप आज से शुरू, पहला मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच। इस बुलेटिन में बस इतना ही, अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रही हैं, FM 100.2 MHz पर। इस समय प्रातः के 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए गांधी चर्चा। गांधी चर्चा में सुनिए बाल सुंदरम एवं 3 पौंड का कर। इस विषय पर चर्चा वाचक स्वर हैं श्री राजेंद्र कुमार के।

0: गांधी चर्चा में आइए सुनते हैं गांधी जी की आत्मकथा के अंश।
1: जैसी जिसकी भावना वैसा उसका फल, इस नियम को मैंने अपने बारे में अनेक बार घटित होते हुए देखा है। जनता की अर्थात गरीबों की सेवा करने की मेरी प्रबल इच्छा ने गरीबों के साथ मेरा संबंध हमेशा ही अनायास जोड़ दिया है। यद्यपि नेटाल इंडियन कांग्रेस में उपनिवेशों में पैदा हुए हिंदुस्तानियों ने प्रवेश किया था और मुहर्रों का समाज उसमें दाखिल हुआ था, फिर भी मजदूरों ने, गिरमिटिया समाज के लोगों ने उसमें प्रवेश नहीं किया था। कांग्रेस उनकी नहीं हुई थी, वे उसमें चंदा देकर और दाखिल होकर उसे अपना नहीं सके थे। उनके मन में कांग्रेस के प्रति प्रेम तो तभी पैदा हो सकता था जब कांग्रेस उनकी सेवा करे। ऐसा प्रसंग अपने आप आ गया, और वो भी ऐसे समय जबकि मैं स्वयं अथवा कांग्रेस उसके लिए शायद ही तैयार थी। मुझे वकालत शुरू किए अभी मुश्किल से 2-4 महीने हुए थे। कांग्रेस का भी बचपन था। इतने में एक दिन बाला सुंदरम नाम का एक मद्रासी हिंदुस्तानी हाथ में साफा लिए रोता रोता मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके कपड़े फटे हुए थे, वो थर थर कांप रहा था, उसके मुंह से खून बह रहा था और उसके आगे के 2 दांत टूटे हुए थे। उसके मालिक ने उसे बुरी तरह मारा था। तामिल समझने वाले अपने मुहर्रर के द्वारा मैंने उसकी स्थिति जान ली। बाला सुंदरम एक प्रतिष्ठित गोरे के यहां मजदूरी करता था। मालिक किसी वजह से गुस्सा हुआ होगा, उसे होश ना रहा और उसने बाला सुंदरम की खूब जमकर पिटाई की। परिणाम स्वरूप बाला सुंदरम के 2 दांत टूट गए। मैंने उसे डॉक्टर के यहां भेजा। उन दिनों गोरे डॉक्टर ही मिलते थे। मुझे चोट संबंधी प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। उसे प्राप्त करके मैं बाला सुंदरम को मजिस्ट्रेट के पास ले गया। वहां बाला सुंदरम का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। उसे पढ़कर मजिस्ट्रेट मालिक पर गुस्सा हुआ। उसने मालिक के नाम समन जारी करने का हुक्म दिया। मेरी नियत मालिक को सजा कराने की नहीं थी, मुझे तो बाला सुंदरम को उसके पंजे से छुड़ाना था। मैंने गिरमिटियों से संबंध रखने वाले कानून की छानबीन कर ली। यदि साधारण नौकर नौकरी छोड़ता तो मालिक उसके खिलाफ दीवानी दावा दायर कर सकता था, पर उसे फौजदारी में नहीं ले जा सकता था। गिरमिटिया में और साधारण नौकरी में बहुत फर्क था, पर खास फर्क यह था कि अगर गिरमिटिया मालिक को छोड़े तो वो फौजदारी गुनाह माना जाता था और उसके लिए उसे कैद भुगतनी होती थी। इसीलिए सर विलियम विल्सन हंटर ने इस स्थिति को लगभग गुलामी की सी स्थिति माना था। गुलाम की तरह गिरमिटिया मालिक की मिल्कियत माना जाता था। बाला सुंदरम को छुड़ाने के केवल 2 उपाय थे। या तो गिरमिटियों के लिए नियुक्त अधिकारी, जो कानून की दृष्टि से उनका रक्षक कहा जाता था, उसका गिरमिट रद्द करे या दूसरों के नाम लिखवा दे, अथवा मालिक स्वयं उसे छोड़ने को तैयार हो जाए। मैं मालिक से मिला। उससे मैंने कहा, मैं आपको सजा नहीं कराना चाहता, इस आदमी को सख्त मार पड़ी है, सो तो आप जानते ही हैं, आप इसका गिरमिट दूसरे के नाम लिखाने को राजी हो जाएं तो मुझे संतोष होगा। मालिक तो यही चाहता था। फिर मैं रक्षक से मिला, उसने भी सहमत होना स्वीकार किया, पर शर्त यह रखी कि मैं बाला सुंदरम के लिए नया मालिक खोज दूं। मुझे नए अंग्रेज मालिक की खोज करनी थी। हिंदुस्तानियों को गिरमिटिया मजदूर रखने की इजाजत नहीं थी। मैं अभी कुछ ही अंग्रेजों को पहचानता था, उनमें से एक को मिला। उन्होंने मुझ पर मेहरबानी करके बाला सुंदरम को रखना मंजूर कर लिया। मैंने उनकी कृपा को साभार स्वीकार किया। मजिस्ट्रेट ने मालिक को अपराधी ठहराकर यह लिख दिया कि उसने बाला सुंदरम का गिरमिट दूसरे के नाम लिखाना स्वीकार किया है। बाला सुंदरम के मामले की बात गिरमिटियों में चारों तरफ फैल गई और मैं उनका बंधु मान लिया गया। मुझे यह बात अच्छी लगी। मेरे दफ्तर में गिरमिटियों का तांता सा लग गया और मुझे उनके सुख दुख जानने की बड़ी सुविधा हो गई। बाला सुंदरम के मामले की भनक ठेठ मद्रास प्रांत तक पहुंची। उस प्रांत के जिन जिन हिस्सों से लोग नेटाल के गिरमिट में जाते, उन्हें गिरमिटिया ही इस मामले की जानकारी दे देते थे। वैसे ये मामला महत्व का नहीं था, पर लोगों को ये जानकर आनंद और आश्चर्य हुआ कि उनके लिए प्रकट रूप से काम करने वाला कोई आदमी निकल आया है। इस बात से उन्हें आश्वासन मिला। मैं पहले बता चुका हूं कि बाला सुंदरम अपना साफा उतार कर और उसे अपने हाथ में रख कर मेरे पास आया था। इस घटना में बड़ी करुणा भरी है, इसमें हमारी बेइज्जती भी भरी है। पगड़ी उतारने का मेरा किस्सा तो हम जान ही चुके हैं। गिरमिटिया और दूसरे अनजान हिंदुस्तानी जब किसी भी गोरे के घर में दाखिल होते तो उसके सम्मान के लिए पगड़ी उतार लिया करते थे। फिर वो टोपी हो या बंधी हुई पगड़ी हो या लपेटा हुआ साफा हो, दोनों हाथों से सलाम करना काफी नहीं था। बाला सुंदरम ने सोचा कि मेरे सामने भी इसी तरह आना चाहिए। मेरे निकट बाला सुंदरम का यह दृश्य मेरा पहला अनुभव था। मैं शर्माया। मैंने बाला सुंदरम को साफा बांधने के लिए कहा। बड़े संकोच के साथ उसने साफा बांधा, पर इससे उसे जो खुशी हुई उसे मैं ताड़ गया। दूसरों को अपमानित करके लोग अपने को सम्मानित कैसे समझ सकते हैं, इस पहेली को मैं आज तक हल नहीं कर सका हूं। बाला सुंदरम के किस्से ने गिरमिटिया हिंदुस्तानियों के साथ मेरा संबंध जोड़ दिया, परंतु उन पर कर लगाने का जो आंदोलन चला उसके परिणाम स्वरूप मुझे उनकी स्थिति का गहरा अध्ययन करना पड़ा। 1894 के साल में गिरमिटिया हिंदुस्तानियों पर हर साल 25 पौंड का अर्थात 375 रुपयों का कर लगाने के कानून का मसविदा नेटाल की सरकार ने तैयार किया। उस मसविदे को पढ़कर मैं तो दिग्मूढ़ ही हो गया। मैंने उसे स्थानीय कांग्रेस के सामने रखा। इस मामले में जो आंदोलन करना उचित था वो करने का एक प्रस्ताव कांग्रेस ने पास किया। लगभग 1860 में जब नेटाल में बसे हुए गोरों ने देखा कि वहां ईख की फसल अच्छी हो सकती है, तो उन्होंने मजदूरों की खोज शुरू की। मजदूर न मिले तो न ईख पैदा हो सकती थी और न चीनी ही बन सकती थी। नेटाल के हबशी ये मजदूरी नहीं कर सकते थे, इसलिए नेटाल निवासी गोरों ने भारत सरकार के साथ विचार विमर्श करके हिंदुस्तानी मजदूरों को नेटाल जाने देने की अनुमति प्राप्त की। उन्हें ये लालच दिया गया कि 5 साल तक मजदूरी करने का बंधन रहेगा और 5 साल के बाद उन्हें स्वतंत्र रीति से नेटाल में बसने की छूट में रहेगी। उनको जमीन का मालिक बनने का पूरा अधिकार भी दिया गया था। उस समय गोरे चाहते थे कि हिंदुस्तानी मजदूर। मजदूरों में से मकान मालिक बन जाने वालों के पीछे पीछे वहां स्वतंत्र व्यापारी भी पहुंचे। स्वर्गीय सेठ अबू बकर आमद उनमें सबसे पहले पहुंचने वाले थे। उन्होंने वहां अपना कारोबार खूब जमाया। गोरे व्यापारी चौंके। जब पहले पहल उन्होंने हिंदुस्तानी मजदूरों का स्वागत किया था, तब उन्हें उनकी व्यापार करने की शक्ति का कोई अंदाजा ना था। वे किसान के नाते स्वतंत्र हैं, इस हद तक तो गोरों को उस समय कोई आपत्ति ना थी, पर व्यापार में उनकी प्रतिद्वंद्विता उन्हें असह जान पड़ी।
0: गांधी जी की आत्मकथा के इस अंश के बाद आइए अब सुनते हैं बापू का ही ये प्रिय भजन।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। गांधी चर्चा में आज आपने सुना बाल सुंदरम एवं 3 पौंड का कर, इस विषय पर चर्चा। वाचक स्वर थे श्री राजेंद्र कुमार के। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रही है FM 100.2 MHz पर। इस समय प्रातः के 7:35 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में, गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन। कार्यक्रम फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए संगम फिल्म का ये गीत मुकेश और वैजंती माला के स्वर में, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार एक बार फिर शंकर जयकिशन।

बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। तेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल।

0: है, हर मौसम है प्यार का मौसम होगा के नहीं, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का, बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं, अरे बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं।
1: नहीं नहीं नहीं, संगम फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.2 MHz पर। इस समय प्रातः के 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार शिव।

कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो मित्र मंजू का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, मैं हाजिर हूँ आपका पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम लेकर, नमस्कार शिवपुरी। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की पहली खबर। मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 2026-27 के कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मूल निवासी अभ्यर्थी जिनकी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच है, 12 जून तक बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जिले में 12 से 18 जून तक विकासखंड एवं नगरीय निकाय मुख्यालयों पर 3 दिवसीय जन कल्याण शिविर आयोजित किए जाएंगे। कलेक्टर के निर्देश पर बदरवास, खनियाधाना, करेरा, बैराड, पौहरी, शुपरी, कोलारस, पिछोर, नरवर व मगरौनी में शिविर लगेंगे, जहां हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ व समस्याओं का त्वरित निराकरण मिलेगा। श्रोताओं, बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर पालिकाओं व पंचायतों की मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2026 का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। नागरिक 15 जून 2026 तक दावे आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। प्रक्रिया के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए लाउड स्पीकर और कोटवारों द्वारा मुनादी की जा रही है। शासकीय विभागों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति सार्थक ऐप के माध्यम से दर्ज की जा रही है। इस संबंध में जारी आदेशानुसार सभी विभाग अपने अधिकारी एवं कर्मचारियों का डाटा सार्थक पोर्टल पर नियमित रूप से अद्यतन रखें, इसकी उन्हें सलाह दी जाती है।

श्रोताओ, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 हेतु 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी महेंद्र कुमार अम्र ने बताया कि वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला, संस्कृति एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे award.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।

मध्य प्रदेश आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत अनुसूचित जनजाति वर्ग के 18 से 55 वर्ष आयु के पात्र हितग्राहियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना में स्वरोजगार हेतु 10,000 से 1 लाख रुपए तक ऋण मिलेगा। आवेदन www.samast.mponline.gov.in पर किए जा सकते हैं। शिक्षक 22 जून तक राज्य शिक्षा केंद्र के तहत आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान का एक वर्षीय सेवाकालीन प्रशिक्षण पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टीचिंग इंग्लिश पाठ्यक्रम का नया सत्र 1 जुलाई से शुरू होगा। योग्यता रखने वाले 22 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को अंग्रेजी भाषा शिक्षण की नई पद्धतियां सिखाई जाएंगी तथा नवाचार बताए जाएंगे।

श्रोताओं, अब बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। बैराड़ क्षेत्र के युवाओं खेल प्रेमियों के लिए कलेक्टर ने बैराड़ के ग्राम पचीपुरा में आउटडोर स्टेडियम के निर्माण और एयर एम्बुलेंस के लिए 50 बीघा जमीन आवंटित कर दी है। बैराड़ तहसील के ग्राम पचीपुरा की शासकीय भूमि में से 10 हेक्टेयर खेल विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक पौरी विकास खंड के बैराड़ नगर आसपास के ग्रामीण युवाओं के लिए आउटडोर स्टेडियम की मांग की जा रही थी। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने शासकीय सर्वे क्रमांक 264/1/6/2 की कुल 16.930 हेक्टेयर भूमि में से 10 हेक्टेयर जमीन बुधवार को आवंटित कर दी है। जमीन को पूरी तरह प्रीमियम प्रव्याजी और भाटक से मुक्त रखा गया है। स्टेडियम निर्माण में प्रशासनिक अड़चने न आए, फैसले से बैराड़ आसपास के दर्जनों गांवों के हजारों ग्रामीण युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने का मंच मिलेगा।

श्रोताओ बढ़ते हैं एक और खबर की ओर। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों की नियमित और समय पर उपस्थिति के लिए ई अटेंडेंस व्यवस्था सख्त कर दी है। अब शिक्षक, अतिथि शिक्षक, शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों का वेतन ई अटेंडेंस के आधार पर ही जारी होगा। लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देश में साफ किया गया है कि जिन कर्मचारियों की ई अटेंडेंस दर्ज नहीं होगी उन्हें उस दिन अनुपस्थित माना जाएगा, उस दिन का वेतन भी नहीं मिलेगा। विकासखंड शिक्षा अधिकारी विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि इस सत्र से ई अटेंडेंस के आधार पर ही वेतन भुगतान करने के निर्देश मिले हैं। उन्होंने शिक्षकों से नियमित स्कूल पहुंचने की अपील की है, लौटते समय भी ई अटेंडेंस दर्ज करने को कहा है। उन्होंने बताया कि इस माह का वेतन भी इसी आधार पर तैयार होगा, इसकी जवाबदेही संबंधित संकुल प्राचार्य की रहेगी।

मामरौन स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में ग्लोबल फैटी लीवर डे पर विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्रामीणों की निःशुल्क स्क्रीनिंग की। शिविर में 30 से 65 वर्ष आयु के लोगों की जांच हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि इस उम्र में गलत खानपान, शारीरिक सक्रियता की कमी से फैटी लीवर का खतरा सबसे ज़्यादा बना रहता है। मरीजों का गहन परीक्षण किया गया, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए परामर्श दिया गया और दवाइयां भी बांटी गईं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर की सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी रिंका लोधी ने बताया कि NAFLD यानी फैटी लीवर बिना शराब पिए भी हो सकता है। ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना, जंक फूड, शारीरिक मेहनत ना करना, इससे लीवर में अतिरिक्त चर्बी जमा होने लगती है। बीमारी आगे चलकर गंभीर रूप ले सकती है। उन्होंने इसे साइलेंट बीमारी बताया। इस बीमारी के लक्षण जल्दी समझ में नहीं आते।

के लिए समय समय पर जांच जरूरी है। मेडिकल टीम ने जीवन शैली में 3 बदलाव करने की सलाह दी है। खान पान में सुधार करें, जंक फूड ज़्यादा तेलीय चीज़ों से परहेज करें और भोजन में हरी भरी सब्जियां, फल, फाइबर युक्त पदार्थ बढ़ाएं और रोज़ाना व्यायाम करें, शरीर को एक्टिव रखें। रोज़ कम से कम 30 मिनट योग, तेज चलना और कसरत करें। लगातार थकान, सुस्ती, पेट के ऊपरी हिस्से में भारीपन लगे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। श्रोताओं, कार्यक्रम तो अभी आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी सुनते हैं एक खूबसूरत गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार शुभपुरी। हम आकाशवाणी के शुभपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय प्रातः के 8 बजने को हैं। समाचार प्रभात कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए AI का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर नए सैन्य हमले रोके। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से, और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में कल सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। श्री शाह ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है, इससे देश में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की संभावनाएं और बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि समझौते से हमारी विदेशों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
4: अब सिर्फ एक MOU से ही 1,000 से 1,500 बैरल प्रतिदिन जो दोहन की हमारी क्षमता है उसको 10 गुना से ज्यादा हम बढ़ा पाएंगे, और एक ही फील्ड में 15,000 करोड़ से ज्यादा रिकवरी के संभावनाएं हैं। परंतु पूरे नागालैंड के अंदर ऑयल और गैस जितना भी पड़ा है इसका उत्खनन होगा, तो मुझे लगता है कि हमारी जो कमी है इस क्षेत्र में हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है, वो निर्भरता काफी हद तक हम पूरी कर पाएंगे।
3: गृह मंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना दर्शाता है।
4: हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इससे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
3: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने इस समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। केंद्र सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए श्री रियो ने कहा कि पूर्वोत्तर में शांति, स्थिरता और विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता ने इस समझौते को संभव बनाया है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और असम सरकार को उनके सहयोग और सद्भावना के लिए धन्यवाद दिया। केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरों के बारे में चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
5: केंद्र सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय व्यवस्था को निशाना बनाने के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी जारी की है। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की ओर से जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी डीप फेक वीडियो और कृत्रिम पहचान बनाने के लिए AI का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। इन तकनीकों का दुरुपयोग चेहरे की पहचान, जीवंतता, सत्यापन, वीडियो KYC प्रक्रियाओं, खातों को दोबारा सक्रिय करने की प्रणालियों और वित्तीय तथा डिजिटल सेवाओं तक पहुंच बनाने के लिए किया जा रहा है। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थाओं को डीप फेक का पता लगाने, प्रणाली मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग तरीकों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चल रहे संघर्षों के दुष्परिणामों से निपटने के लिए सुगम और विविध आपूर्ति श्रृंखलाओं, निरंतर राजनयिक प्रयासों और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि संघर्षों का प्रभाव उन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ता है जहां वे घटित होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के विषय में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत के ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित से प्रेरित हैं और खरीद सामर्थ्य और उपलब्धता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
6: We signed this year a free trade agreement with Europe.
7: हमने यूरोप के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने यूरोप के साथ सुरक्षा और रक्षा साझेदारी भी की है। साथ ही हमारे पास यूरोप के साथ टैलेंट मोबिलिटी एग्रीमेंट की एक रूपरेखा भी है। इसीलिए मुझे लगता है कि रक्षा उद्योग खासकर स्मार्ट सेक्टर में आपसी सहयोग के रास्ते तलाशेंगे और देखेंगे क्या ऐसी कोई साझेदारी बन सकती है जो कारगर साबित हो।
6: To find common ground.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश में आज एक भव्य समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सवेरे लखनऊ में और शाम को वाराणसी में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि होंगे। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के उठाए गए कदमों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
8: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। बाइट, भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानियत को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
9: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
8: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज दो दिन के दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी। वे आज देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी। उत्तराखंड प्रवास के दौरान वे 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्य

0: का निरीक्षण करेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज दो दिन की स्विट्जरलैंड यात्रा पर रवाना होंगे। श्री गोयल स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पार्मोलिन और आर्थिक राज्य सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा से मुलाकात करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यात्रा दोनों देशों की आर्थिक साझेदारी मजबूत करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर नए सैन्य हमले रोक दिए हैं। इससे पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान के तेल उद्योग पर कब्जा करके युद्ध और बढ़ाया जाएगा। श्री ट्रंप ने ईरान के उच्च स्तरीय नेतृत्व के साथ हुई बातचीत में प्रगति को इस बदलाव का कारण बताया है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि युद्ध विराम को बढ़ाने के लिए चल रही वार्ता में भी प्रगति हुई है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले मैच में मेजबान मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हरा दिया है। मेक्सिको ने 9वें और 67वें मिनट में गोल कर मैच जीत लिया। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में संयुक्त रूप से खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप आज शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच मेजबान इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई को लॉर्ड्स में होगा। भारतीय टीम 14 जून को पाकिस्तान के साथ अपना अभियान शुरू करेगी। टूर्नामेंट में पहली बार 12 टीम हिस्सा ले रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। देश के पूर्वोत्तर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने दिल्ली और NCR के कई स्थानों पर आज गरज चमक के साथ वर्षा का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक की खबर सभी अखबारों में है। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राज्यों के विकास के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं। नवभारत टाइम्स के अनुसार पीएम ने कहा, भारत तेजी से तरक्की की राह पर। बैठक में पीएम ने दिया विकसित भारत का रोडमैप। हिंदुस्तान की सुर्खी है, 4 दिन में भारतीय क्रू वाला तीसरा पोत तबाह। हॉर्मूज में हुए हमले में सभी सुरक्षित, बुधवार को लापता नाविकों के शव मिले। पत्र ने भारतीयों की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पश्चिम एशिया में फिर तनाव फैलने और युद्ध भड़कने पर भारत पर सीधी आंच आई है। ये पश्चिम एशिया में टकराव का नया और खतरनाक मोड़ है। युद्ध रोकने के लिए वार्ता जारी थी, पर शीघ्र वार्ता के लिए अमरीका का युद्ध छेड़ना अतार्किक है। जनसत्ता की सुर्खी है, तृणमूल से एक और इस्तीफा, कल्याण के बगावती तेवर। पत्र ने राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के मामले में सुर्खी दी है, मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पंजाब केसरी ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है, गृहिणियां हैं राष्ट्र की निर्माता, परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30,000 रुपए होनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने इसी मामले पर खबर संपादकीय में लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने सड़क दुर्घटना मामले में कहा, इसका जितना व्यापक कानूनी असर है उतना ही सामाजिक। अदालत ने राष्ट्र निर्माण में घरेलू काम और जिम्मेदारियों के महत्व को स्वीकारा है। ये फैसला उस सोच पर प्रहार है जिसके अनुसार घर का काम कोई मायने नहीं रखता। दैनिक भास्कर ने विशेष रिपोर्ट में दिया है, आंखों से देख नहीं सकती थी मासूम, आवाज से पहचान लिए 3 दरिंदे, दुष्कर्म केस में आरोपियों की जमानत याचिका रद्द। पंजाब और हरियाणा कोर्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और अपीली अदालत का फैसला बरकरार। लोकसत्य का शीर्षक है, दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट, आंधी और बारिश की संभावना। हवा के कारण तापमान में 6 से 7 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने असम और नागालैंड सरकार के साथ कच्चे तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों को भेदने और वित्तीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए एआई का उपयोग करने के बढ़ते खतरे की चेतावनी जारी की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने वर्तमान संघर्षों के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शांति वार्ता का हवाला देते हुए ईरान पर सैन्य हमले रोके। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में आज इंग्लैंड का मुकाबला श्रीलंका से और फीफा फुटबॉल विश्व कप के आरंभिक मैच में मेक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Center signs historic tripartite MOU with Assam and Nagaland governments for exploration and production of crude oil and natural gas in the two states. Government issues advisory about growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. External Affairs Minister S. Jayashankar calls for diversified supply chains and greater international cooperation amid ongoing conflicts. US President Donald Trump calls off new military strikes on Iran, citing breakthrough in talks to end war. Hosts England to take on Sri Lanka in opening match of ICC Women's T20 Cricket World Cup in Birmingham today. And in football, co-hosts Mexico beat South Africa 2-0 in inaugural match of FIFA World Cup 2026. In a significant development, the centre has signed a historic tripartite Memorandum of Understanding MOU with governments of Assam and Nagaland for exploration and production of crude oil and natural gas in the two northeastern states. The MOU was signed in the presence of Union Home Minister Amit Shah, Petroleum Minister Hardeep Singh Puri, Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and his Nagaland counterpart Nephew Ryu. Speaking on the occasion, Mr. Shah said that the signing of the MOU is a historic moment and it will enhance the prospects for oil and natural gas exploration in the country.
4: With just this one MOU, we will be able to increase our oil extraction capacity from 1,000 to 1,500 barrels per day to more than 10 times that level. In a single field, there is also a potential recovery of over Rs. 15,000 crore. If oil and gas reserves across Nagaland are properly extracted, I believe it will significantly reduce our dependence on foreign countries, which currently supply us due to our shortages in this sector.
3: Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma said that boundary issue between Assam and Nagaland is a long-standing issue due to which the natural resources lying in the area could not be utilized for the nation.
5: In the area, we see immense potential of hydrocarbon. At the initiative of Union Home Ministry, particularly at the initiative of Honorable Union Home Minister, both Assam and Nagaland is joining hands to share the proceeds of this hydrocarbon potential in terms of royalty and facilitate its extraction so that nation at large can be benefited.
3: Nagaland Chief Minister Nephew Ryu has also termed the signing of the tripartite MOU for mineral oil operations in the Assam-Nagaland boundary areas as a historic milestone. We have more from our correspondent in Kohima.
6: Expressing gratitude to the central government, Mr. Ryu said its commitment to peace, stability and development in the Northeast had made the agreement possible. He also thanked Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma and the government of Assam for their cooperation and goodwill. Mr. Ryu said the MOU reflects the maturity of relations between Nagaland and Assam and their shared commitment to regional development. He noted that while unresolved border issues had hindered resource development for decades, the MOU provides a framework that will benefit both present and future generations. Mr. Ryu said the agreement will unlock the economic potential of sectors A to F along the Assam-Nagaland border, enhancing economic activity, resource management, interstate cooperation, and creating new opportunities for the people. Mary Mayase, Akashvani News, Kohima.
3: The center has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security.

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.2 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 8:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और सुनवाते हैं आप सभी की पसंद पर कुछ खूबसूरत फिल्मों के गीत। कार्यक्रम का पहला पत्र हमने लिया है इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। ये सभी लिख रही हैं पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और भी आते हैं। फिल्म कन्यादान का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में, गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सफर से। आवाजें हैं मुकेश की और गीत लिखा है इंदीबर ने और संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं छत्तीसगढ़ भाटापारा ददरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा।

कार्यक्रम का अगला पत्र हमने लिया है भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी मालती चौधरी गणेश दादा मराठा कार्तिक भाव मराठा परी संजना मराठा और ललिता नारायण खर्चे का। ये सभी सुनना चाहते हैं फिल्म झुक गया आसमान का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी और संगीतकार शंकर जयकिशन।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कन्यादान फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीत लिखा है हजरत जयपुरी ने और संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमसे की है चांडूर विश्वा जिला बुलडाणा महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खड़ से रक्षा ताई खड़ से ललिता संजना गणेश कार्तिक मालती स्वाति प्रयाग और इनके मम्मी पापा ने।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम में अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम है शर्मिली, गीतकार हैं नीरज और संगीतकार SD वर्मन। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं महाराणा प्रताप नगर शिवपुरी से शुभम, सुवी, भैयू, यशु, गोलू, राघव, पूर्वी, बिट्टू, नंदनी, सुमन तिवारी और इनके सभी साथीगण।

अभी आपने सुना लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वर में पारस मणि फिल्म का ये गीत। गीत लिखा था फारूक कैशर ने और संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे राजेश्वरी रोड शिवपुरी से, ओशीन, अर्जुन, अर्चना, सतीश, नैना, विशाल, किरण, नैन्सी और इनके सभी साथीगण। इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं, FM एंड 100.2 MHz पर। इस समय प्रातः के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। लोक रंग कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं नरेंद्र कुमार राहुल और इनके

0: अभी आपने सुना नरेंद्र कुमार राहुल और साथियों के स्वर में एक खूबसूरत माता रानी का भजन। कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें हम सुनवा रहे हैं स्थानीय कलाकारों के गाए कुछ खूबसूरत लोकगीत। कार्यक्रम का अगला लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनिए कुछ जरूरी संदेश।
1: सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से?
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए सतर्क।

0: कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं नरेंद्र कुमार राहुल और बलराम सिंह दांगे के गाए कुछ खूबसूरत लोकगीत। कार्यक्रम का अगला लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनिए कुछ जरूरी संदेश।
1: कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: हेलो
4: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
3: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
3: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
3: 2 लाख
6: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

डेरा, स्वच्छ रहेगा गांव हमारा आएगा एक नया सवेरा, बीमारी ना कर पे डेरा। भैया बात, अरे हाँ भैया बात सुनो, तुम हमारे शौचालय घर घर बने बाद कर रही कर

0: कर रही है हाँ, कर रही कर रही है सुविधा सरकार, शौचालय घर घर पर।
1: कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं विभिन्न कलाकारों के गाए कुछ खूबसूरत लोकगीत। लीजिए सुनिए बादाम सिंह दांगे के स्वर में कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं विभिन्न कलाकारों के गाए कुछ खूबसूरत लोकगीत। लीजिए सुनिए बादाम सिंह दांगे के ही स्वर में एक और, माफ़ कीजिए, बलराम सिंह दांगे के ही स्वर में एक और खूबसूरत लोकगीत।

मादाम सिंगदांगी के गए इस खूबसूरत लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम लोक रंग अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर।

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय प्रातः के 9:30 हुए हैं। लीजिए एक बार फिर सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हम अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और सुनवाते हैं आप सभी की पसंद पर कुछ खूबसूरत गीत। कार्यक्रम का पहला पत्र हमने लिया है इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। ये सभी लिख रहे हैं मोरी गेट इंदौर से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, नरेंद्र कुमार और इनके साथी। ये सभी सुनना चाहती हैं फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की से लिया ये गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों के स्वर में। रचना है अमीर खुसरो की और इसे संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश से समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं आपके ही फरमाइश पर कुछ खूबसूरत फिल्मों के गीत। लीजिए अब सुनिए अभिमान फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मनहर उदास के स्वर में। गीत है मजरूह सुल्तानपुरी का और संगीतबद्ध किया है SD वर्मन ने। इस गीत की फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं महाराणा प्रताप नगर शिवपुरी से शुभम, सुभी, भैयू, यशु, गोलू, राघव, पूर्वी, बिट्टू, नंदनी, सुमन तिवारी और इनके सभी साथी।

0: कार्यक्रम आपकी फरमाई से समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनिए कुछ जरूरी संदेश।
1: जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी के स्वर में फिल्म जीने की राह का ये गीत। गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार, डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारिणी, सूरज ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत, इसे हमने लिया है इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। ये सभी लिख रहे हैं भोलेनाथ कॉलोनी इंदौर मध्य प्रदेश से स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाव मराठा, परी संजना मराठा और ललिता नारायण खर्चे। ये सभी सुनना चाहते हैं कामचोर फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में। गीत है इंदिवर का और इसे संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन।

लीजिए कार्यक्रम के आखिर में सुनिए इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत। ये सभी लिख रहे हैं राजेश्वरी रोड शिवपुरी से ओसीन अर्जुन अर्चना सतीश नैना विशाल किरण नैन्सी और इनके सभी साथीगण। ये सभी सुनना चाहते हैं लोफर फिल्म का ये गीत आशा भोसले के स्वर में। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आपने सुना मर्यादा फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी के स्वर में, गीतकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार कल्याण जी आनंद जी। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता थे महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खड़से, रक्षताई खड़से, ललिता संजना, गणेश कार्तिक मालती और स्वाति प्रिया खड़से। इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के शुभपुरी केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम 100.2 मेगा हर्ट्ज पर। इस समय प्रातः के 10 बजने को हैं। अगला कार्यक्रम जिले की चिट्ठी थोड़ी देर में भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर।
1: भोपाल से प्रस्तुत है पन्ना जिले की चिट्ठी। आलेख दिलीप कुमार शर्मा का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। पन्ना जिले के सुप्रसिद्ध धार्मिक और प्राकृतिक स्थल बृहस्पति कुंड में बने नए ग्लास ब्रिज का क्षेत्रीय सांसद वीडी शर्मा ने निरीक्षण किया। भगवान श्रीराम के वन

पवन पथ और देव गुरु बृहस्पति की तपोस्थली के रूप में पूजनीय इस स्थल पर बना यह ग्लास ब्रिज पर्यटकों को प्रकृति का अनूठा नजारा दिखाएगा। सांसद श्री शर्मा ने कहा कि इससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। पन्ना को सीधे रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली ललितपुर सिंगरौली नई रेल लाइन परियोजना के तहत फुलवारी से देवेंद्र नगर के बीच करीब 7 किलोमीटर लंबे नए रेल खंड का रेल संरक्षा आयुक्त ने विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान नए ट्रैक पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफल स्पीड का ट्रायल भी किया गया। हालांकि खजुराहो पन्ना खंड में रूट डिजाइन में बदलाव के चलते 7 सुरंगें और 10 पुल बनाए जाएंगे, जिससे समय और लागत दोनों बढ़ने की संभावना है। पन्ना जिले में विश्व पर्यावरण दिवस पर बीते दिनों एक पेड़ माँ के नाम 2.0 महाअभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर पौधरोपण किया गया। पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने अटल पार्क में और पवई विधायक प्रहलाद लोधी ने बनौली में पौधे लगाए। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष, कलेक्टर और वन मंडलाधिकारी की उपस्थिति में 150 फलदार और छायादार पौधे रोपे गए। पन्ना जिले की शाहनगर ग्राम पंचायत प्रदेश की नंबर 1 स्वावलंबी पंचायत बन गई है। ये पंचायत जल कर, स्वच्छता कर, संपत्ति कर और बाजार बैठकी कर से हर महीने करीब 3 लाख रुपए यानी सालाना 36 लाख रुपए का राजस्व अर्जित कर रही है। पंचायत ने मुख्य बाजार में डिवाइडर युक्त डामर सड़क और सुंदर लाइटिंग भी कराई है। तमोली ग्राम वन समिति के अध्यक्ष अजय चौरसिया की पक्षी संरक्षण की अनूठी पहल पूरे प्रदेश के लिए मिसाल बन गई है। उन्होंने सूखी लौकी और प्लाईवुड से प्राकृतिक पक्षी घर तैयार किए हैं, जिसमें आज सैकड़ों पक्षी बसेरा कर रहे हैं। उनकी इस कोशिश को पर्यावरण प्रेमियों से खूब सराहना मिल रही है। शाहनगर तहसील के सामने कांग्रेस पार्टी ने किसानों की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बीते दिनों किया। तेंदुघाट बांध सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के 4 गांवों के किसानों को 8 साल से मुआवजा न मिलने पर ये प्रदर्शन किया गया। तहसीलदार ने बताया कि भू अर्जन की फाइल जिला मुख्यालय भेज दी गई है और जल्द ही मुआवजा वितरित किया जाएगा। अजयगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत बिहरपुरवा में मनरेगा कुआं निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से 5 मजदूरों की मौत के मामले में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सरपंच और ठेकेदार सहित 3 जिम्मेदारों पर FIR दर्ज की है। प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार, सांसद वी डी शर्मा और विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधवाया। भाजपा नेता संजय नागायच को मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कारपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गुनौर विधायक राजेश वर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रविराज यादव और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अंकुर त्रिवेदी सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी। जिले की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर उषा परमार ने बीते दिनों पवई क्षेत्र का दौरा कर सब जेल, नवनिर्मित सिविल अस्पताल, कस्तूरबा कन्या छात्रावास और जनजाति छात्रावास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार तलैया ने शाहनगर में सभी प्राचार्यों की आपात समीक्षा बैठक ली। उन्होंने मानसून से पहले स्कूल भवनों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था और विद्यार्थियों की अपार आईडी बनाने के काम को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र की प्री खरीफ वैज्ञानिक परामर्शदात्री समिति की बैठक बीते दिनों जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलगुरु प्रोफेसर प्रमोद कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में किसानों को खरीफ मौसम में समन्वित खेती, धान की सीधी बुआई, जैव उर्वरकों के उपयोग और मोटे अनाज की खेती अपनाने की सलाह दी गई। विशेषज्ञों ने परंपरागत बीजों के संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया। जिला चिकित्सालय में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, शुगर और सोनोग्राफी सहित अन्य जाँचें की गयी। जिले में जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण का कार्य समय पर पूरा न करने पर कलेक्टर उषा परमार ने 42 प्रगणकों और सुपरवाइजरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। जिले के शासकीय कार्यालयों में AI टूल्स के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आज कलेक्ट्रेट स्थित ई दक्ष केंद्र में 45 शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। विभिन्न विभागों के इन कर्मचारियों को कार्यालयीन कार्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी जाएगी। पन्ना जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे पन्ना जिले की चिट्ठी। आलेख था दिलीप कुमार शर्मा का, वाचन स्वर अभिषेक कटियार का था। ये प्रसारण आपकी सेवा में आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से किया जा रहा था। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा।

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय प्रातः के 10:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के हमारे कलाकार हैं घनश्याम बासवानी। लीजिए कार्यक्रम की पहली गजल।

0: अभी आपने सुनी घनश्याम वासवानी के स्वर में ये खूबसूरत गज़ल। कार्यक्रम सुगम संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रही हैं। कार्यक्रम में अगली गज़ल हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले सुनिए कुछ ज़रूरी संदेश।
1: देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

कार्यक्रम सुगम संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं घनश्याम वासवानी की गायक

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आपने सुना घनश्याम वासवानी के गाए कुछ खूबसूरत गजलों को। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगा हर्ट्स पर। इस समय प्रातः की 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

अभी आपने सुना खानदान फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीत लिखा था नक्श लियालपुरी ने और संगीतबद्ध किया था खयाम ने। कार्यक्रम फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं चुनिंदा फिल्मों के कुछ खूबसूरत गीत। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वर में आंधी फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है गुलजार ने और इसे संगीतबद्ध किया है राहुल देव वर्मन।

0: कार्यक्रम फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं चुनिंदा फिल्मों के कुछ खूबसूरत गीत। कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, लेकिन अभी सुनिए कुछ जरूरी संदेश।
1: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अभी आपने सुना मनहर उदा मनहर के स्वर में फिल्म आप तो ऐसे न थे का ये गीत। गीत लिखा था निदा फाजली ने और संगीतबद्ध किया था उषा खन्ना ने। कार्यक्रम फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए महेंद्र कपूर के स्वर में फिल्म निकाह का ये गीत। गीतकार हैं हसन कमल और संगीतकार रवि।

0: किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगा हर्ट्स पर। इस समय प्रातः के 11 बजने को हैं। आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम थोड़ी देर में भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
2: ये आकाशवाणी भोपाल है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुनें।

नमस्कार, इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। मैं सुनीता सिंह। श्रोताओं, इंतजार केवल समय का बीतना नहीं बल्कि आशाओं का खिलना भी है। जिस तरह तपती हुई धरती आसमान में उमड़ते बादलों को निहारती है, सूखे खेत जिस तरह बारिश की बूंदों

0: के लिए बेचैन रहते हैं। जिस तरह अंधेरी रात भोर की पहली किरण का स्वागत करने के लिए जागती है, जिस तरह बंद कली सूरज की ऊष्मा लेकर मुस्कुराने का इंतजार करती है, हमें मालूम है कि आप भी ठीक उसी तरह अपने पसंदीदा गीत इस कार्यक्रम में सुनने का इंतजार करते हैं, क्योंकि ये गीत आपके लिए केवल सुर नहीं होते, ये आपके लिए कभी यादों की खुशबू होते हैं, कभी बीते हुए पलों की दस्तक होते हैं, कभी ये गीत दिल की अनकही बातों का आईना होते हैं, तो कभी आपके एहसासों का दरिया होते हैं। तो आपकी फरमाइशों का गुलदस्ता लेकर इस फोन इन कार्यक्रम में हम एक बार फिर हाजिर हैं। चलिए कुछ पल जिंदगी की भागदौड़ से चुराएं, कुछ पल यादों की गलियों में बिताएं। आइए कुछ पल संगीत की उस नदी में बहें जहां हर लहर एक नया एहसास लेकर आती है। फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: धन्यवाद, मैं यहाँ राजाराम नगर देवास मध्य प्रदेश से राजेश अग्रवाल बोल रहा हूँ। दीदी,
0: राजेश जी, कैसा है देवास और कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी, जैसा भोपाल वैसे ही ये है। यहाँ पर बेंगनोट प्रेस है और जैसे माता चामुंडा की वो है पहाड़ी पे
0: जी,
1: और औद्योगिक क्षेत्र है ये।
0: जी जी जी जी। तो राजेश जी, कौन सा गीत सुनवाएं आपको
1: आज? गीत ये शिकारी पिक्चर का गीत सुनवा दीजिए, तुमको पिया दिल दिया लता जी और उषा मंगेशकर की आवाज में।
0: क्या बात है,
1: आपका संगीत है,
0: बहुत ही मीठा गीत है लता जी और उषा जी की आवाज में, और मुझे लगता है कि सभी श्रोताओं को भी पसंद आएगा। तो चलिए,
1: हमारे लेटर का ध्यान रखो कि लेटर बहुत कम लिए जा रहे हैं इसमें।
0: चिट्ठियाँ आप लगातार लिखिए, पत्र आपके शामिल होंगे, ठीक है? तो राजेश जी, आपने फोन किया, आपका आभार करते हैं और आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्कार जी।
0: नमस्कार। नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी मैम, गुरमुख सिंह बोल रहा हूँ, ग्राम प्रतिया कला, जिला जलंधर, पंजाब से।
0: गुरमुख जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। हम फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में।
1: जी मैम, धन्यवाद आपका,
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ मैम। रात बारिश भी, थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया, इसलिए अच्छे होकर फोन लग गया, और भी अच्छे हो।
0: बिल्कुल, यहाँ भी मौसम इसी तरह का है और फोन लग गया, इसलिए हम भी बहुत खुश हैं। तो रेडियो चल
1: जी
0: रहा है आपका, गीत संगीत में रुचि है आपकी बहुत।
1: जी मैम, गीत संगीत खास रफी साहब और लता जी के गाने बहुत अच्छे लगते हैं। दुनिया में ना कोई आया ना कोई आएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो बताइए कौन सा गीत सुनेंगे लता जी और रफी जी की आवाज में, अगर वो आपके पसंदीदा कलाकार हैं तो।
1: दिल का हीरा, मोमी का नाम, एक पत्थर दिल को मैं दिल दे बैठी।
0: दिल का हीरा, इस फिल्म का गीत, एक पत्थर दिल को। ठीक है, तो चलिए
1: जी मैम,
0: लता जी और मोहम्मद रफी की आवाज में गाया ये गीत आप तक भेजते हैं। आपके दोनों ही पसंदीदा कलाकार, उनकी आवाजें आप तक पहुंच रही हैं। इसी तरह जुड़े रहिए हमसे और सुनते रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: जी बिल्कुल मैम, धन्यवाद।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम बताइए।
1: नमस्ते, शीत गंगा मेहरा बात करें नीमच से।
0: नमस्ते, नाम एक बार फिर बोलिएगा।
1: गंगा मेहरा।
0: गंगा मेहरा जी, कैसी हैं
1: जी? अच्छे मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। गीत संगीत का शौक रखती हैं
1: जी मैम?
0: किस तरह के गीत पसंद आते हैं आपको?
1: 90 के दशक के सॉन्ग बहुत अच्छे लगते हैं, और ओल्ड भी बहुत अच्छे लगते हैं, जो ज्यादा नए होते हैं वो थोड़ा अच्छे नहीं लगते।
0: तो मतलब 90s के गीत पसंद करती हैं और जो पुराने गीत हैं वो आपको अच्छे लगते हैं। तो आज क्या फरमाइश है
1: मैम? मूवी का नाम है बेवफा सनम, और गाने बोले दिल तोड़ के हंसती वो मेरा।
0: दिल तोड़ के

0: मस्ती हो मेरा, उदित नारायण जी का गाया हुआ गीत।
1: मैम
0: तो चलिए आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का गीत, सुनिए, गुनगुनाइए और इसी तरह खुश रहिए। बहुत बहुत
1: थैंक यू
0: आभार
1: मैम।
0: आपने फोन किया।
2: बिखरे बिखरे जुल्फे तेरे, पसीना माथे पर है।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। फोन करें, गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अपना परिचय दीजिए।
1: जी, मैं इंदौर से जीनत परवीन कोहिनूर कॉलोनी से बोल रही हूँ।
0: जीनत परवीन जी,
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: बस घर में ही काम।
0: घर का काम करते हुए रेडियो किस तरह से साथ देता है आपका?
1: रेडियो बस साथी है मेरा, और क्या, गाने सुनती रहती हूँ और काम भी निपटाती रहती हूँ।
0: जी, बड़ा अच्छा लगता है ना जब घर में
1: जी
0: रेडियो गुनगुनाता रहता है और आप डूबे हुए से काम करते रहते हैं, तो काम का
1: जी
0: पता नहीं चलता कि कितना काम किया, कितना वक्त हुआ, और आप बिल्कुल
1: जी
0: आनंद के साथ समय गुजरता है ना?
1: जी अब टीवी में तो क्या बैठ कर देखना पड़ती है, ये रेडियो में तो गाने सुनते रहो, अपना भी काम निपटाते रहो।
0: बिल्कुल, टीवी देखते हैं तो फिर काम रोकना ही पड़ता है।
1: मैं नीचे देर से आती हूँ, रात को 9 बजे टीवी देखती हूँ, बस 1 आध घंटे, फिर सो जाती हूँ 11 बजे।
0: और बाकी पूरे वक्त रेडियो चलता है।
1: जी, पूरा वक्त रेडियो, सब चैनल, कोई भी, इंदौर
0: जी,
1: है, भोपाल है।
0: हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है कि रेडियो आपका इतना साथ देता है और आप रेडियो का इतना साथ देती हैं। कौन सा
1: जी,
0: गीत
1: मैं
0: सुनेंगी आज?
1: वक्त पिक्चर का सुनना चाहूंगी। ए मेरी जोरा जबी, तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, ये वाला। जी,
0: तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। बहुत
1: ये
0: ही
1: मैं अम्मी और बहनों के लिए डेडिकेट रहेगा, क्योंकि वो भी सुनती हैं। अम्मी
0: जी जी
1: का नाम है
0: जी
1: मंदसौर में रहती, नूर भी, अंजुम,
0: हाँ।
1: गजाला, शम्मी, शाइस्ता, रुखसाना, रोशन।
0: तो चलिए, बहुत ही लोकप्रिय ये गीत है, आप तक
1: जी,
0: भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
1: शुक्रिया मैम।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, अपना परिचय दीजिए।
1: कालीचरण यादव, ग्राम संतल बरादरी से।
0: कालीचरण यादव जी कैसे हैं?
1: अच्छी है मैडम जी।
0: रेडियो किस तरह से साथ देता है आपका, कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
1: मैं सब सुनता हूँ, ग्वालियर के आकाशवाणी की प्रोग्राम सुनता हूँ, भोपाल के सुनता हूँ।
0: अच्छा,
1: और रेडियो चल रहा है, ग्वालियर चल रहा है, मेरा नाम बनता है, मेरा हाँ नाम बनता है रेडियो।
0: जी जी, और
1: ग्वालियर में बहुत प्राण खुदा ग्वालियर ग्राम।
0: अच्छा, और कौन कौन से कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं, किस तरह के कार्यक्रम पसंद करते हैं?
1: मैं पुण्य कार्यक्रम, आपकी परमार्थ कार्यक्रम,
0: मतलब फिल्म संगीत में विशेष रुचि है आपकी।
1: वो वाले कार्यक्रम बहुत अच्छे चल रहे हैं, ग्वालियर के बंद हुए कार्यक्रम सुबह सुबह चंदा कार्यक्रम होता परमार्थ।
0: जी जी, कौन सा गीत सुनवाए आज?
1: गुरा काला पिक्चर सुनवा देना, मुझे जता की आवाज में धीरे धीरे बोल को सुनना ले।
0: धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले।
1: जी जी, प्राण गान पवन मंदिरी को।
0: जी जी, तो कालीचरण यादव जी आपने हमें फोन किया, आपका गीत आप तक भेजते हैं, बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
1: धन्यवाद मैडम,
0: नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार मेरी बहना।
0: हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे
1: और
0: हैं?
1: आप कैसे हो बहना मेरी? चलो
0: हम बहुत अच्छे हैं।
1: अच्छा, आप प्रभु की कृपा है आपके ऊपर।
0: हाँ, हमारे कौन से भाई बोल रहे हैं?
1: मैं आपका एक भाई बोल रहा हूँ, मंदिर का पुजारी हूँ मैं,
0: जी
1: और मालेगांव से बोल रहा हूँ, तुलसीराम व्यास। पहले रिटायर हो चुका हूँ मैं, शिक्षक था पहले। अच्छा,
0: अच्छा, तो आप
1: रिटायर
0: शिक्षक
1: हो
0: थे।
1: चुके, मैंने पुजारी जी कर काम चालू किया है।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ, तो क्या करूँ इस उम्र में, तो मैं भगवान की सेवा ही करना मेरे लिए सर्वप्रथम है।
0: बिल्कुल। और देखिए, ईश्वर का स्मरण तो पूरे जीवन करना चाहिए, है ना?
1: मन नहीं लगता था तो मैंने मंदिर का काम चालू किया है, पुजारी का,
0: जी
1: मंदिर की
0: जी
1: सेवा कर रहा हूँ मैं।
0: जी जी बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ
1: हाँ
0: ही रेडियो भी आपका साथ देता होगा,
1: हाँ
0: जाहिर सी
1: रेडियो
0: बात
1: तो
0: है।
1: मेरा बिल्कुल, मैं 1955 और 56 से सुन रहा हूँ।
0: अच्छा, तो बहुत पुराने श्रोता हुए आप हमारे।
1: हाँ, पुराना रेडियो है मैडम।
0: जी जी जी जी
1: आज मेरे पिताजी भी वही सुनते थे, मेरा बालक भी वही सुनता हूँ, और मैं भी सुनता हूँ। आकाशवाणी ये आकाश में अमर है, और ये सबके दिलों में बसी है आकाशवाणी,
0: बिल्कुल, सबके दिलों में
1: सबके
0: बसी है।
1: दिलों में। और
0: और
1: हमारा एक नीमच में मेरा भाई है, 82 साल का, उनका नाम आरसी जैन,
0: जी जी
1: वो भी बहुत पुराने गाने के बहुत आशिक है। तो
0: जी जी तो देखिए,
1: ये गाना
0: आकाश
1: उन्होंने मुझे दिया है, फागुन का,
0: फागुन फिल्म का गीत, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: कौन परदेसी मेरा दिल ले गया।
0: एक परदेसी मेरा दिल ले गया, आशा जी का गाया हुआ गीत। तो
1: बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर है।
0: जी
1: मैं
0: जी
1: मंदिर में प्रार्थना आपके आकाशवाणी परिवार के लिए रोज करता हूँ, सुबह से शाम तक के।
0: बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सुंदर भाव हैं
1: मेरा
0: आपके।
1: ये आकाशवाणी एक परिवार है मेरा।
0: जी, तो इसी तरह से आकाशवाणी से प्रेम बनाकर रखिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्ते मैम, प्रणाम करता हूँ। संतोष कुमार राव बात कर रहा था, उमरिया मध्य प्रदेश से। कुछ पंक्तियाँ पेश है आप तक और सभी सुनने वाले साथियों तक।
0: जी जी
1: कहते हैं, सुबह सवेरे सूरज आता भाई पूरब में लाली फैलाता, देव प्रकाश की किरणें हमको अंधकार से दूर भगाता।
0: वाह, तो एक

0: जो नया दिन है वो कोरा सा हमारे जीवन में आता है, प्रकाश की भाषा में आता है, और ये आह्वान करता है कि अपने जिंदगी में जो कुछ हम करें वो प्रकाशमय हो, है ना?
1: बिल्कुल, चंचल
0: तो संतोष,
1: और शीतल आवाज की धनी, यहीं कह कि मधुर आवाज की मलका, आदरणीय मैडम सुनीता सिंह जी को मेरा प्यार भरा अभिवादन भी रहेगा।
0: नमस्कार नमस्कार। तो ये बताइए कि कैसे हैं आप और कैसा है मौसम?
1: जी मैम, मैं बहुत अच्छा हूँ। बताऊँ आपसे मौसम की बातें, लगातार प्री मानसून की गतिविधियाँ हमारे मध्य प्रदेश में जारी है, और इस
0: जी
1: बीच हमारा जो बघेलखंड है, खास करके उमरिया और शहडोल के आसपास, यहाँ पे बादल छाए हुए हैं और हल्की सी मध्यम बारिश हो रही है, और अभी हवाएं चल रही है मैडम दिन में। जी
0: चलिए, तो मतलब मौसम सुहाना है।
1: बिल्कुल
0: तो
1: मैम।
0: इस सुहाने से मौसम में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी मैम, जब कार्यक्रम चलते हैं ना, कार्यक्रम फोन करने गीत सुने, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा प्रसारण जाता है। आपका जो कार्यक्रम आता है वतन कराग, इतना ऊर्जावान हमें कर देता है, खास करके जब वीर शहीदों की बातें होती है
0: जी
1: आपके कार्यक्रम के द्वारा संचालित कार्यक्रमों में, तो
0: जी
1: बहुत ही अच्छा लगता है। नमस्कार भोपाल एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें ज्ञान विज्ञान की बातें होती है, साथ में विशेषज्ञ महोदय अच्छी अच्छी बातें बतलाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सभी कार्यक्रम एक से बढ़कर एक रोचक और मनोरंजन कार्यक्रम प्रसारण होते हैं
0: क्या
1: आकाशवाणी
0: बात
1: मध्य
0: है
1: प्रदेश के माध्यम से।
0: संतोष जी, आप बहुत ध्यान से रेडियो सुनते हैं, इस बात का हमें बहुत संतोष है। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। कौन सा गीत सुनवाएं आज?
1: हाँ, मूवी का नाम है धड़कन और बहुत ही प्यारा सा गाना है मैडम, अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं।
0: अगर गुनगुना दें 2 लाइन तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।
1: अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों से मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो यार आते हैं।
0: वाह, बहुत ही सुरीला आपने गाया। तो ये जो स्वर है, ये जो मिठास है, आपकी ज़िंदगी में बनी रहे। आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फ़ोन किया।
1: जी मैम, प्रणाम, नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में अपने अगले श्रोता का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार, नाम बताएं।
1: नमस्कार, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, मैं जगत सिंह चढ़ार ग्राम पिपली अबराई तहसील बेगमगंज जिला रायसेन से बोल रहे हैं मैडम जी।
0: जगत सिंह चढ़ार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप रेडियो से जुड़ रहे हैं, इस बात की हमें खुशी है। गीत संगीत में आपकी रुचि है, जाहिर सी बात है। किस तरह के गीत पसंद करते हैं
1: जी? पुराने गाना अच्छे लगते हैं, ज्यादा पुराने तो नहीं, 19 के अच्छे लगते हैं।
0: 90s के? अच्छा, और क्या करते हैं आप?
1: मैडम जी, हम बैठे ही रहते हैं, दिव्यांग है तो किराने की दुकान चला रहे अपनी।
0: अच्छा, आपकी दुकान है और दुकान के साथ आप रेडियो भी सुनते रहते हैं। कौन सा गीत सुनवाएं आज, बताइए
1: जी? फूल और कांटे फिल्म का सुना दो, मैंने प्यार तुम्हीं से किया है।
0: वाह, बहुत ही लोकप्रिय गीत है ये, मैंने प्यार तुम्हीं से किया है। आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत, फिल्म का नाम है फूल और कांटे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया।

0: हेलो
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते। फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नाम
1: जी
0: बताइएगा
1: मैम,
0: अपना।
1: मेरा नाम जीनत अंसारी है, मैं महेश्वर से बोल रही हूँ।
0: जीनत अंसारी, कैसी हैं आप?
1: हाँ मैम, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। क्या करती हैं आप?
1: मैं हैंडलूम का काम करती हूँ।
0: अच्छा, महेश्वर की जो साड़ियां हैं वो तो बहुत प्रसिद्ध
1: हाँ,
0: हैं।
1: वर्ल्ड फेमस है
0: बिल्कुल, विश्व प्रसिद्ध हैं, है ना? तो
1: जी।
0: आप एक विरासत को संरक्षित कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो कितने घंटे दिन में काम करना होता है?
1: मैम, घर का काम करके जो भी टाइम फ्री मिलता है उसमें कर लेते हैं।
0: अच्छा, और आपके घर में जो बच्चे हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, वो भी
1: नहीं,
0: सीख रहे
1: बच्चे अभी
0: हैं?
1: छोटे हैं, वो स्कूल जाते हैं।
0: अच्छा, अभी छोटे हैं बच्चे।
1: हाँ
0: अच्छा
1: जी
0: जीनत जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि कितने दिनों के बाद आपने फोन किया है?
1: जी मैम, मैंने 1 फरवरी को लगाया था
0: बहुत अच्छी बात है कि आपने तारीख बताई है, इससे हमें बहुत
1: जी,
0: सुविधा
1: मुझे
0: हो
1: याद
0: जाती
1: है। हाँ
0: है। इससे हमें बहुत सुविधा हो जाती है, अगर श्रोता
1: हाँ
0: हमें तारीख बता दें तो हम झट से अपना रजिस्टर पलट कर देख लेते हैं कि हाँ, इस तारीख को बात हुई थी और इसके बाद बात नहीं हुई है, तो एक
1: जी
0: आसानी
1: जी
0: हो जाती है। तो हमें लगता है कि आपकी बात से हमारे जो दूसरे श्रोता हैं वो भी एक प्रेरणा लेंगे और वो तारीख याद रखेंगे कि किस तारीख को पिछली बार फोन किया था। तो
1: मैम,
0: जीनत जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। कौन सा गीत सुनवाए बताइए?
1: मुझे तलाश मूवी का गीत सुनना है, प्यार
0: गीत के बोल,
1: बदलना जाना मौसम की तरह।
0: यार बदलना जाना मौसम की तरह, बहुत ही खूबसूरत
1: जी
0: गीत। तो चलिए, आप तक भेजते हैं आपकी पसंद का ये गीत, तलाश फिल्म का। बहुत बहुत
1: धन्यवाद
0: धन्यवाद आपने
1: मैम।
0: हमें फोन किया, बहुत शुक्रिया।

0: फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने अगले श्रोता का हम। नमस्कार, नाम बताएं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी, मैं फूलचंद पाल छतरपुर जिले के मनकारी गांव से बोल रहा हूँ।
0: फूलचंद पाल जी कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं। और आपका रेडियो कैसा है?
1: हमारा रेडियो तो बहुत अच्छा है और 90 साल हमारे रेडियो ने जो है पूरा कर लिए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि 100 साल पूरे हों, एक शतकीय पारी पूरी हो, है ना?
1: और 150 साल पूरे हो।
0: बिल्कुल, और उसका हम जश्न मनाएं, पहले तो 100 साल का जश्न मनाएं। तो देखिए इतनी लंबी यात्रा।
1: सुनीता जी क्या है
0: जी,
1: ये रेडियो की महत्ता आज भी घटी नहीं है। देखिए इतने साधन हो गए, मोबाइल टीवी, लेकिन रेडियो अपनी जगह बिल्कुल क्लियर है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसकी
1: आकाशवाणी अपनी जगह क्लियर है। और आकाशवाणी से कोई भी अभी ऐसा वो नहीं है कि जो आकाशवाणी ना सुनते हों लोग।
0: बिल्कुल, आकाशवाणी की एक अपनी जगह है जो बनी हुई है, और हमारा तो ये मानना है कि ये जो जगह बनी हुई है ये हमारे श्रोताओं की वजह से बनी हुई है।
1: देखिए श्रोता और आकाशवाणी
0: जी,
1: ये एक दूसरे के पूरक है।
0: हाँ,
1: आकाशवाणी है श्रोता नहीं है तो कोई मतलब का नहीं है, और श्रोता है आकाशवाणी नहीं है कोई मतलब नहीं।
0: तो चलिए ये जो एक सुंदर यात्रा हम लोग की मिली जुली सी जो चल रही है ये जारी रहे। फिलहाल हम जानना चाहते हैं कि फरमाइश क्या है आपकी।
1: जी बिल्कुल सुनीता जी, फिल्म का नाम है तेरी मेहरबानियां।
0: गीत के बोल,
1: गीत के बोल है कि आई जवानी मोदी चुनरिया सर से सर की जाए। और ये गीत हमारे प्रेमदास बाबा जी और मांगीलाल चंदेल जी और जो है दिनकर सिंह जी को और विजय कुमार पांडे हो गए और मणिराम पाल जीतन पाल जी को डेडिकेट रहेगा ये गीत।
0: अच्छा, तो कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गीत है। हम चाह रहे थे कि आप गुनगुना देते दो लाइन।
1: क्या बात है, तो फिर इसी गीत को गुनगुनाऊं कि कोई बुंदेलखंडी गीत
0: नहीं? अरे आपने तो लालच ही दे दिया। तो पहले तो एक बुंदेलखंडी गीत सुनाइए, फिर ये गीत गुनगुनाइए, ताकि फिर हम गाना आपके लिए प्ले करें।
1: बुंदेलखंडी गुनगुना रहा हूँ
0: जी जी।
1: हाय बाले माँ, हाय बाले माँ, मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बाले माँ। बहुत प्यारा गीत।
0: वाह वाह वाह, बहुत ही मधुर गीत। और देखिए गर्मी की आपने बात की तो यह मौसम कह रहा है कि हाँ अब राहत होने को है, तो हम चाहते हैं कि अपनी फरमाइश भी आप गुनगुना दें तो हम आपका गीत आप तक भेज दें।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई जवानी मोरी चुनरिया सर से सर की जय, इधर संभालू गिरे उधर को नांगन सी लहराए,

पूर्ण चंद पाल जी, आप बहुत ही सुरीले श्रोता हैं, सुनकर बहुत खुशी हुई हमें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फोन किया। आपकी पसंद का गीत आप तक भेजते हैं।

श्रोताओं, आपकी फरमाइशों ने इस महफिल को सजाया, आपके साथ ने इसे संवारा और आपकी बातों ने इसे यादगार बना दिया। समय है आपसे विदा लेने का, लेकिन ये धुनें, ये गीत और ये एहसास हमारे साथ हमेशा बने रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे फूलों के बिछड़ जाने के बाद भी उनकी खुशबू भीतर बनी ही रहती है। तो अब इस कार्यक्रम से इजाजत दें अपनी दोस्त सुनीता सिंह को। नमस्कार, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। अब समय है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी सहित विभिन्न क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास का परिदृश्य बदल रहा है। अमेरिका के नेताओं और बिजनेस लीडर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की यह उपलब्धि उस भरोसे और विश्वास को दिखाती है जो भारत के लोगों ने उनके नेतृत्व पर जताया है। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात दिल्ली में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राणा ने निशानेबाजी में देश को गौरवान्वित किया। उनका निधन भारतीय खेल जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। इस दुख की घड़ी में उनकी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं। मैक्सिको में फीफा विश्व कप के उद्घाटन मैच में कल रात मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया। कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में आयोजित इस विश्व कप में 48 टीमों द्वारा 104 मैच खेले जाएंगे और तुर्की में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय जोड़ी बी धीरज और कुमकुम मोहद ने फाइनल में जगह पक्की कर ली है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपके प्यारे प्यारे पत्र हमारे हाथों में हैं और हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद के गीत। कार्यक्रम का पहला नगमा हमने चुना है, मन्ना डे की आवाज है, फिल्म का नाम है दिल ही तो है। साहिल लुधियानवी ने गीत लिखा है, संगीत रोशन का है, पसंद आप सब श्रोताओं की। भोपाल से कुसुम ज्योति अर्जुन परी और इनके परिवार ने सुनना चाहा है ये गीत। मिष्टी लक्ष्मी भूपेंद्र वर्मा इस गीत को पसंद कर रहे हैं। राकेश और डॉक्टर विनोद ने भोपाल से इस गीत को पसंद किया है। तो आइए सुनते हैं इन सबके पसंद पर दिल ही तो है फिल्म का ये गीत।

Dim tananadir tanum tanadir na dim tananadir tanum tan

और अब आपको सुनवा रहे हैं दस्तक फिल्म का वो नगमा जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, मजरूह के बोल हैं, संगीत मदन मोहन का है, पसंद आप सब श्रोताओं की। डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारनी, सूरज ज्योति और बाबू रेयांश ठाकुर ने अमलेश्वर से ये गीत सुनना चाहा है। ततरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा ने इस गीत के लिए हमें पत्र लिखा है। इसी गीत को सुनना चाहते हैं सुरेंद्र और कुसुम भारद्वाज। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

अब आपको सुनवा रहे हैं बसंत बहार फिल्म का वो गीत जिसे आवाज दी है मन्ना डे और भीमसेन जोशी ने। शैलेंद्र का लिखा हुआ ये गीत है, संगीत शंकर जयकिशन का। पसंद आप सब श्रोताओं की। अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव ने राजिम से हमें ये गीत सुनने की ख्वाहिश लिख भेजी है। पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंशीलाल, रेखा, श्वेता, सुरुचि, दिशा और लवी श्रीवास्तव का पत्र हमें मिला है। आइए सुनते हैं बसंत बहार फिल्म का ये गीत।

अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में सहरा फिल्म का वो नगमा जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत रामलाल का है। पसंद आप सब श्रोताओं की, मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा, शारदा, दामिनी इस गीत को सुनना चाहते हैं। इसी गीत को पसंद किया है अंतिमा और सोना ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं गुलजार का लिखा नगमा, आवाज भूपेंद्र और सुलक्षणा पंडित की। कानू रॉय ने संगीत तैयार किया है। फिल्म का नाम है गृह प्रवेश। पसंद आप सब श्रोताओं की। देवास से मनीष, मृत्युंजय, शिखा और पूनम ने इस गीत को सुनना चाहा है। मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न वाल्मीक, नीनाजी धाड़े, स्वप्निल और अजय खिरोड़कर इस गीत को सुनना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं इन सब के साथ हम भी गृह प्रवेश फिल्म का ये नगमा।

0: मैंने।
1: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से।
0: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

0: गृह प्रवेश फिल्म के इसी गीत के साथ आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, हमारा अगला प्रसारण इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: हर शनिवार शाम 7:45 से आकाशवाणी भोपाल पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: मैं डॉक्टर अजय सिंह। आकाशवाणी 9 दशकों से भारत की आवाज रही है, जिसने हमारे समृद्ध देश की विरासत को सजोने और प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस ऐतिहासिक उत्सव का हिस्सा बनना और इसकी विरासत में योगदान देना मेरे लिए एक गर्व की बात है। आकाशवाणी को 90 गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
6: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
7: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: भारतीय सेना, भारतीय सेना।
1: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
2: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं धारावाहिक जंग लगी तलवार। आज सुनिए इसकी 7वीं कड़ी।
1: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियोमैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना बलबीर स्वामी दलित बस्ती में सभा को संबोधित करते हुए हड़ताल के उद्देश्यों पर प्रकाश डालता है। वो कंपनी को दिए जाने वाले नोटिस को पढ़कर मजदूरों को सुनाता है। मजदूर कहते हैं कि हड़ताल का प्रभाव उल्टा पड़ा तो वे यूनियन नेताओं को साई के बालू में जिंदा दफना देंगे। यशवंत अकेले में नारायणी के विषय में सोचता है। लिचू और शिबू हड़ताल को लेकर अपने नजरिए से बात करते हैं। यशवंत नारायणी से शिबू का हालचाल पूछता है। नारायणी उसे घर आने के लिए कहती है। लिचू और शिबू दलित मजदूरों की दुर्दशा पर बहस करते हैं। अब आगे

0: भगवान भी कितना निर्दयी है, खाने पहनने को तो देता नहीं, शरीर को रोगी जरूर बना देता है। हम गरीबों की जिंदगी भी कोई जिंदगी है, इससे तो मरना बेहतर है।
1: नारायण
0: बोलो,
1: तू ठीक कहती है नारायण, मैं आभागा तुझ पर बोझ बनकर जी रहा हूँ।
0: नहीं नहीं
1: नारायण, तू एक काम कर, मेरा मेरा गला दबा दे नारायण, मेरा गला दबा दे। ना रहेगा पास और ना बचेगी बात।
0: क्या कह रही हैं आप?
1: अरे मैं सच कह रहा हूँ नारायण, अपना ये बोझ अब मुझसे सहन नहीं होता। अरे अब तो मर कर ही शांति मिलेगी।
0: नहीं नहीं ऐसा ना कहिए।
1: मुझे मार डाल नारायणी, मुझे मार डाल, मुझे मार डाल। अरे मुझे मुक्ति दे, मुझे मुक्ति देकर तू भी मुक्त हो जा। जा जा मेरे भार से।
0: नहीं नहीं नहीं स्वामी नहीं, आपके बिना मैं नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। पति या पंग हो या बीमार, एक औरत का वही सबसे बड़ा सहारा होता है। फिर कभी ऐसी बात अपने मुंह से ना निकालना, कभी ना निकालना।
1: नारायण
0: ये क्या, मुन्ना रोने लगा, इसे भी अभी उठना था। मैं क्या करूं, मुझे काम पर जाने को देर हो रही है, क्या करूं मैं?
1: नारायण नारायण तू जा, तू जा, मैं इसे चुप करा लूंगा, तू जा।
0: कैसे जाऊं, कैसे जाऊं मैं?
1: चुप करा लूंगा, तू जा, जा।
0: एक माँ अपने रोते हुए बच्चे को छोड़कर कैसे जा सकती है, कैसे जा सकती है? नहीं नहीं जा सकती ऐसे। हाँ मेरे मुन्ने आजा, हाँ बेटा मेरी गोद में आजा, आजा। मत रो मत रो मेरे लाडले, चुप हो जा। ठीक ठीक मैं तुझे लोरी सुनाऊंगी, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे ये तो और जोर से रोने लगा।
1: अरे नारायणी, भूखा बच्चा रोएगा नहीं तो क्या करेगा, क्या हंसेगा, हंसेगा ये?
0: तो मैं भी क्या करूं, दूध भी खत्म हो गया है, क्या पिलाऊं इसे? हाँ पानी पिला देती हूँ। सुनो, काम से वापस आते समय 5 रुपए का दूध ले आऊंगी, ठीक है ना?
1: ठीक है, अभी तो इसे चुप करा।
0: हाँ पानी पिलाती हूँ, ले ले बेटा पानी पी ले। अरे अरे क्या करूँ मैं, ये तो चुप ही नहीं हो रहा, क्या करूँ अब मैं?
2: अरे शिभू, घर में हो क्या?
1: कौन है भाई?
2: मैं यशवंत।
1: हो यशवंत भाई, आओ आओ आ जाओ, अंदर आ जाओ।
3: कैसा है शिबू?
1: अरे यशवंत भाई, लाचार इंसान कैसा हो सकता है? भगवान से दिन रात ये मांगा करता हूँ कि मुझे बहुत दे दे
3: शिबू,
1: बहुत दे दे मुझे, पर नहीं, भगवान गरीबों की फरियाद कहाँ सुनता है?
3: खबरदार शिबू, जब कभी मरने की बात की तो। अरे अभी तो तुझे बरसों जीना है, बरसों, समझा?
4: यशवंत बाबू, आप किसी काम से आए थे?
3: हाँ बस तुम लोगों का हालचाल पूछने आया था। एक बात और।
4: कौन सी बात?
3: परसों नोटिस की मियाद खत्म हो रही है, परसों से हड़ताल शुरू होगी, बस यही बताने आया था।
4: हड़ताल? यशवंत बाबू, हड़ताल शुरू हो गई तो हम खाएंगे क्या?
3: अब
4: हम तो रोज कुआं खोदकर पीने वालों में से हैं, बिना मजूरी किए तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा ना।
3: तेरी बात में दम है नारायणी, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है ना।
4: हमारे पास खोने के लिए है ही क्या? अपने पेट पर तो हम पत्थर बांध भी ले, पर बच्चों के मुंह से दूध तो नहीं छीन सकते ना।
3: धैर्य से काम ले नारायणी, धैर्य से काम ले।

0: इस हड़ताल का नतीजा जरूर अच्छा निकलेगा और तब तब कोई बेकार नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं सोएगा, सब सब खुशहाल हो जाएंगे। अच्छा शिबू, अब मैं चलता हूँ, दूसरे लोगों को भी ये बात समझानी है।
1: अच्छा नारायण, ठीक है।
2: आप भी थोड़ा सा पानी पी लीजिए। हम
3: सुनो भाइयों, सुनो क्या कह रहे हैं,
4: मेरी बात ध्यान से सुनो।
5: अरे तुम क्या कहना चाहते हो काका, और तुम्हारे हाथ में ये डिब्बा कैसा है?
3: कैसा है डिब्बा?
4: यही तो बताना चाहता हूँ मैं। मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस डिब्बे में अपनी कमाई का एक हिस्सा जरूर डालें।
5: किस लिए काका?
4: अरे परसों से हड़ताल शुरू हो रही है, भगवान ना करे ऐसा दिन आए। मगर जब बच्चे भूख से बिलखने लगेंगे तो इन्हीं पैसों से उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। अरे आओ आओ, सभी लोग इस डिब्बे में पैसे डालो।
6: ठगने का धंधा अच्छा बनाया तुमने, क्या समझता है तुम्हारे बहकावे में आ जाएंगे हम लोग?
7: जब डिब्बा भर जाएगा तो इसे लेकर चंपत हो जाओगे। हमें मूर्ख समझ रखा है क्या?
4: नहीं भाइयों नहीं, ना तो मैं ठग हूँ और ना ही बेईमान। मुझे अंदेशा हो रहा है कि हम लोगों पर संकट के बादल छा जाएंगे। हमारे बच्चे भूख से बिलख बिलख कर दम तोड़ देंगे। रोटी के एक एक टुकड़े के लिए इंसानों और जानवरों में लड़ाई होगी। ऐसे बुरे वक्त के लिए मैं तुम लोगों से प्रार्थना कर रहा हूँ भाई।
6: इस बूढ़े का दिमाग फिर गया है, उधर यूनियन वाले चंदा ले रहे हैं। अरे ऐसे फिरा, अरे चलो चलो भाई, चलो अपने काम पर चलो।
4: चले गए, सब चले गए।
0: सब नहीं काका, मैं हूं ना।
4: तू भी चला जा बेटा, जब कोई नहीं रुका तो तू क्यों रुका हुआ है?
0: क्योंकि मुझे आपकी बातों पर पूरा विश्वास है।
4: सच?
0: हाँ काका। काका मेरी जेब में कुल 2 रुपए हैं, ये मैं आपके डिब्बे में डाल देता हूँ।
4: भगवान तेरा भला करे, औरों को भी इसी तरह सद्बुद्धि दे।

0: मजदूर साथियों, मजदूर साथियों, कंपनी को दिए नोटिस की मियाद आज खत्म हो गई। कंपनी के अधिकारियों ने हमारी मांगों को गैर कानूनी ठहरा दिया है। आज से हम हड़ताल पर हैं। आज से काम बंद,
1: काम बंद।
0: सभी मजदूर अपनी एकता का परिचय दें और यूनियन के जलसों और सभाओं में भारी तादाद में हिस्सा लेकर कंपनी को अपनी मांगों को मनवाने के लिए मजबूर कर दें। सभी लोग नारा लगाएं, मजदूर एकता
2: जिंदाबाद, जिंदाबाद,
0: मजदूर एकता
2: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
0: हर जोर जुल्म की टक्कर में
2: संघर्ष हमारा नारा है।
0: हर जोर जुल्म की टक्कर में
2: संघर्ष हमारा नारा है।
3: लो भैया शिवू, अरे हड़ताल शुरू हो गई। कल तक काम ही काम रहता था, मगर अब तो बेकार हो गए। अरे भैया, खाली बैठे बैठे तो समय काटना भी मुश्किल हो गया है।
4: अरे लीचू, मुझे तो इसकी आदत पड़ गई है भाई। हाँ, तुम जैसे लोगों के लिए जरूर मुश्किल हो गई है।
3: अरे जगन्नाथ, अरे तू क्या कर रहा है बेटा?
5: बापू देखो, मैंने अपना नाम लिखना भी सीख लिया है।
3: अच्छा,
5: जरा पढ़कर तो देखो, ठीक लिखा है?
4: अरे वाह, अरे क्या तू हमारा नाम भी लिख सकता है? है? लिख सकता है क्या?
5: हाँ।
4: चल रहने दे, हमें कौन सा पढ़ना आता है।
3: हाँ शिवू, जिंदगी में हम दोनों ने अपना नाम भी लिखना नहीं सीखा है।
4: लीचू भैया, हम तो ठहरे अंगूठा टेक, हमारे लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है।
3: सही कहते हो भैया।
5: बापू।
3: हाँ क्या है?
5: मैं खेलने जाऊं?
3: आ जा, लेकिन जल्दी लौट आइयो। अच्छा
5: ठीक है
3: बापू। हाँ। हड़ताल से साई नदी कितनी शांत हो गई है ना शिवू। ना लोगों की भागम भाग है, ना क्रेशर की कान फोड़ू घर घराहट है, ना कुछ।
4: हाँ लीचू, ऐसा लगता है जैसे साई भी चैन की सांस ले रही है। शांत और निर्मल साई, किसी सपने जैसी।
3: सही कहते हो शिवू।
4: ले, भंग हो गई ना साई की शांति, अब नारों का शोर गूंजा करेगा यहाँ।
3: अरे क्या हुआ? ये तो अपना यशवंत है, इसने तो आज खादी का नया कुर्ता पजामा पहन रखा है। खरीदने के लिए इतने पैसे कहां से आए इसके पास?
4: अरे यूनियन का चंदा जो जमा हुआ है, उसी से खरीदे होंगे और क्या।
3: अच्छा अच्छा, सही कहते हो भैया।
4: चल हम भी चलते हैं, नहीं तो यशवंत हमें गद्दार समझेगा।
3: हाँ ठीक है ठीक है, चल चल
4: चल
3: चल।

0: मेरे मजदूर भाइयों, हमारी हड़ताल को 3 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कंपनी के अधिकारियों ने हमसे बातचीत करने की कोशिश नहीं की।
1: हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद।
0: शांत भाइयों शांत, आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। आज हमारा जुलूस कंपनी के दफ्तर तक जाएगा ताकि हम अपनी आवाज इन गूंगे बहरे अधिकारियों तक पहुंचा सके। पता चला है कि बलबीर स्वामी के साथ लोकल लीडर जी भी वहीं पहुंच रहे हैं।
2: यशवंत भैया
1: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
2: यशवंत भैया
1: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
2: यशवंत भैया संघर्ष करो,
1: हम तुम्हारे साथ हैं।
2: यशवंत भैया संघर्ष करो,
1: हम तुम्हारे साथ हैं।
0: नहीं भाइयों, मेरी जय जयकार करने की जरूरत नहीं है। बोलो मजदूरों की जय हो, मजदूरों की एकता की जय हो।
2: मजदूर यूनियन
1: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
2: मजदूर यूनियन
1: जिंदाबाद, जिंदाबाद।
0: भाइयों, अब हमारा जुलूस और आगे बढ़ेगा और कंपनी के दफ्तर की ओर जाएगा। आप लोग मेरे पीछे जोर शोर से नारे लगाएंगे, बोलो लड़ेंगे,
1: जीतेंगे,
3: जीतेंगे,
1: जीतेंगे,
3: लड़ेंगे,
1: जीतेंगे,
3: जीतेंगे।
0: अभी तो ये अंगड़ाई है,
1: आगे बड़ी लड़ाई है।
0: जो हमसे टकराएगा
1: चूर चूर हो जाएगा।
0: कंपनी होश में आओ,
1: होश में आओ, होश में आओ,
2: होश में आओ,
1: होश में आओ,
3: होश में आओ, होश में आओ।
4: शाबाश यशवंत, शाबाश। जानते हो शास्त्री जी तुमसे बहुत खुश हैं।
5: अरे
4: तुमने जिस तरह से हड़ताल का नेतृत्व किया है, उस हिसाब से यूनियन के अध्यक्ष पद की कुर्सी तुमसे बहुत अधिक दिनों तक दूर नहीं रह सकती। शास्त्री जी का भी यही मानना है।
5: मुझे अध्यक्ष पद का कोई लालच नहीं है बलबीर स्वामी। हाँ, मैं तो बस उस दिन के इंतजार में हूँ जब कंपनी अपने घुटने टेक देगी और सभी दिहाड़ी मजदूरों को परमानेंट कर दिया जाएगा। तब किसी मजदूर की छटनी नहीं होगी और सब सब खुशहाल होंगे।
4: तू चिंता मत कर यशवंत, बस बस मजदूरों का जोश ठंडा मत पड़ने दे। और भगवान ने चाहा तो कामयाबी जल्दी ही हमारे कदम चूमेगी। जीत हमारी ही होगी यशवंत, जीत हमारी ही होगी। और एक दिन देखना, एक दिन कंपनी को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा।
5: भूखे पेट हड़ताल लंबे समय तक नहीं चल सकती बलबीर। इससे पहले कि मजदूर विवश होकर काम पर लौटना शुरू कर दें, उससे पहले ही फैसला हो जाना चाहिए।
4: तुम इसकी परवाह मत करो यशवंत, शास्त्री जी हाथ पैर मार रहे हैं और जल्द ही उसका परिणाम हम सबके सामने होगा। बस बस तुम मजदूरों को संभालो।
5: उसकी चिंता तुम मत करो, साइट के सारे मजदूर हमारे साथ हैं।
4: हाँ यशवंत, एक बात और।
5: क्या?
4: यूनियन का चंदा खत्म हो रहा है।

0: हाँ,
1: और तुम तो जानते ही हो कि बिना धन के आंदोलन नहीं चल सकता। तुम एक काम करो, तुम मजदूरों से चंदा लेकर यूनियन में जमा करवाओ।
0: लेकिन बलबीर, पिछले हफ्ते ही तो मजदूरों ने चंदा दिया था, 10 रुपए हर मजदूर के हिसाब से 4,000 मजदूरों से कुल

0: तुम्हारी उस जुबान का, तुम्हारे उस वायदे का क्या हुआ?
1: देखो, मुख्यालय को लिखा जा चुका है और वहां से पैसा आने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन तब तक हाथ पैर धरे तो बैठा नहीं जा सकता।
0: हाँ, बात तो तुम ठीक कह रहे हो बलबीर स्वामी।
1: देखो, तुम 10 रुपए हर मजदूर से चंदा इकट्ठा करो और यूनियन के कोष में जमा करवाओ, समझे?
0: हाँ, समझ गया बलबीर।
2: आराम से।
3: अरे नारायणी, ये तू मुझे कहाँ ले आई?
2: नहा लो ना।
3: नहा लो? क्यों? देखो नारायणी, साईं का पानी बहुत ठंडा है, ठंडे पानी से तो मैं अकड़ कर मर जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा।
2: मत करो, जल्दी से नहा लो। जब तक नहाओगे नहीं, मैं बात नहीं करूंगी। हाँ,
3: अरे कमाल है, ये भला कैसी जिद है नारायणी। देख नारायणी, मुझ पर रहम कर, इस ठंडे पानी से मुझे बहुत थक लग रहा है। हाँ नारायण, मैं नहीं, मैं नहीं
2: नहाऊंगा। नहाने से डरते हो?
3: नहीं,
2: चलो चलो जल्दी से नहा लो। अरे नहा लो ना, कुछ नहीं होगा, चलो जल्दी करो।
3: ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। शिव बेटा, चढ़ जा सूली पर और उतर जा पानी में, भगवान भले करेंगे। उतर जा। अरे हो, अरे बड़ा ठंडा पानी, अरे अरे बहुत ठंडा पानी, बचा, अरे बचा, अरे अरे अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ मुझे, अरे साईं की धारा मुझे बाहर ले जा रही है।
0: ये तो ठंड के मारे अकड़ गया है नारायणी। बीमार आदमी को ठंडे पानी में क्यों नहलाया?
2: वो यशवंत बाबू, 1 महीने से ये नहाए नहीं थे, मारे बदबू के मैं सो नहीं पाती थी, नहलाती नहीं तो और क्या करती।
4: अरे भैया बाबू, ये नारायणी की देह को क्या हो गया है?
5: बेचारी पहले कितनी सुंदर थी, मगर अब उसके हाथ पैर तो देखो, ऐसा लगता है जैसे पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता लटका हो।
4: भैया बामू, गरीब न होती तो किसी खूबसूरत रानी से कम न लगती।
5: अबे चुप, अब क्यों लार टपका रहा है तू?
4: और तू क्यों उसे बार बार देख रहा है? अब देखता नहीं, यशवंत उसके पति की सेवा कर रहा है, देख ले।
0: तुम लोगों के पास और कोई काम नहीं है? चलो भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से।
4: सकले भैया बाबू,
0: बेवकूफ कहीं के। नारायणी, इसे मैं कंधे पर उठा लेता हूँ, घर तक छोड़ दूंगा।
2: ठीक है।

0: पहुंच गए नारायणी।
1: यशवंत बाबू, हाँ? मैं चारपाई बिछाती हूँ।
0: ठीक है।
1: मैं आपका किस मुंह से धन्यवाद करूं? आप मेरे पति को उठाकर घर लाए हैं। आपका ये एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी यशवंत बाबू?
0: नहीं नारायणी, नहीं, ये एहसान नहीं है। अरे ये तो मेरा फर्ज था। अब तू एक काम कर, तेल ले आ, तो मैं इसके हाथ पैर की मालिश कर दूं, थोड़ी जान आ जाएगी इसमें।
1: यशवंत बाबू, इतनी सेवा तो मैं भी इनकी नहीं कर पाती। मैं आपका ये ऋण जिंदगी भर नहीं उतार।

0: अरे शिवू भैया,
1: लिचू भैया,
0: जब से हड़ताल शुरू हुई है जीभ शराब का स्वाद चखने के लिए तरस गई है।
1: अरे हाँ लिचू भैया। अरे भैया, हड़ताल से पहले काम करते थे तो 4 पैसे हाथ में होते थे। अरे मगर अब तो बदहाल हो गए।
0: शिवू भाई, मेरा तो अब भी यही मानना है, इस हड़ताल वड़ताल से कुछ होने वाला नहीं है। अरे हड़ताल ऐसे ही चलती रही तो वो दिन दूर नहीं जब इंसान एक दूसरे का मांस नोच नोच कर खाएंगे। हाँ
1: हाँ लिचू भैया, सच कहता है तू, बिल्कुल सच कहता है।

0: लो, अब तो गिद्धों और चीरों ने भी मंडराना शुरू कर दिया है। हाँ, शायद इन्हें भी आभास हो गया है शिवू के थोड़े दिनों बाद यहाँ पर इंसानी लाशों के ढेर लगने शुरू हो जाएंगे।
1: अरे तभी तो भोजन की तलाश में ये यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं।
0: शिवू, कैसा दृश्य होगा, भूख से मरने वाले इंसानों का मांस नोच नोच कर परिंदे अपना पेट भरेंगे।
1: अरे ना, ना रे लीजु ना, मत बोल ऐसा, अरे मत बोल। भगवान ना करे ऐसा हो। अरे लीजु, क्या पता उन लाशों में मेरी और तेरी लाश भी हो।
0: अच्छा ही तो है शिवू, कम से कम मरकर परिंदों का पेट तो भर सकेंगे। अरे अब जिंदा भी हैं तो किसी जानवर से बदतर जीवन जी रहे हैं शिवू, बदतर जीवन।
1: हाँ लीजू, हाँ मैं जानता हूँ, हम सभी जानते हैं। और देखा नहीं तूने, अरे साहब लोगों के कुत्तों को भी दूध भात खाने को मिलता है, और एक हम है रे, अरे हमें तो सड़ा भात भी नसीब नहीं होता।
0: अरे क्या, अरे शिवू,
1: सच कहता हूँ मैं। अरे नारायण, अरे तू भाग कर क्यों आ रही है, अरे बोल ना क्या बात है।
2: मेरे पास ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है, ये लो 5 रुपए, लीचू के सजा कर दूध ले आओ, मुन्ना उठे तो उसे पिला देना, मैं चलती हूँ।
1: अरे पर सुन तो सही, तू जा कर रही है।
2: देखो बड़ी मुश्किल से आज के दिन साहब के घर में काम मिला है, मुझे साहब के घर वापस जाना है, 2 बाल्टी कपड़े निकाल रखे है, उन्होंने ये रुपए दिए है। देखो तुम जल्दी से जाकर दूध ले आओ, बच्चे के पेट में कुछ तो जाए, मैं वापस जा रही हूँ, बच्चे का ध्यान रखना, दूध जरूर पिला देना उसे।
1: हाँ हाँ तू जा, मैं देख लूंगा।
0: शिवू, शिवू चल उठ, मेरा सहारा ले ले। अरे बच्चे को दूध देकर हम खलासी के लंगर तक जा सकते हैं।
1: अरे खलासी लंगर, अरे अरे क्या मजे की बात कही है तूने। अरे बात सुन, देख 1 रुपए का तो दूध आ जाएगा, बाकी बचे 4 रुपए।
0: अरे 4 रुपए में तो शिवू हम दोनों छक जाएंगे।
1: हाँ वाह वाह। अरे अच्छा एक बात तो बता लीजू, क्या वो आजकल भी खलासी लंगर में साइकिल की ट्यूब में भरकर बरेली के बाजार से शराब आती है?
0: अरे आती क्यों नहीं है मेरे भाई, आती क्यों नहीं है, उन्हें भूखे थोड़े ही मरना है जो अपना धंधा बंद करेंगे।
1: ठीक कहता है तो। अच्छा सुन, सुना है कि वो लोग साई नदी के मेंढक और केंचुए भी चढ़ाते हैं।
0: अरे बिल्कुल ठीक सुना है शिवू, बिल्कुल ठीक, शराब का धंधा करने वाले भी क्या क्या तमाशा करते हैं। साहब लोगों के घरों से विलायती शराब की बोतलें इकट्ठी करते हैं, फिर उसमें मेंढक और केंचुए चढ़ाते हैं, और बाद में उसमें देशी शराब का घोल डाल देते
1: हैं, और हम लोग उसे चटकारे ले लेकर पीते हैं। अरे वाह लीचू भैया, मजा भी तो खूब देती है वो।
0: अच्छा जल्दी चल, जल्दी चल, बच्चा उठ गया तो शामत आ जाएगी।
1: अरे हाँ,
0: अरे सब खेत बिगड़ जाएगा।
1: हाँ,
0: हम दोनों को साथ देखकर वैसे भी लोगों के पेट में दर्द तो होने लगता है।
1: हाँ, ये बात तो ठीक है। चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल चल

0: अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से के अंतर्गत जंग लगी तलवार की सातवीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से दो दिवसीय उत्तराखंड प्रवास के दौरान 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। श्रीमती मुर्मू कल देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी IMA में मुख्य अतिथि के रूप में पासिंग आउट परेड में शामिल होंगी। गृहमंत्री अमित शाह नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से 14 जून को सुबह 6:15 पर आयोजित होने वाले विशेष ऑनलाइन योग सत्र में शामिल होने की अपील की है। इसमें कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता है। टोल फ्री नंबर 1800-315-7008 पर मिस्ड कॉल देकर पंजीयन किया जा सकता है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा का परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित किया जाएगा। परीक्षार्थी मंडल के आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर रोल नंबर और आवेदन संख्या दर्ज कर अपना स्कोर कार्ड देख सकेंगे। सिडनी में ऑस्ट्रेलिया ओपन टूर्नामेंट में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिंधु का सेमीफाइनल में जापान की अकाने यामागुची से मुकाबला होगा। और 10वें ICC महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत आज बर्मिंघम में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबले से हो रही है। इंग्लैंड वेल्स में आयोजित इस टूर्नामेंट में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। भारतीय महिला टीम का मुकाबला रविवार को पाकिस्तान के साथ होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम।

जीवन की सुगंध का आनंद तो वही ले सकता है जो खिलने और बिखरने वाले पलों के बीच महकने की काबिलियत रखता है। तो चलिए अलसाई सी इस दोपहर के खूबसूरत से पलों में हम लेकर एक बार फिर हाजिर हैं आपका अपना कार्यक्रम महिला सभा। तो स्वीकार कीजिए हिमलता खरे का प्यार भरा नमस्कार। वक्त से पहले ही वो हमसे रूठ गई, वक्त से पहले ही वो हमसे रूठ गई, बचपन की मासूमियत न जाने कहाँ छूट गई। बहनों, हर बच्चा मुस्कुराना चाहता है, पढ़ना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है, मगर कई बार गरीबी, अशिक्षा, जागरूकता की कमी, कोई मजबूरी या विपरीत परिस्थितियों के कारण बच्चों को मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। उनसे उनकी मासूमियत मानो रूठ सी जाती है, जिससे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित होता है। यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा वर्ष 2002 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य बाल मजदूरी को पूरी तरह से बंद करने के लिए दुनिया भर में बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, बच्चों को स्वास्थ्य, शिक्षा और अधिकारों से वंचित होने से बचाना है। इस दिन का उद्देश्य समाज को यह समझाना है कि बच्चों से मजदूरी कराना गैर कानूनी है, अमानवीय है। बचपन में बच्चों को पढ़ने, लिखने और खेलने का अधिकार मिलना चाहिए, न कि उन्हें आर्थिक तंगी के कारण जोखिम भरे काम करना चाहिए। हर बाल श्रम से जुड़ा बच्चा यही महसूस करता है कि बहुत खूबसूरत था ये महसूस ही न हुआ, बहुत खूबसूरत था ये महसूस ही न हुआ, कब, कहाँ और कैसे छूट गया बचपन। यह दिन बाल श्रम से जुड़ी समस्याओं जैसे गरीबी और अशिक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। बाल श्रम का अर्थ ऐसे शारीरिक अमानवीय कार्यों से है जो बच्चों के बचपन, उनकी क्षमता और गरिमा को छीनते हैं। यह उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। बहनों, बाल श्रम को जड़ से खत्म करने के लिए अनेक कानून बनाए गए हैं, मगर इसे जड़ से खत्म करने के लिए हमें भी अपने कर्तव्य निभाने होंगे। बाल मजदूरी न करवाएं और न ही इनका समर्थन करें। बाल मजदूरी कराने वालों के प्रति शिकायत दर्ज कराएं। गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करें। लोगों को भी बाल श्रम के खिलाफ जागरूक करें। बच्चों को उनकी उमंग और मस्तियों में उड़ने देना चाहिए, ताकि वे विकास करें, आगे बढ़ें और समाज के विकास में सहयोग देकर लोगों के लिए पथ प्रदर्शक बने। उड़ने दो परिंदों को अभिशोक हवाओं में, उड़ने दो परिंदों को अभिशोक हवाओं में, लौट कर बचपन के फिर वो जमाने नहीं आते। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, मगर बहुत खूबसूरत होता है किसी के लिए जरूरी होना।

0: अभी बहने सुन रही थी गाइड फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में। गीत लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। जिंदगी की जंग में खुद की ढाल बनो, जिंदगी की जंग में खुद की ढाल बनो, मुसीबत के आगे कभी ना मलाल करो, सीखो तुम आत्मरक्षा के हुनर यहाँ, ताकि खुद पर तुम हमेशा एतबार करो। हाँ बहनों, हमारा जीवन अनमोल है और इसीलिए इसकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। अपने मान सम्मान और अस्तित्व की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है सेल्फ डिफेंस या आत्मरक्षा। आत्मरक्षा केवल शारीरिक कौशल नहीं, बल्कि यह सुरक्षा, आत्मविश्वास और मानसिक जागरूकता का मूल मंत्र है। यह हुनर किसी भी आपातकालीन परिस्थिति या खतरे के समय स्वयं की रक्षा करने और बिना डरे जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। वास्तव में जटिल परिस्थिति में स्वयं की रक्षा का सशक्त माध्यम है सेल्फ डिफेंस। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम आत्मरक्षा के गुण सीखें और खुद को विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रखें। आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट्स जैसे प्रशिक्षण ले सकती हैं, साथ ही परिस्थिति के अनुसार आप हिम्मत से काम लेते हुए आत्मरक्षा कर सकती हैं। सेल्फ डिफेंस हमें शारीरिक मानसिक रूप से खतरे के लिए तैयार रखता है। सतर्कता, जागरूकता, सही समय पर सही निर्णय और निडरता से हम आत्मरक्षा कर सकते हैं। आत्मरक्षा सीखने से आप बिना डरे कहीं भी आ जा सकती हैं। यह आपको मानसिक और शारीरिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। तो बहनों, आत्मरक्षा का हुनर जरूर सीखिए और जीवन को सरल, सुरक्षित बनाइए और निडर होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचिए। सेल्फ डिफेंस सम्मान से जीने की आजादी देता है, वहीं आत्मरक्षा साहस और जागरूकता का प्रतीक है। यह केवल शारीरिक बचाव नहीं, बल्कि आत्मविश्वास की ढाल है। छोड़कर उम्मीदें गैरों से मदद की मुसीबत की घड़ी में आत्मरक्षा का हुनर भी जरूरी है। पलक पर अगर हो आंसू तो ये नहीं काफी, इन्हें शब्दों में पिरोने का हुनर भी आना चाहिए। हाँ बहनों, अपने हुनर से समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति अपनी वेदना, अपनी पीड़ा को शब्दों में पिरोकर रचनाओं के माध्यम से आप तक पहुँचा रही है कवयित्री बहन। तो लीजिए सुनिए ये काव्य पाठ। कवयित्री बहन है डॉक्टर आराधना सिंह बुंदेला।
1: ये मेरी एक कविता है जिसका की शीर्षक है स्तब्ध। ये कविता मैंने लिखी है जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती हमारी गर्म हो रही है, जंगल खत्म हो रहे हैं, नदियां तरताल सूख रहे हैं, तो इसमें ये बहुत ही कम शब्दों में बड़ा संदेश देने वाली कविता है। और आखिरी के चार लाइनों में आप देखेंगे कि आप क्या करिए जिससे कि आप धरती की मदद कर सकें, तो ध्यान चाहूंगी, तो सुनिएगा। तप्त स्तब्ध धरा प्रारब्ध, मानव तृप्त करे संतृप्त, जलता अलाव गई शीतल छांव, हरियाली लुप्त खुशहाली विलुप्त, तपती बयार झुलसा संसार, यूं कहां गया मां का दुलार, सूखी नदियां सूखे तरताल, यूं उठा बवाल जीवन बेहाल, कर दे उद्धार कर ले उपकार, यूं दोहन छोड़ यूं मुह न मोड़, करना विक्षिप्त अपना भविष्य, तू हाथ बढ़ा कुछ कर भला। तो ये एक कविता है जो धरती माँ को बचाने, उसका दोहन बचाने का आह्वान करती है। यह कविता मैंने लिखी है सर्कस के बारे में। जिंदगी को एक सर्कस की तरह मैंने इस कविता में बताया है, तो सुनिएगा। सर्कस, जिंदगी एक सर्कस है, सब नाच रहे हैं कमर कस, कभी कोई ऊपर कभी कोई नीचे, चाह कर भी चले न बस, कहीं बंदर कूदनी कहीं हवा में झूलनी, कहीं बंदर कूदनी कहीं हवा में झूलनी, कहीं धीमा कहीं एकदम तेज, सावधान कहीं गिरना नहीं, कहीं एक तार पे चलना कहीं मुंह से आग उगलना, कहीं एक तार पे चलना कहीं मुंह से आग उगलना, कभी टूटे कांच पे चलना, जीवन भी तो है ऐसा ही खेल, कोई हाथ बिना गाड़ी चलाए, कोई हाथ बिना गाड़ी चलाए, जैसे हर मुश्किल को ठेंगा दिखलाए, जिंदगी एक लंबा सर्कस, वो एक मदारी सबको नाच नचाए, कौन कहां पर कैसे करतब दिखलाएगा, इसका लेख जन्म से ही सब लिख कर लाए। सब मिलकर खेलेंगे खेल, सब मिलकर खेलेंगे खेल, जो गिरा वो निकले पर खेल चले, जो गिरा वो निकले पर खेल चले, जो बचा वो पूरी लगन से खेले, जो बचा वो पूरी लगन से खेले, अगले पल उसका भी निकास चले, अगले पल उसका भी निकास चले। क्योंकि जिंदगी एक सर्कस है, सब नाच रहे हैं कमर कस, कोई कभी ऊपर कभी कोई नीचे, चाह कर भी चले न बस, जिंदगी एक सर्कस। ये मेरी एक कविता है हरी चूड़ियाँ। हम अक्सर देखते हैं हमारे समाज में लड़कियाँ आज भी दहेज की आग में जलाई जा रही हैं, या किसी न किसी तरीके से सताई जा रही हैं मानसिक या शारीरिक रूप से। तो ये एक लड़की का संकल्प बताती हुई कविता है कि अगर ऐसी कंडीशन या ऐसी परिस्थिति में वो फंस जाए तो उसको कैसे आगे चलना चाहिए। तो ध्यान चाहूँगी, हरी चूड़ियाँ। हरी थी चूड़ियाँ, हरी थी धरती, हरी थी चूड़ियाँ, हरी थी धरती, गांव का उसके वो खेत भी तो था हरा, हरी खनखनाती पहने थी वो चूड़ियाँ, लेकर चली मन में ससुराल का सपना भी हरा, लेकर चली मन में ससुराल का सपना भी हरा। नववधू के कुछ दिन तो खुशियों में निकल गए, नववधू के कुछ दिन तो खुशियों में निकल गए, उन हरी चूड़ियों की खनक से गूंज गए, पर ससुराल का सावन वैसा अल्हड़ ना था, वो मायके के आंगन जैसा मदमस्त ना था, उसमें माँ बाप के प्यार की झिड़की ना थी, उसमें माँ बाप के प्यार की झिड़की ना थी, मेहंदी भी अब की बार रंग चढ़ी ना थी, पिया की फीकी बातों जैसी ही थी, पिया की फीकी बातों जैसी ही थी, सासू माँ के तानों से जैसे रंग उसका उड़ गया था। हरी थी चूड़ियाँ, हरी थी धरती, रंग उड़कर अब फिर वैसा नहीं चढ़ेगा, रंग उड़कर अब फिर वैसा नहीं चढ़ेगा, मन की गांठों के अंदर कहीं छुपा होगा शायद, मन की गांठों के अंदर कहीं छुपा होगा शायद, दहेज की आग में हरियाली खो गई, जलती देह में कई जख्म जगमगा गई, दहेज की आग में हरियाली कहीं खो गई, जलती देह में कई जख्म जगमगा गई, बोली बाबा अब ना मैं फिर हरी चूड़ियों को पहनूंगी, बोली बाबा अब ना मैं फिर हरी चूड़ियों को पहनूंगी, कमज़ोर मन और तन में अब ज्वाला भर लूंगी, कमज़ोर मन और तन में अब ज्वाला भर लूंगी, मुझे कोई अब दहेज के लिए जला न सकेगा, मुझे कोई अब दहेज के लिए जला न सकेगा, लाख कोशिश करे जमाना ये मुझे अब दबा न सकेगा, लाख कोशिश करे जमाना ये मुझे अब दबा न सकेगा। एक कविता ये मेरी है अच्छा ही हुआ, कविता का शीर्षक है अच्छा ही हुआ। कई बार हम जिंदगी में सोचते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, कुछ लोगों ने हमें सहारा नहीं दिया, या कुछ हमारे साथियों ने हमारी मदद नहीं की, या हमारे किसी सीनियर ऑफिसर ने हमारा फेवर नहीं किया, हमारी मदद नहीं की, तो हम बड़ा दुख फील करते हैं। मगर आप कभी पीछे पलट के अपनी ज़िंदगी को देखिएगा कि अगर आप मेहनत करते रहें, ईमानदारी से चलते रहें, तो आपके साथ अच्छा ही होता है। तो ध्यान चाहूँगी, अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा सहारा ना मिला, अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा सहारा ना मिला, मांगने की जुस्तजू में मैं सहारा देने वाला बन गया, मांगने की जुस्तजू में मैं सहारा देने वाला बन गया, अच्छा ही हुआ उन्होंने मुंह मोड़ लिया, अच्छा ही हुआ उन्होंने मुंह मोड़ लिया, जिनको हम चाह किए, जिनको हम चाह किए, क्योंकि कुछ और भी प्यारे रिश्ते बन गए, क्योंकि कुछ और भी प्यारे रिश्ते बन गए, अच्छा ही हुआ, अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी दोस्ती ठुकरा दी, अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी दोस्ती ठुकरा दी, अपनेपन की खोज में अब कुछ नए दोस्त बन गए, अपनेपन की खोज में अब कुछ नए दोस्त बन गए, अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा सहारा ना मिला, अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी इज्जत ना की, अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी इज्जत ना की, हम इतने समझदार हो गए कि इज्जत करने का सलीका आ गया, हम इतने समझदार हो गए कि इज्जत करने का सलीका आ गया, अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा सहारा ना मिला, अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी कीमत कम आंकी, अच्छा ही हुआ उन्होंने हमारी कीमत कम आंकी, अपने को इतना तपाया, अपने को इतना तपाया कि बाजार में बेशकीमती हीरे से हो गए, कि बाजार में बेशकीमती हीरे से हो गए। अच्छा ही हुआ जब सहारा मांगा, सहारा ना मिला, मांगने की जुस्तजू में मैं सहारा देने वाला बन गया, मांगने की जुस्तजू में मैं सहारा देने वाला बन गया।
0: अभी बहनें सुन रही थीं काव्य पाठ, कवयित्री बहन थीं आराधना सिंह बुंदेला। ख्वाहिशों के काफिले भी अजीब होते हैं, ख्वाहिशों के काफिले भी अजीब होते हैं, ये वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ते नहीं होते।

अभी बहने सुन रही थी कन्यादान फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना हसरत जयपुरी की थी और संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का। बहनों, सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए साक्षरता बहुत जरूरी है। वहीं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त होने के लिए बहुत जरूरी है वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता यानी धन को समझने और उसके प्रबंधन की बुनियादी कला। इसके माध्यम से महिलाएं अपने धन को सोच समझकर कमाना, खर्च करना, बचाना और निवेश करना सीख सकती हैं। यह कौशल हमें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाता है। वित्तीय साक्षरता हमें आत्मविश्वास और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देती है। वित्तीय साक्षरता के प्रमुख स्तंभ हैं जैसे कमाई, बजट बनाना, बचत करना और उधार प्रबंधन। बहनों, वित्तीय साक्षरता बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमें समझदार वित्तीय निर्णय लेने में मदद करती है, वित्तीय धोखाधड़ी से बचाती है, बैंकिंग सेवाओं, डिजिटल लेन देन की शर्तों को समझने से वहीं हम धोखाधड़ी से भी बच सकते हैं या सुरक्षित रह सकते हैं। महंगाई से निपटने और रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित जीवन जीने के लिए भी निवेश जरूरी है। साथ ही वित्तीय साक्षरता से हमें आर्थिक तनाव से मुक्ति मिलती है और सही बजट और बचत से हमें आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। वित्तीय साक्षरता वास्तव में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की रीढ़ है। वित्तीय ज्ञान महिलाओं को नए व्यवसाय शुरू करने और धन सृजन के अवसरों को जानने में मदद करता है। बढ़ती उम्र या किसी अनहोनी की स्थिति में यह ज्ञान एक मजबूत सुरक्षा कवच का काम करता है। जब बहनें आर्थिक रूप से जागरूक होती हैं, तो वे घर का बजट बेहतर तरीके से चलाती हैं और संकट के समय के लिए बेहतर बचत कर पाती हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से साक्षर और सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा भी कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो बहनों, वित्तीय साक्षरता से अपना जीवन खुशहाल बनाएं और सशक्त बने और निरंतर सफलता की ओर आगे बढ़ते हुए समाज के लिए प्रेरणा बने। जो पैसों का मोल समझे वही सुरक्षित अपना कल करे, वित्तीय ज्ञान की शक्ति से हर मुश्किल आसान करे, हर मुश्किल आसान करे। बहनों, आज हम आर्थिक रूप से भले ही सशक्त हों, मगर बहुत कुछ पाने की चाह में हम मानो मुस्कुराना ही भूल गए हैं। यदि आप स्वस्थ रहना चाहती हैं, जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहती हैं, तो हर पल मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। कभी चुपके से मुस्कुराकर तो देखना, कभी चुपके से मुस्कुराकर तो देखना, दिल पर लगे पहरे हटाकर तो देखना। ये जिंदगी भी आपके साथ साथ मुस्कुरा उठेगी, खुद पर कुछ लम्हे लुटाकर तो देखना। और बहनों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो बशीर बद्र साहब के इसी ख्याल के साथ कि मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो अगली मुलाकात तक के लिए अब अनुमति दीजिए हेमलता खरे को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
3: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गुमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
5: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में लीजिए, पहले सुनिए कृष्ण मोहन नायक के स्वर में योग गीत।

अभी आप सुन रहे थे जयंत विश्वकर्मा के स्वर में प्राणायाम गीत। इसी के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। प्रस्तुत है आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे सोनाली जलोटा के गाए गीत।

सोनाली जलोटा के गाए इस गीत के साथ ही आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 2 बजे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में लीजिए सुनिए फिल्म चलते चलते का गीत। बोल अमित खन्ना के हैं, संगीत है बप्पी लहरी का।

कभी कभी। इस फिल्म का गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। बोल साहिर के हैं और संगीत है खयाम का।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से मदद कर रही है, ये महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
1: आज भारत विमेन लेड डेवलपमेंट की राह पर चल पड़ा है।
2: हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए सारे रास्ते खोल दिए।
1: हमने करोड़ों महिलाओं के लिए शौचालय बनवाकर उनका सम्मान बढ़ाया। हमने उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं जैसी तकलीफों से भी बचाया।
2: 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का जो संकल्प किया था वो पूरा हो चुका है।
0: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूर संचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। इन मसौदा नियमों को मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया गया है। जनता इन पर अपने विचार, टिप्पणियां और सुझाव 27 मई तक सरकार को भेज सकती हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक कर दिया है। संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा कि सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी द्वितीय वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम आज शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर देख सकेंगे। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही बाल श्रम उन्मूलन का सबसे

पार कर रास्ता है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रहलाद जोशी ने आज खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश से कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके नामांकन पत्र रद्द किए जाने को चुनौती दी गई थी। प्रदेश में मॉनसून 17 से 18 जून के बीच राज्य के दक्षिणी जिलों में दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो अगले 10 से 15 दिनों में मॉनसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। आज मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने के आसार हैं। पन्ना जिले में नेशनल हाईवे 39 पर बीती रात एक सड़क हादसे में अजयगढ़ थाने में तैनात 26 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल की दर्दनाक मौत हो गई। शिवपुरी के कोलारस में कृषि और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा वेयरहाउस परिसर में कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से बड़ी मात्रा में उर्वरक जब्त कर FIR दर्ज की गई है। भोपाल में आधी रात पटाखा दुकान में भड़की भीषण आग पर दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। इस घटना में लाखों का माल जलकर राख हो गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, सुनिए दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। और टोरंटो में फीफा विश्व कप में ग्रुप बी के मुकाबले में कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास परिदृश्य बदल रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियां सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने राज्य के पुनर्निर्माण और इसे विकसित राज्य बनाने का संकल्प लिया है। श्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब डबल इंजन सरकार है, अब पश्चिम बंगाल को भी अन्य राज्यों की तरह केंद्र सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 2 दिन के दौरे पर देहरादून पहुंची। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन का दौरा करेंगी और 132 एकड़ क्षेत्र में बन रहे राष्ट्रपति उद्यान के निर्माण और विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून से फ्रांस और स्लोवाकिया के दौरे पर रहेंगे। 2014 के बाद से ये प्रधानमंत्री का फ्रांस का 7वां आधिकारिक दौरा है। फ्रांस के नीस शहर में प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ये भारत का प्रमुख नवाचार सम्मेलन है जो भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फ्रांस में भारत के राजदूत संजीव सिंगला ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इसका उद्देश्य भारत की डीप टेक प्रतिभाओं को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करना है।
3: काफी अरसे से जो द्विपक्षीय संबंधों में एक फोकस रहा है हमारा, किस तरह से हम इनोवेशन की तरफ ज्यादा फोकस बढ़ाएं, और दोनों देश एक तरह से नॉलेज इकोनॉमीज हैं, दोनों देश सोच रहे हैं कि किस तरह हमारे संबंध हैं इनको और प्रगाढ़ करें हम, और इसी की वजह से हम भारत इनोवेट्स यहाँ उसका आयोजन कर रहे हैं, जो कि पहली बार है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे भारत से डीप टेक स्टार्टअप्स बाहर लाके हम एक मंच पे हम रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी नीस से स्लोवाकिया जाएंगे और उसके बाद G7 समिट के लिए फ्रांस के एवियन लौटेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रतिनिधियों का स्वागत किया। श्री चौहान ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना को आगे बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का दृष्टिकोण शांति और सहयोग पर आधारित है। सम्मेलन का विषय है लघु किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से भविष्य के लिए खाद्य सुरक्षा। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अधिकारियों के साथ प्याज की खरीद को बढ़ाने और किसानों को बेहतर लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने कहा कि खरीद मूल्य को संशोधित करके 1,650 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन, रेडियो और संचार सेवाओं से संबंधित दूरसंचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। ये मसौदा पहले के टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीविजन और रेडियो सेवाओं के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों को नए दूरसंचार अधिनियम 2023 के दायरे में शामिल करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। नए प्रावधान में सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा निजी प्रसारकों के बीच होने वाले ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। इससे ये पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। ओडिशा में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने आज 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री का पद जनता की सेवा करने का एक पवित्र अवसर है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 2 वर्षों में 121 योजनाएं लागू की गई हैं। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। ये सम्मेलन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित किया जा रहा है। राज्य मंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी के लिए सम्मानजनक काम, सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने मध्य एशिया और शंघाई सहयोग संगठन के साथ भारत की दीर्घकालिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। ताजिकिस्तान के दुशांबे में आयोजित SCO सम्मेलन का विषय है मध्य एशिया, SCO का केंद्र, शांति और संयुक्त विकास का क्षेत्र। खाड़ी क्षेत्र में बदलती समुद्री सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि सरकार खाड़ी क्षेत्र में बदलती स्थिति पर बारीकी से नजर रखे है और प्रत्येक भारतीय नाविक की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ के महासचिव आर्सेनियो डोमिंग्वेज ने ओमान के तट पर पलाऊ के ध्वज वाले टैंकर पर हुए हमले की निंदा की है। इसमें 3 भारतीय नाविक मारे गए थे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि अंतोनियो गुतरश लगातार बढ़ते तनाव को लेकर बहुत चिंतित हैं। वहीं आईएमओ के महासचिव ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन को एक निवेश प्लेटफॉर्म का प्रचार करते हुए दिखाया गया है। वीडियो में 22,000 रुपये के निवेश पर प्रतिदिन 80,000 रुपये और प्रतिमाह 24,00,000 रुपये तक के रिटर्न का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जाँच इकाई ने बताया कि ये वीडियो पूरी तरह फर्जी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: संशोधित परीक्षा अवधि में अनिवार्य परीक्षा औपचारिकताओं के लिए आवश्यक समय शामिल है। एजेंसी ने कहा है कि ये सुधार पिछले कई वर्षों में उम्मीदवारों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर किए गए हैं। इसके अलावा एजेंसी ने प्रश्न पत्र पुस्तिका के साथ दिए जाने वाली रफ शीट को 2 पृष्ठ से बढ़ाकर 4 कर दिया है। पुराने लेआउट के असुविधाजनक होने की प्रतिक्रिया के बाद कुछ छात्रों, विशेषकर बाएं हाथ से लिखने वाले छात्रों के लिए ये सुधार किया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा डिजाइन में छोटे छोटे सुधार भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और उम्मीदवार अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय लागू किए गए हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़े और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों के साथ सहयोग करें। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दिग्गज निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का कल रात निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। जसपाल राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि जसपाल राणा ने एक चैंपियन एथलीट और असाधारण मार्गदर्शक के रूप में राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया वो प्रेरणादायक है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जया भारती।
5: फीफा वर्ल्ड कप में दक्षिण कोरिया ने चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया है। मैक्सिको के जापोपान में खेले गए रोमांचक ग्रुप ए मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। दक्षिण कोरिया का अगला मुकाबला सह मेजबान मैक्सिको से होगा, जबकि चेक गणराज्य ग्रुप ए के दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा। इससे पहले मैक्सिको सिटी में खेले गए उद्घाटन मैच में मैक्सिको ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराया था। आज ग्रुप बी के मैच में सह मेजबान कनाडा का सामना बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। दोनों देश विश्व कप में पहली बार आमने सामने होंगे। इसके बाद ग्रुप चरण के मुकाबले में कनाडा का सामना कतर और स्विट्जरलैंड से होगा। 1 महीने तक चलने वाले फीफा विश्व कप 2026 का भव्य उद्घाटन कल रात मैक्सिको सिटी में हुआ। रंगारंग उद्घाटन समारोह में शकीरा और बर्ना बॉय ने टूर्नामेंट के आधिकारिक गीत दाई दाई से समा बांधा। उधर पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। तीसरी वरीयता प्राप्त सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। सिंधु का अगला मुकाबला सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची से होगा। यामागुची ने क्वार्टर फाइनल में आज भारत की तन्वी शर्मा को 21-14, 21-14 से शिकस्त दी।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में महिलाओं को राष्ट्र निर्माण में उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से उद्योगों के ईंधन खरीदने पर रोक लगाई। संयुक्त राष्ट्र ने ओमान तट के पास भारतीय नाविकों को ले जा रहे तेल टैंकरों पर हुए हमलों की निंदा की। दिग्गज निशानेबाज और प्रशिक्षक जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और अभी आप सुन रहे थे समाचारों की श्रृंखला। 2:30 हो चुके हैं और ये वक्त है हमारे किसान भाइयों के लिए कार्यक्रम का, तो आइए आरंभ करते हैं इस कार्यक्रम को।

0: सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सुषमा आपके साथ और कार्यक्रम में सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और मेरे साथ साथ मेरे साथी भी हैं, उनका भी परिचय।
1: मैं विनोद कुमार और हर बार की तरह हम कोई ना कोई नई चीजें अपने किसान साथियों के लिए लेके आते हैं और आज उसी पे बात करेंगे।
0: बिल्कुल विनोद, उसी पर बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हैं हमारे किसानों के लिए, चाहे वो नई नई जानकारी हो, खेती की बात हो, नई नई मशीनों की बात हो या फिर खाद की भी बात हो।
1: बिल्कुल।
0: और खाद, आजकल असली खाद पर भी हम चर्चा कर सकते हैं क्योंकि नकली खाद बाजार में बहुत आ रही है, तो इस बात का ध्यान रखें किसान भाई बहन।
1: बिल्कुल, उसमें हमें ध्यान ये देना है। और दूसरा एक चीज और भी है, उसमें हम समझ
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश का पहला गीत हमने लिया है फिल्म सनम तेरी कसम से, आवाज़ आशा भोसले की है। गीत लिखा है गुलशन बावरा ने और इसे संगीत से सजाया है आरडी बर्मन ने। और पसंद है आप सभी श्रोताओं की छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा की। इसी गीत को सुनना चाहा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरव शर्मा। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म सनम तेरी कसम का ये गीत।

ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम और कुसुम नेताम, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, महाराष्ट्र बीड़ शहर से प्रकाश पागरिया, पराग पागरिया, प्रदीप और केशव पटेल। आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म त्रिशूल का गीत। आवाज़ें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और यशुदास की हैं, बोल साहिर के हैं और संगीत है खयाम का। लीजिए सुनिए।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश ठाकुर। आप सभी ने सुनना चाहा है साहिर का लिखा, खयाम का संगीत से सजाया हुआ गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है चंबल की कसम। लीजिए सुनिए।

आप तो ऐसे ना थे। इस फिल्म का गीत सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बोल निदा फाजली के हैं और संगीत है उषा खन्ना का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। भाटापारा से ही दान सिंह रावत दानू, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत। धुर्रा बांधा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नेत्राम साहू और भूपेंद्र साहू की। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म आप तो ऐसे ना थे का ये गीत।

कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए फिल्म धनवान का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। गीत लिखा है साहिर ने और इसे संगीतबद्ध किया है हृदयनाथ मंगेशकर ने। पसंद आप सभी श्रोताओं की है। उपाध्याय नगर देवास से मुरारीलाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा। राजा रामनगर देवास से ही राजू अग्रवाल, मधु महाजन, राकेश अग्रवाल। सुपरमार्केट देवास से प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज सनी। जेल रोड देवास से नवीन वर्मा, बबलू वर्मा और कालू भैया। गंगेड़ी जिला उज्जैन से गोपाल, गोविंद, सालग्राम और दशरथ। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म धनवान का ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, हेल्थ केयर, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और गवर्नेंस तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस

मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम आज शाम 4 बजे जारी किया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक कर दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन रेडियो संचार सेवाओं से संबंधित दूर संचार नियम 2026 का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। और मौसम विभाग ने आज भोपाल सहित प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में तेज आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के छतरपुर केंद्र की प्रस्तुति होगा। शाम 6:00 सुनिएगा NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:21 पर।

रात 8 बजे सुनिएगा समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष जन विश्वास इज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम खेल जगत में रात 9:30 पर आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप इस विषय पर प्राची तिवारी की वार्ता और शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी आप सुन सकेंगे रात 10:30 पर आज इसके अंतर्गत सुनिएगा रानू मजूमदार का राग सरस्वती में बांसुरी वादन ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की

मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दिन के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। अपनी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में विविध कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे मीडियम वेव पर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक प्रसारण डीटीएच पर

नमस्कार। मीडियम वेव 188.3 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही साथ न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी संध्याकालीन सभा मीडियम वेव पर आरंभ होती है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए इस घंटे की खास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों रविवार को फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य भारत की कुछ बेहतरीन डीपटेक प्रतिभाओं को भारत के बाहर प्रदर्शित करना है। वैश्विक पवन दिवस सम्मेलन सोमवार को गोवा में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का विषय है पवन ऊर्जा आकांक्षा से वृद्धि तक। ये आयोजन सतत विकास और स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं की रूपरेखा को आकार देने में मील के पत्थर के रूप में काम करेगा। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मेक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर प्रदेशवासियों से बाल श्रम से मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। और 10वें आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत आज बर्मिंघम में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबले से हो रही है। भारतीय टीम का मुकाबला रविवार को पाकिस्तान के साथ होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। आज का कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति है।

0: साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के खास युववाणी कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना मित्र अनुपम खरे, लेकर आया हूं आज का युववाणी कार्यक्रम। साथियों आज के कार्यक्रम में हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं, साथ ही होगी वार्ता और होंगे मनोरंजन के लिए गीत भी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारी इस चर्चा के साथ, जिसका विषय है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जो कि हर साल हम 12 जून को पूरे विश्व में मनाते हैं। इस दिवस का उद्देश्य बालकों के अधिकारों की रक्षा करना है और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के अवसर प्रदान करना है। बाल श्रम गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और जागरूकता की कमी से उत्पन्न होता है। इस दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO द्वारा वर्ष 2002 में की गई थी। ILO ने सन 1999 में वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन नंबर 182 को अपनाया था। आखिर बाल श्रम का अर्थ क्या है, जिसे करने के लिए बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, जो उसकी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक स्थिति को नुकसान पहुंचाता है, जो उसकी आयु के अनुपात के अत्यधिक कठिन, खतरनाक या शोषणकारी होता है। 5 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चे जब ऐसे कार्यों में संलग्न होते हैं जो उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य या विकास को बाधित करते हैं, तो वह बाल श्रम कहलाता है। बाल श्रम उन्मूलन के लिए कुछ सुझाव भी हैं, जैसे शिक्षा को प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, गरीबी उन्मूलन, गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता, जागरूकता अभियान, लोगों को बाल श्रम के दुष्परिणामों से अवगत कराना, कानूनों का सख्त प्रवर्तन, बाल श्रम में संलग्न नियोक्ताओं पर कठोर कार्रवाई, स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी यानी NGO और नागरिक समाज का सहयोग भी जरूरी है। साथियों ये तो थी एक छोटी सी जानकारी विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर। साथियों कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं वार्ता की ओर, जिसमें वार्ता का विषय है पत्रकारिता में युवाओं की सहभागिता, जिसमें वार्ताकार हैं अरविंद प्रजापति। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: नमस्कार।

श्रोताओं, आज हम बात करेंगे पत्रकारिता क्षेत्र में रोजगार और विभिन्न कोर्स। आकाश की तरंगों पर आप सुन रहे हैं एक विशेष प्रस्तुति। आज की हमारी वार्ता का विषय है पत्रकारिता क्षेत्र में रोजगार और विभिन्न कोर्स। बदलते समय में पत्रकारिता केवल समाचार पढ़ने या अखबार छापने तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह समाज की चेतना, लोकतंत्र की आवाज़ और डिजिटल युग का सबसे प्रभावशाली माध्यम बन चुकी है। आइए इसी रोचक संसार की यात्रा पर चलते हैं। मानव सभ्यता के विकास के साथ संवाद की आवश्यकता भी बढ़ती गई। पहले संदेश कबूतरों से भेजे जाते थे, फिर चिट्ठियां आईं, उसके बाद रेडियो, अखबार, टेलीविज़न और अब डिजिटल मीडिया ने पूरी दुनिया को एक छोटे से मोबाइल स्क्रीन में समेट दिया है। पत्रकारिता समाज का दर्पण कही जाती है। यह केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करती, बल्कि जनता को जागरूक करने, शासन और समाज के बीच सेतु बनाने तथा लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य भी करती है। आज पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक हो चुका है। इसमें रोजगार के असीम अवसर मौजूद हैं। यदि किसी व्यक्ति में लेखन क्षमता, बोलने का आत्मविश्वास, जिज्ञासा, रचनात्मकता, समाज के प्रति संवेदनशीलता है, तो पत्रकारिता उसके लिए सुनहरे भविष्य का द्वार खोल सकती है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाचारों, विचारों, सूचनाओं और घटनाओं को विभिन्न माध्यमों से जनता तक पहुंचाया जाता है। पत्रकारिता के मुख्य उद्देश्य हैं सूचना देना, जैसे शिक्षित करना, मनोरंजन करना, जनमत तैयार करना, समाज में जागरूकता फैलाना। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी जाती है। जैसे भवन की मजबूती स्तंभों पर निर्भर करती है, वैसे ही लोकतंत्र की मजबूती स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता पर निर्भर करती है। पत्रकारिता का इतिहास। भारत में पत्रकारिता का आरंभ अंग्रेजी शासन काल में हुआ। भारत का पहला समाचार पत्र हिक्की गजट माना जाता है, जिसे 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने प्रकाशित किया था। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत उदंत मार्तंड से हुई, जिसका प्रकाशन 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर ने किया। स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया और हरिजन जैसे पत्रों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। आज पत्रकारिता प्रिंट से निकलकर डिजिटल और सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार हैं प्रिंट पत्रकारिता, इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, मैगजीन शामिल हैं। यह पत्रकारिता का सबसे पुराना रूप है। उदाहरण, दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिकाएं, रोजगार के अवसर, रिपोर्टर, सब एडिटर, फीचर राइटर, कॉपी एडिटर, प्रूफ रीडर। इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता, इसमें रेडियो और टेलीविज़न शामिल हैं। रेडियो की आवाज़ कल्पना के पंख देती है, जबकि टीवी दृश्य और दोनों संगम प्रस्तुत करता है। रोजगार के अवसर, न्यूज़ एंकर, रेडियो जॉकी, टीवी रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरा पर्सन। डिजिटल पत्रकारिता, आज मोबाइल ही मिनी न्यूज रूम बन चुका है। वेबसाइट, ब्लॉग, यूट्यूब, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिजिटल पत्रकारिता का हिस्सा है। रोजगार के अवसर, कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया मैनेजर, डिजिटल एडिटर, यूट्यूबर, पॉडकास्ट होस्ट, फोटो पत्रकारिता। एक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर होती है। फोटो पत्रकार समाज की घटनाओं को कैमरे में कैद करता है। रोजगार, फोटो जर्नलिस्ट, डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर, न्यूज फोटोग्राफर, खेल पत्रकारिता। खेल प्रेमियों के लिए यह आकर्षक क्षेत्र है। कार, मैच रिपोर्टिंग, खिलाड़ी इंटरव्यू, खेल विश्लेषण। फिल्म और मनोरंजन पत्रकारिता, फिल्मी संगीत, टीवी सेलिब्रिटी जगत से जुड़ी खबरों का प्रसारण। रोजगार, फिल्म समीक्षक, एंटरटेनमेंट रिपोर्टर, एंकर। खोजी पत्रकारिता, यह पत्रकारिता का साहसी रूप है। इसमें छिपे हुए सच को सामने लाया जाता है। कृषि पत्रकारिता, भारत कृषि प्रधान देश है। किसानों तक नई तकनीकी और योजनाओं की जानकारी पहुंचाना कृषि पत्रकारिता का उद्देश्य है। पत्रकारिता में आवश्यक गुण हैं। पत्रकारिता केवल डिग्री से नहीं,
व्यक्तित्व से भी चलती है। यह अच्छे पत्रकार में निम्नलिखित

0: होने चाहिए, जैसे कि जिज्ञासा, निष्पक्षता, साहस, लेखन कौशल, भाषा पर पकड़, समय प्रबंधन, तकनीक ज्ञान, संचार कौशल। पत्रकार की कलम तलवार से अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। आज पत्रकारिता में रोजगार की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। समाचार पत्र संस्थान, देश में अनेक बड़े समाचार पत्र हैं जहां पत्रकारों की आवश्यकता रहती है। उदाहरण, दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान। समाचार चैनल, टीवी चैनलों में एंकर, रिपोर्टर, प्रोड्यूसर की मांग रहती है। उदाहरण, आज तक, एबीपी न्यूज़, जी न्यूज़, रेडियो क्षेत्र। रेडियो आज भी ग्रामीण भारत की धड़कन है। विशेष रूप में आकाशवाणी ने सूचना और जन जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रोजगार उद्घोषक, रेडियो प्रस्तोता, स्क्रिप्ट राइटर, कार्यक्रम अधिकारी। डिजिटल मीडिया कंपनियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तेजी से नौकरियां बढ़ रही हैं। ब्लॉग लेखन, वीडियो कंटेंट निर्माण, सोशल मीडिया हैंडलिंग। सरकारी क्षेत्र, सरकारी विभागों में जनसंपर्क अधिकारी और मीडिया अधिकारी की नियुक्ति होती है। प्रमुख संस्थाएं, प्रेस सूचना ब्यूरो, जनसंपर्क विभाग, दूरदर्शन, आकाशवाणी। स्वतंत्र पत्रकारिता, आज फ्रीलांस पत्रकारिता भी लोकप्रिय हो रही है। लोग घर बैठे ब्लॉग, यूट्यूब चैनल और पॉडकास्ट के माध्यम से आय अर्जित कर रहे हैं। पत्रकारिता में आय अनुभव, संस्था, कौशल पर निर्भर करती है। शुरुआती स्तर पर इनकम 15,000 से 30,000 रुपये प्रति माह, मध्यम स्तर 40,000 से 80,000 रुपये प्रति माह, वरिष्ठ स्तर पर लाखों रुपये प्रति माह तक लोग अर्निंग करते हैं। लोकप्रिय एंकर और डिजिटल क्रिएटर इसमें भी अधिक कमाई करते हैं। पत्रकारिता से संबंधित प्रमुख कोर्स हैं। अब बात करते हैं उन कोर्स की जो इस क्षेत्र में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स, अवधि 3 महीने से 1 वर्ष, विषय बेसिक पत्रकारिता, रेडियो प्रस्तुति, न्यूज राइटिंग। यह शुरुआती विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होते हैं। डिप्लोमा कोर्स, अवधि 1 वर्ष, प्रमुख कोर्स डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, स्नातक पाठ्यक्रम बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अवधि 3 वर्ष की रहती है इसकी। विषय रिपोर्टिंग, एडिटिंग, मीडिया कानून, विज्ञापन, जनसंपर्क। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एमए इन मास कम्युनिकेशन, अवधि 2 वर्ष की रहती है। इसमें पत्रकारिता के उन्नत पहलुओं का अध्ययन कराया जाता है। पीएचडी, जो विद्यार्थी शोध और अध्यापन में रुचि रखते हैं वे पीएचडी भी कर सकते हैं। पत्रकारिता के प्रमुख संस्थान हैं। भारत में कई प्रतिष्ठित संस्थान पत्रकारिता की शिक्षा प्रदान करते हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम है। यह वह दीपक है जो अंधकार से सत्य की रोशनी फैलाता है। आज के युवाओं के लिए पत्रकारिता रोजगार, सम्मान, रचनात्मक अभिव्यक्ति का उत्कृष्ट क्षेत्र बन चुकी है। आवश्यकता है मेहनत, ईमानदारी और निरंतर सीखने की। इसी संदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार श्रोताओं।
1: साथियों, अभी हम सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था पत्रकारिता में युवाओं की सहभागिता, जिसमें वार्ताकार थे अरविंद प्रजापति। साथियों, जैसा हमें विदित है कि आजकल के बच्चे मोबाइल की लत के कारण बहुत सी समस्याओं में फंस रहे हैं। इसी से जुड़ी आज की हमारी दूसरी चर्चा है मोबाइल की लत विषय पर। मोबाइल की लत के कारण लोग अपना कीमती समय सोशल मीडिया, गेम और रील्स देखने में बर्बाद करते हैं। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों में कमजोरी, सिर दर्द और गर्दन में दर्द जैसी समस्याएं होने लगी हैं। फोन से अधिक चिपके रहने के कारण अनिद्रा यानी नींद ना आना, डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक बीमारियां पनपने लगी हैं। जैसे देखा जाता है कि छात्रों का ध्यान पढ़ाई से भटक जाता है और वे किसी भी कार्य में ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। इसके आदि लोग वास्तविक दुनिया और परिवार से दूर होकर आभासी यानी डिजिटल दुनिया में सिमट जाते हैं। लोग बाहर खेलने या व्यायाम करने के बजाय घर में बैठकर फोन चलाना पसंद करते हैं, जिससे मोटापा भी बढ़ता है, यानी हम खुद ही अपनी समस्याओं को न्योता देते हैं। जब फोन पास न हो या इंटरनेट बंद हो तो व्यक्ति गुस्से या बेचैनी का अनुभव करने लगता है। सड़क पर चलते हुए या वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने से जानलेवा दुर्घटनाओं का जोखिम भी बढ़ जाता है। काम या पढ़ाई के दौरान बार बार नोटिफिकेशन चेक करने की आदत से उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। मोबाइल एक उपयोगी उपकरण है, लेकिन इसे खुद पर हावी न होने देना और सीमित उपयोग करना ही समझदारी है। साथियों, ये तो थी एक छोटी सी जानकारी हमारे मोबाइल की लत विषय पर। साथियों, अब ले चलते हैं आपको मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा मधुर गीत।

I love you all. दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।

साथियों, अभी हमने जो ये गीत सुना, ये था फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से, जिसमें गायक थे कमाल खान, गीतकार थे समीर और संगीत से सजाया था जतिन ललित ने। साथियों, बढ़ाते हैं कार्यक्रम को आगे और लेकर चलते हैं आपको इस चर्चा की ओर, जिसका विषय है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI ने तकनीकी दुनिया में एक अभूतपूर्व क्रांति ला दी है, जिससे जटिल समस्याओं का समाधान आसान हो गया है। उद्योगों और व्यवसायों में AI के उपयोग से उत्पादकता बढ़ी है और ऑटोमेशन के जरिए कार्यप्रणाली अधिक तेज हो गई है। शिक्षा के क्षेत्र में AI आधारित टूल्स छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षण यानी पर्सनलाइज्ड लर्निंग और त्वरित सहायता प्रदान कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में AI की मदद से बीमारियों की सटीक पहचान, रोबोटिक सर्जरी और नई दवाओं का अनुसंधान बहुत तेजी से हो रहा है। हमारे दैनिक जीवन में AI आधारित वर्चुअल असिस्टेंट जैसे एलेक्सा, सीरी और स्मार्ट होम उपकरणों ने जीवन को बेहद सुविधाजनक बना दिया है। सेल्फ ड्राइविंग कारों और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ने परिवहन को अधिक सुरक्षित और सुगम बना दिया है। बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में AI धोखाधड़ी का पता लगाने और जोखिम का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं साथियों, AI ने तकनीकी नौकरियों के नए अवसर पैदा किए हैं, वहीं पारंपरिक नौकरियों के स्वरूप में भी भारी बदलाव आया है। AI के बढ़ते प्रभाव के साथ ही डेटा की गोपनीयता, सुरक्षा और गलत सूचनाओं के प्रसार जैसी चुनौतियां भी सामने आई हैं। साथियों, यह तकनीक मानव जीवन को असीमित संभावनाओं की ओर ले जा रही है, लेकिन इसका संतुलित और नैतिक उपयोग ही भविष्य की सफलता है। साथियों, ये थी हमारी छोटी सी चर्चा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI के विषय पर। साथियों, लेकर चलते हैं मनोरंजन की ओर और सुनते हैं ये प्यारा सा

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत लिखा है कुमार ने। बादशाह फजील पुरिया और शुकृति का की आवाज़ें हैं। कपूर एंड सन्स फिल्म से इस गीत को लिया है संगीत अमाल मलिक।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
1: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
2: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को लीस में भारत इनोवेट्स का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन के दौरान भारत की नई पीढ़ी के नौ प्रवर्तकों, व्यवसाय जगत और वैश्विक जरूरतें पूरी करने वाले अनुसंधान समाधानों का प्रदर्शन किया जाएगा। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र आईटीआई परिवर्तन के लिए रणनीतिक परामर्श सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य में 3 दिवसीय जनकल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर प्रदेशवासियों से बाल श्रम से मुक्त समाज बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि हमारी सरकार बच्चों के हितों और शिक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश के इंदौर में आज से 2 दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और महिला किसानों की भूमिका जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हो रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। 10वें आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत आज बर्मिंघम में इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच मुकाबले से हो रही है। भारतीय टीम का मुकाबला रविवार को पाकिस्तान के साथ होगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे

0: बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों के लिए सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के लिए राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। विदेश राज्य मंत्री डॉ. कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि शंघाई सहयोग संगठन SCO केवल एक क्षेत्रीय समूह नहीं बल्कि यूरेशिया में भारत को उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साझेदारों से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी है। ताजिकिस्तान में आयोजित SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि संगठन में सहयोग के लिए भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा, संपर्क और अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। श्री सिंह ने बताया कि भारत 17 से 19 जुलाई तक कोलकाता में SCO सभ्यता संवाद मंच के पहले संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस संवाद मंच का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक चलेगी। एजेंसी ने कहा है कि NTA नीट UG परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत सिंह ने आज नई दिल्ली में समग्र ITI परिवर्तन के लिए गठित रणनीतिक परामर्श और सुधार कार्यबल सारथी की पहली बैठक की अध्यक्षता की। सारथी देश के ITI तंत्र में अगली पीढ़ी के सुधारों को गति देने के लिए केंद्र, राज्यों, उद्योग जगत और प्रमुख संस्थानों को एक साथ लाने वाला सहयोगात्मक मंच है। भारत AI मिशन ने आज वार्या नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने कहा कि भारत AI मिशन के अंतर्गत समर्थित मॉडलों में से एक का शुरू होना देश की AI यात्रा में महत्वपूर्ण है। PV सिंधु ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation,

आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हुआ है 6:10 पंद्रह सेकंड। महफिल है सदाबहार गीतों की। मैं हूं आपके साथ संजीव अग्निहोत्री और शुरुआत करते हैं फिल्म अभिमान के एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, जिसमें आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं दाग फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की है, साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अगला गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई SD बर्मन ने, लता मंगेशकर की आवाज है और इस गीत को हमने लिया अभिमान फिल्म से।

मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में अगला गाना लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीत तैयार किया शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम सूरज।

शारदा फिल्म का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में। शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, धुन तैयार की सी रामचंद्र ने।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।
1: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन एआईआर ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि एआईआर शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में

कृषकों की खेती को उन्नतशील बनाने के लिए प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी सुनिए शाम 7:30 पर आकाशवाणी शिवपुरी से 100.2 MHz पर। इसमें हमारे कृषक भाई सुन पाएंगे नित नई बातचीत। तो सुनते रहिए किसान वाणी शाम 7:30 आकाशवाणी शिवपुरी से।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से नए अवसर खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है और जमीन सौंपने की प्रक्रिया जारी है। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत, औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधा के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेंगे। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मिक्स को तलब किया है। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। दक्षिण कोरिया में सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि मोदी सरकार भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए प्रतिबद्ध है। आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में उन्होंने ये बात कही।
5: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ, जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
4: भारत की बौद्धिक और सभ्यतागत विरासत की सुरक्षा की दिशा में ज्ञान भारतम मिशन को ऐतिहासिक पहल बताते हुए श्री शेखावत ने कहा कि इस मिशन के तहत सरकार ने राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण शुरू किया है। ये साक्षात्कार अब से कुछ देर में 7:10 पर हमारी विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के में प्रसारित किया जाएगा। भारत एआई मिशन ने आज वारिया नामक एक वीडियो मॉडल शुरू किया है। इससे कम खर्च पर प्रासंगिक और अत्याधुनिक वीडियो बनाए जा सकेंगे। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय शाम के 7:05 हुए हैं। ये वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आइए पहले डालते हैं एक नज़र इस सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों पर। 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से ग्राम सभा कार्यक्रम आप सुन सकते हैं, जिसमें आज आप सुनेंगे आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। साथ ही साथ सुनेगा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर स्थल रिकॉर्डिंग आधारित विशेष कार्यक्रम। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष जन विश्वास, ये कार्यक्रम होगा आज रात 8:00। 8:35 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। कुछ और नगमे हम आपको सुनाएंगे 9:45 पर, और रात 10:00 कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। 9:30 खेल जगत में सुनिएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग कोच नेहा कश्यप से मनीष गजभिये की बातचीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज रात 10:30 आप सुन सकते हैं रोनू मजूमदार का बांसुरी वादन। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब आइए डालते हैं एक नजर कल दिन भर प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। पहले आपको बता दें आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम कल सुबह 7:21 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम होगा, जिसमें समाचार पत्रों से ली गई मुख्य सुर्खियां गीत संगीत और समय के साथ। सुरमई सवेरा फिल्मी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम होगा सुबह 8:30। आभा खरे के गाय बुंदेली लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे 9:15 पर कार्यक्रम लोक संगीत में। इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में सुबह 9:30 सुनिएगा पद्मश्री से अलंकृत वरिष्ठ पुरातत्वविद डॉक्टर नारायण व्यास से अमिता त्रिवेदी की विशेष बातचीत। 10:00 आप सुन सकते हैं जिले की चिट्ठी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत सागर, इसका समय 10:05। सुबह 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग माला में सुनिएगा राजा काले का ख्याल गायन। कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा में आप सुन सकते हैं बुंदेली लोकगीत। 7:45 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। ये सभी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। अब डालते हैं एक नज़र आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, इसका प्रसारण होगा सुबह 11:00। 12:00 आपकी फरमाइश। संग्रहालय से इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह 12:30 सुनिएगा जंग लगी तलवार, इसका भाग 8। दोपहर 1:00 महिला कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति रहेगा। आकाशवाणी रीवा की ही प्रस्तुति में 1:30 सुनिएगा लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। फिल्म संगीत का आनंद आप उठा सकते हैं दोपहर 2:00, शाम 5:33 और शाम 6:00। कुछ और फिल्मी नगमे सुनवाएंगे दोपहर 2:30 पर कार्यक्रम होगा आपकी फरमाइश। समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष, इसे आप सुन सकते हैं कल रात 8:00। कल का विषय है अष्ट लक्ष्मी। 8:35 पर फिल्म संगीत। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में रात 10:00 सुनिएगा यूएस प्रसाद का कर्नाटक सैक्सोफोन। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक

0: से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ शुरू। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यसभा उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को किया खारिज। और केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं और पूरे देश में विकास का परिदृश्य बदल रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है और ये अलग अलग क्षेत्रों में साफ तौर पर दिखाई देता है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य किया है, जिसके सकारात्मक परिणाम विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह को सक्रिय सहयोग देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियाँ सम्मान, अवसर और सशक्तिकरण के सिद्धांतों पर आधारित है। इन प्रयासों से अब महिलाएं अपनी क्षमताओं को पहचानते हुए राष्ट्र निर्माण में अधिक प्रभावी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार जैसे क्षेत्रों में भारतीय महिलाओं की बढ़ती उपलब्धियों की सराहना की। एक संस्कृत श्लोक का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि देश की माताएं, बहनें और बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ा रही है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रदेश के इंदौर में आज से दो दिन का ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में खेती में महिलाओं, खासकर माताओं और बहनों की भूमिका पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी के बिना खेती की कल्पना भी नहीं की जा सकती।
2: महिलाओं की भागीदारी और कैसी बढ़े, युवा कैसे खेती की तरफ आकर्षित हो और नई तकनीक का इस्तेमाल करके उत्पादन कैसे बढ़ाएं और किसानों की आजीविका कैसे सुनिश्चित करें, आय और बढ़े। एक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना मतलब भरपूर अन्न लोगों को भोजन के लिए प्राप्त हो और अन्न भी ऐसा हो पौष्टिक आहार।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य भारत की कुछ बेहतरीन डीपटेक प्रतिभाओं को भारत के बाहर प्रदर्शित करना है, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय द्वारा चुना गया है। उन्होंने बताया कि 1200 से अधिक स्टार्टअप्स में से 13 क्षेत्रों में 120 से अधिक डीपटेक स्टार्टअप्स का चयन किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू और कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के महानिदेशक उपस्थित थे। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को खारिज कर दिया है। ये याचिका उन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी राज्यसभा उम्मीदवारी रद्द होने के खिलाफ दायर की थी। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वो चुनाव अधिकारी द्वारा नामांकन रद्द किए जाने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। चुनाव अधिकारी ने तेलंगाना में एक आपराधिक मामले की कथित जानकारी छिपाने के आरोप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त किया था। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफल 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। बीते 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन, गरीब कल्याण, आत्मनिर्भरता और जनसेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से जन कल्याण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। झाबुआ और खंडवा जिलों में भी सभी विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर आज से जन कल्याण शिविर शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की परीक्षा अवधि को 15 मिनट बढ़ाकर दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक कर दिया है। एजेंसी ने कहा है कि एनटीए ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि नीट यूजी परीक्षा निष्पक्ष सुरक्षित उम्मीदवारों की आवश्यकताओं के अनुरूप आयोजित की जाए। आज बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस हर बच्चे की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मानजनक बचपन के अधिकार की याद दिलाता है। भारत में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम कराना कानूनन प्रतिबंधित है। विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामाजिक जागरूकता ही बाल श्रम उन्मूलन का सबसे कारगर रास्ता है। प्रदेश के दक्षिणी जिलों में 17 से 18 जून के बीच मॉनसून दस्तक दे सकता है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम की परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो अगले 10 से 15 दिनों में मॉनसून पूरे राज्य को कवर कर लेगा। प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां लगातार बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में कलेक्टर ने आज एक बैठक में एमएसएमई उद्योगों के संवर्धन, जिला स्तर पर आने वाली कठिनाइयां और उनके निराकरण आदि पर चर्चा की। राजगढ़ जिले में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। शहडोल जिले में 14 जून को ऑनलाइन योग सत्र का आयोजन किया जा रहा है। सागर जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन 28 से 30 जून 2026 तक किया जाएगा। महाराजा छत्रसाल की जयंती के अवसर पर छतरपुर जिले में लोक गायन, लोकनाट्य और संगीत पर केंद्रित विरासत महोत्सव का आयोजन 17 और 18 जून को किया जा रहा है। गुना कलेक्टर ने आकाशवाणी के भ्रमण के दौरान कहा कि आकाशवाणी अपनी विश्वसनीयता, सटीकता और जन सरोकारों से जुड़े प्रसारणों के कारण लोगों के बीच विशेष स्थान बनाए हुए है। शहडोल संभागायुक्त ने वीरपुर से श्योपुर तक रेलवे लाइन का कार्य शीघ्रता से पूरा किए जाने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर में अग्नि सुरक्षा, सुरक्षित निकासी मार्ग और लाइसेंस संबंधी नियमों के उल्लंघन पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 24वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैतूल वृत्त कार्यालय में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। उज्जैन संभागायुक्त आशीष सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंदसौर जिले में मानसून और संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। भारतीय निशानेबाज और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता जसपाल राणा का आज नई दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे 49 वर्ष के थे। श्री राणा भारतीय पिस्टल निशानेबाजों के प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे। जसपाल राणा ने मनु भाकर को निशानेबाजी में प्रशिक्षित किया और वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने में मदद की। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी द्वितीय वर्ष 2026 का परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया गया। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत।

0: जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों का जय, रूपेश भैया की राम राम। और भैया आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी भैया बहन कुशल मंगल होंगे। और भैया चर्चा तो अपन आगे और भी करेंगे विषयों पे, पर बस जहाँ से पहले अपन ये समझ लें कि अब आप खेती में क्या चल रहा है। तो भैया अपन देखें तो खरीफ की सीजन की तैयारी शुरू होते ही हमारे किसान भैया खेतों में DAP और यूरिया डालने की तैयारी भी शुरू कर देते हैं। पर भैया अपन देखें कि अधिकांश किसान भैया ये नहीं जान पाए कि मिट्टी को वास्तव में कौन से पोषक तत्व की जरूरत है। भैया तो बिना जांचे और लगातार रासायनिक खाद डालने से खेतों की उर्वरा शक्ति भी घट रही है और खेतों की लागत भी बढ़ रही है। तो भैया हम यही कहेंगे कि कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार खरीफ फसलों की बोनी से पहले मिट्टी की जांच तय करत है कि खेत में कौन से तत्व की कमी है और कितनी मात्रा में खाद डालना जरूरी है। भैया मैंने लगातार फसल लेवे से जमीन में आवश्यक पोषक तत्वन की कमी हो जाते हैं, जैसे पौधे की वृद्धि भी प्रभावित होते और असंतुलित पोषण के वजह से रोग और कीट को प्रकोप को खतरा भी बढ़ जाते हैं। जैसे जई वजह से के वैज्ञानिक खेती के लाने बुवाई से पहले मिट्टी की जांच को सबसे जरूरी कदम अपने मानो गाँव है। और भैया अपन अब बात करते हैं ऐसे विषय की जोन पर्यावरण की रक्षा भी करत है और आमदनी के लाने स्वरोजगार के नए रास्ता भी खुलत है। जोन विषय है पर्यावरण संरक्षण और स्वरोजगार को उत्तम साधन शहरी कंपोस्ट। भाई बहनों आज शहर में अपन देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कचरा बढ़ जा रहा है। घर होटल सब्जी मंडी फल मंडी पार्क बगीचन से निकलवे बारो जैविक कचरा अपन देखते हैं कि कूड़ेदान में जो फेंक दाओ जाते हैं और जे ही जब सड़त है तो दुर्गंध फैलाऊ थे बीमारी फैलाऊ थे और पर्यावरण का जो भी नुकसान पहुंचाऊ थे। पर हम जोन कचरा फेंकत समय जहाँ बेकार समझते हैं अगर हम जई कचरा का जो सही तरीका से उपयोग करें और बढ़िया से तो जैसे बढ़िया एक जैविक खाद बन सकते हैं और अपन जई का जो कंपोस्टिंग कहते हैं। जैसे भैया रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। तो भैया कंपोस्टिंग एक प्राकृतिक खाद है जोन रसोई के बचे भए जैविक पदार्थ सब्जी फल के छिलके सूखे पत्ते घास फूस और अन्य जैविक कचरा से तैयार करी जाऊत है और जो खाद मिट्टी की उर्वरा बढ़ाऊत है और पौधन की पोषण भी देते है और रासायनिक खाद पे भी अपने निर्भर नहीं रहना पड़ता है। और भैया अब बात आउत है कि शहरी कंपोस्टिंग से अपने स्वरोजगार कैसे मिले। तो आज अपन देख रहे हैं कि कई युवा महिला समूह और स्वयं सहायता समूह कंपोस्टिंग कंपोस्ट उत्पाद करके एक अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। शहर की सब्जी मंडी फल मंडी होटल कॉलोनी और पार्क से जैविक कचरे कट करके बाकी खाद अपन बना सकते हैं। और अपन देखें कि आज जैविक खेती की मांग बढ़ रही है। कैसे कि भैया आज देख रहे हैं अपन के दोनों दिन नई बीमारियां देखने में आ रही हैं और संग संग खेती की उत्पादन क्षमता भी कम हो रही है और जो अपन रासायनिक दवाइयां डाल रहे हैं जिनकी मात्रा अपने दिनों दिन बढ़ाना पड़ रही है तो अपनी लागत में भी वृद्धि हो रही है। तो जय के लाने जरूरी है कि अपन जैविक खेती की तरफ मुड़े। तो जाके लाने अपन देख रहे हैं कि किसान नर्सरी संचालक हमारे बागवानी प्रेमी और पार्क विभाग कंपोस्ट खाद जिस सब मिलकर इन्हें खाद की जरूरत रहते हैं तो जिस सब खाद खरीदते हैं। और भैया अगर ऐसे कोनो व्यक्ति हर एक महीना 2 से 5 टन कंपोस्ट तैयार कराता है तो वह अच्छो खासो अपन लाभ कमा सकते हैं। और भैया बात आउत के हमारे पुरुष वर्ग तो है ही जो रोजगार ले सकते हैं संगे संगे अपनी महिलाओं बहने हैं उनके लाने भी रोजगार के अवसर है जहाँ में। तो हमारी बहनें जो है वो स्वयं सहायता समूह शहरी कंपोस्टिंग अपना कर अपनी आप आय बढ़ा सकते हैं। कम लागत से जी व्यवसाय शुरू हो सकते हैं और स्थानीय निकाय और कई सरकारी योजनाएं प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता भी जहाँ में उपलब्ध कराते हैं। सरकार प्रशिक्षण दे रही है और जहाँ तकनीकी सहायता भी देते हैं तो हमें जरूरत है समझने की और जहाँ काम शुरू करवे की सहयोग अपने आप मिल जाओ थे। तो भैया आगे अपन चर्चा तो और भी करेंगे। बात से पहले सुनाते जरूरी संदेश।
1: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: आपने सुने वो जरूरी संदेश। और अब एक भैया बात करते हैं अपन के स्वच्छ शौचालयों का अपन करें प्रयोग। तो यह अपन ये देखते हैं कि छोटी छोटी बातन पे अपन ध्यान नहीं देते हैं, और ये अपने छोटी छोटी बातें हमको बड़ी बीमारी दे सकते हैं। जैसे कि अब खुले में सोच जाओ, गंदगी फैलाना, सोच में सोच, अपना शौचालय व साफ न रखो, ये सभी सीधे बीमारी को बुलाते हैं। तो कैसे भैया हो कि खुले में सोच के अपन नुकसान जानो जरूरी है। तो जाके लाने अपन समझे भैया कि गंदगी जमीन और पानी में अपने जे मिल जाओ थे और मच्छर और जैसे पनपाओ थे, और जे गंदगी हमारे खाना तक पहुँचा थे। जैसे अपन कौन कौन सी बीमारी होते हैं देखा थे अपन के दस्त, टाइफाइड, हैजा, पीट के कीड़े। तो भैया बहनों अकेले शौचालय हो वो अपने घर में जरूरी नहीं है, बाकी साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। तो अपन शौचालय को साफ कैसे रखें, तो रोज पानी से धोएं, संगे संगे हफ्ते में अपन एक दो बार फिनाइल या कोई कीड़े मारवे की दवा डालें, तो वहां से अपन जो है धोवे की व्यवस्था करें। और सोच के बाद के भी अपने कुछ जरूरी काम रहते हैं, जैसे कि साबुन से हाथ जरूर धोएं कम से कम 20 सेकंड तक, और हाथ नहीं धोएंगे तो भैया बीमारी तो फैलेंगी। और यही आदतें अच्छी बातें अपन अपने बच्चों को आज भी सिखाएं, बच्चा छोटे छोटे बच्चन जो होते हैं उनके जाने आदत डालें कि भाई खुले में सोच न जाएं सबसे पहले तो। और दूसरी बात ये है कि घर में शौचालय में भी जाएं तो बाकी उपयोग अच्छे से करें, पानी डालें और बाकी बाद अपने साबुन से हाथ जरूर धोएं। भाई बहनों हम घर साफ रखते हैं वैसे ही शौचालय की साफ सफाई भी बहुत जरूरी है। शौचालय अकेले सुविधा नहीं बल्कि अच्छो स्वास्थ्य, सुरक्षित परिवार और स्वस्थ समाज की पहचान है। अपन देखा देते कि पहले गांव में लोग खेतन खलियान नदी नाला खुली जगह में सोच खातर जाते थे, पर भैया अब समय बदल गया है। सरकार और समाज की कोशिश से लगभग हर गांव में घर घर शौचालय बन गए हैं। अब अपने जरूरत है इनकी नियमित उपयोग करवे की और साफ सफाई रखवे की। तो जैसे भैया हो शौचालय की सफाई खातर रोज पानी डालें, सप्ताह में कम से कम 2 बार फिनाइल या कोनू सफाई वाली दवा से धुलाई करें, और शौचालय के आसपास पानी जमा ना होने दें। तो भैया जी बातें अपन सीखेंगे तो निश्चित रूप से साफ सफाई में और सफाई सरकार के सफाई अभियान में अपन सहभागी भी बनेंगे, और अपन बीमारियों से भी बचेंगे, पर्यावरण के लाने मुक्त भी रख पाएंगे, शुद्ध रख पाएंगे। और अपन सोचो भैया कि अपन जैसे अपन शौचालय है और अपन यहाँ कोनो मेहमान आओ और वो शौचालय गाओ और माने देखो कि कितने अपने शौचालय में गंदगी है, तो बाप अपने सोचोगे अपनी वो कस सोचेगा अपने अपने बारे में। तो जरूरी है कि जिस चीज़ों को अपन ध्यान रखें, घर के सफाई के संग संग अपन शौचालय की साफ सफाई भी नियमित रूप से करें, यही हम आपसे कह रहे हैं। और भैया जैसे कि रोजिना हम आपको भेंट वार्ता के माध्यम से नई नई जानकारियां लेके आते हैं, और जिसे आपको खेती में भी लाभ मिलता है और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेके आते हैं तो स्वास्थ्य में भी लाभ मिलता है। तो भैया जैसे आज हम आपके लाने लेके आए हैं एक भेंट वार्ता जी को विषय है शिवपुरी जिले में आयुष विभाग की सुविधाएं। वार्ताकार हैं डॉक्टर अनिल वर्मा, और उनसे बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर समर्थ अग्रवाल, और ये भेंट वार्ता हम आपको पुनः प्रसारण कर रहे हैं। तो सुने भैया आप जो भेंट वार्ता।
3: श्रोताओं नमस्कार। प्रत्येक इंसान की ये चाहत होती है कि वो लगातार तरक्की करे, दिनों दिन प्रगति करे और अपने परिवार को खुशहाल रखे। खुशहाल रहने के लिए सर्वप्रथम जो सबसे ज्यादा बेसिक नीड्स होती है कि वो आमदनी करे और स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि उसे जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य विभाग की इलाज मिल सके और इलाज की बेहतरी के लिए भारत सरकार और राज्य शासन तमाम तरह के प्रबंधन किए हुए हैं। उन्हीं में एक विधा है जिसे हम आयुष कह सकते हैं। तो आयुष क्या है, शिवपुरी जिले में आयुष विभाग की क्या सुविधाएं हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर अनिल वर्मा है। आप जिला आयुष अधिकारी है। डॉक्टर साहब, सुनने वालों के मध्य आपका स्वागत है, नमस्कार।
4: नमस्कार जी सभी श्रोताओं को।
3: डॉक्टर साहब, जो पहला प्रश्न है वो ये है कि आयुष विभाग अन्य जो हमारी थेरेपी है जिसे हम एलोपैथी कहते हैं, इससे कैसे अलग है और ये कब अस्तित्व में आया और इस आयुष में क्या क्या आता है?
4: देखिए, आयुष विभाग बनना और आयुर्वेद कब अस्तित्व में आया, दोनों अलग अलग प्रश्न है। आयुष विभाग अस्तित्व में आया है वर्ष 2006-07। इससे पहले आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी विधाएं जो थी वो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ ही उसके अंतर्गत ही समाहित थी। सरकार को इसकी पृथक से आवश्यकता महसूस हुई, इसके महत्व को जाना, तो 2006-07 में शासन ने आयुष विभाग को पृथक से एक विभाग बनाया और उसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योगा और सिद्धा, इन सभी को समायोजित किया। और आयुर्वेद कब से आया तो इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जैसा कि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, आयुर्वेद हर घर में होता है, हर जगह उपस्थित होता है, हर किचन को ये अगर ये कह लें कि हमारा एक आयुर्वेद का मेडिकल स्टोर है तो ये गलत नहीं होगा। क्योंकि हम जब भी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार होने से पहले की जमाने में की बात करें तो जब भी व्यक्ति बीमार होता था तो शायद उसकी सभी बीमारियों का इलाज उसकी किचन में मिल जाता था, अधिकतर, संपूर्ण तो नहीं लेकिन अधिकतर बीमारियों का इलाज उस किचन में मिल जाता था।
3: जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। धन्वंतरी के युग से और चरक के युग से आयुर्वेद समाज में, भारतीय संस्कृति में घुला मिला है और मसालेदानी अपने आप में एक आयुर्वेद का खजाना है जिसमें हल्दी का नाम लिया जा सकता है। अब हम अपने जिले की बात करते हैं और आयुष विभाग की सुविधाओं की बात करते हैं। शिवपुरी जिला एक वृहद जिला है जिसमें एक और उत्तर प्रदेश को शिवपुरी जिले की सीमाएं लगती हैं, एक और राजस्थान जिले को शिवपुरी जिले की सीमाएं लगती हैं। लंबाई चौड़ाई काफी ज्यादा है। हमारे जिले के सारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं, तो शिवपुरी जिले में आयुष विभाग की सुविधाएं क्या हैं, मतलब किस थेरेपी के लिए किस किस जगह पर कितनी कितनी ब्रांचेज हैं, कहां कहां पर हॉस्पिटल हैं जहां पर हमारा बीमार व्यक्ति जाकर सुविधा का लाभ ले सकता है?
4: देखिए, वर्तमान में शिवपुरी जिले में आयुष विभाग के अंतर्गत 40 औषधालय हैं, जिनमें से 32 औषधालय आयुर्वेद के हैं, 6 होम्योपैथी के हैं, एक यूनानी का है और एक जिला आयुर्वेद चिकित्सालय है। इसके अलावा एक यूनिट हमारी जिला चिकित्सालय जो एलोपैथी विभाग का रहता है उसमें भी संचालित है, और PHC-CHC पर हमारी 5 यूनिट्स अलग से संचालित हैं, जहां पर या तो आयुर्वेद के चिकित्सक पदस्थ हैं या होम्योपैथी के, एक ही जगह पर दोनों विधाओं के चिकित्सक अभी तक तो पदस्थ नहीं है। तो कुल मिलाकर 32 आयुर्वेदिक औषधालय हैं और 6 होम्योपैथिक औषधालय हैं जो सभी ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किए थे।
3: यानी कि आप लगभग 5 विधानसभाओं की अगर हम बात करें कि कोलारस है, पिछोर है, करेरा है, शिवपुरी है और पोहरी है, 5 विधानसभाओं में पूरा शिवपुरी जिला कवर हो जाता है, तो 5 विधानसभाओं में आपकी कोई ना कोई यूनिट कहीं ना कहीं काम कर रही है?
4: सभी ब्लॉक में, सभी विधानसभा क्षेत्रों में हमारी आयुर्वेद और होम्योपैथिक यूनिट स्थापित है।
3: तो यहाँ पर योग्य चिकित्सक है कि जैसे हम SR और GR जो मेडिकल कॉलेज की भाषा है, वहाँ पर जूनियर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं कि बकायदा पूरे जो BAMS जिसके लिए आयुर्वेद होता है तो उस तरह की उन्होंने उपाधि ली है और काम कर रहे हैं?
4: देखिए, हमारे यहाँ पे सभी औषधालयों में, चिकित्सालय में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के ही पद हैं, सभी स्नातक उपाधि धारक चिकित्सक हैं। इसके अलावा जो PHC और CHC पे जो चिकित्सक पदस्थ हैं वो भी BAMS, BHMS की डिग्री वाले योग्य चिकित्सा धारक हैं, लेकिन वो संविदा सेवा के अंतर्गत अभी सेवाएं दे रहे हैं।
3: जी, इन औषधालयों के समय चक्र क्या रहते हैं?
4: जो औषधालय PHC-CHC के भवन में संचालित हैं उनका समय जो स्वास्थ्य विभाग निर्धारित करता है उसी के अकॉर्डिंग रहता है, जैसे कि अभी सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक उनका समय है। और जो हमारे आयुर्वेद, होम्योपैथी के औषधालय हैं उनका समय वर्तमान में सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक है, जिसमें दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 2:15 तक लंच का समय रहता है।
3: इन औषधालयों में चाहे वो किसी भी गांव का हो, जैसे आजकल जिला चिकित्सालय में या मेडिकल कॉलेज में दवाओं की सुविधा भी निशुल्क उपलब्ध है, तो यहाँ पर क्या दवा भी दी जाती है कि सिर्फ चिकित्सक परामर्श देता है?
4: नहीं, सभी औषधालयों में निशुल्क पर्चे बनते हैं और निशुल्क ही दवाइयों का वितरण किया जाता है। सिर्फ अंतर इतना आता है कि औषधालयों में जो सप्लाई दवाइयों की होती है वो लिमिटेशन उसकी ज्यादा है, मतलब कम मात्रा में सप्लाई होती है, और जिला चिकित्सालय आयुष विंग है वहां पर दवाइयों की संख्या तुलनात्मक रूप से थोड़ी अधिक होती है। तो अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो वहाँ के चिकित्सक जिला आयुर्वेद चिकित्सालय और आयुष विंग में पेशेंट को रेफर करते हैं।
3: यानी कि रेफरल प्रणाली इसमें भी कहीं ना कहीं पर आ जाती है।
4: जी बिल्कुल।
3: डॉक्टर साहब, अगर कुछ गांवों के नाम आपको पता हो, मतलब आपको स्मृति में आ रहे हैं, तो उन गांवों का जिक्र करें कि इस गांव में ये है और इस गांव में ये है।
4: देखिए, यूनानी औषधालय तो पूरे जिले में एक ही है, जो थनरा गांव है करेरा ब्लॉक में।
3: जी,
4: उसमें है। होम्योपैथी के 6 औषधालय हैं, एक शिवपुरी शहर में है लोकल में, वार्ड क्रमांक 11 में। इसके अलावा दुल्हारा पौहरी ब्लॉक में, जरिया खुर्द पौहरी ब्लॉक में, पिछो

0: और सीएचसी पर संचालित है, पिछोर प्रॉपर तहसील पर। दिनारा तहसील में होम्योपैथिक औषधालय है। और इसी तरह आयुर्वेद की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि पौरी ब्लॉक से चलें अपन, तो ककरौआ जो शिवपुरी का आखिरी बॉर्डर है, ककरौआ में औषधालय है, धौरिया में औषधालय है, भटनावर में औषधालय है, एंचवाड़ा गांव में औषधालय है। इधर करेरा ब्लॉक की बात करें तो शिलानगर में है, नरवर ब्लॉक में मगरौनी में है, खरे भद्रवास में है, अटलपुर कोलारस के पास में राई गांव में है, कोलारस प्रॉपर में है। इस तरह से 32 मतलब टोटल 40 यूनिट्स शिवपुरी जिले में हमारी विभिन्न अलग अलग जगहों पर संचालित हो रही
1: है। सर्वाधिक आयुर्वेद की है,
0: सर्वाधिक आयुर्वेद
1: 32 आपने बताई ना, 32 यूनिट आपकी आयुर्वेद की काम कर रही है, यूनानी की एक कर रही है, होम्योपैथी की 6 कर रही है और एक सिद्धा की काम कर वर्क कर रही है। लेकिन इस आयुष में आपने योग का भी जिक्र किया था कि योग आता है, योग की क्लासेस या योग का औषधालय के तौर पर कहीं पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है?
0: योग पृथक से अलग से किसी जगह पे भी ऐसे सेंटर अभी तक तो स्थापित नहीं किए गए हैं, लेकिन वर्ष 2022 से हमारे कुछ औषधालयों का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय जो योजना है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित कर दिए गए हैं, वहां पर योग की सुविधा अलग से उपलब्ध कराई है। तो शिवपुरी जिले में वर्तमान में 16 औषधालय ऐसे हैं जिनको आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम दे दिया गया है। वहां पर प्रतिदिन सुबह योग प्रशिक्षक और सहायक की नियुक्ति की गई है जो प्रतिदिन सुबह योग करवाते हैं,
1: क्लासेज लेते हैं योग की, जनता जा सकती है और उनको फॉलो कर सकती है। योग की बात आई है तो क्या योग बेटर लिविंग के लिए काम फेवरेबल है?
0: देखिए, योग इतनी बड़ी विधा है जो अभी तक बहुत एक्सप्लोर नहीं हो पाई। आयुर्वेद दो मुख्य सिद्धांतों पर कार्य करता है कि रोगों से बचाव कैसे हो, मतलब रोग शरीर में आए ही ना, और दूसरा अगर रोग आ गया है तो फिर उसका इलाज। तो इलाज के लिए तो बहुत सारी जैसे कि एलोपैथी पद्धति जो बनी है वो पूर्णतः रोग हो जाने के बाद में कारगर है, लेकिन आयुर्वेद ही एकमात्र विधा ऐसी है जो रोग ना हो उसके लिए क्या तैयारी आपको करनी है ये बताती है। आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ मेडिकल साइंस नहीं है, आयुर्वेद है पूरे जीवन का, प्रतिदिन का, प्रति मौसम के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को समझाने वाली एक साइंस है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आयुर्वेद के सिद्धांतों का पालन करता है तो उसमें शुरुआत होती है कि हमारी दिनचर्या कैसी हो, हमारे उठने का समय क्या हो, हमारे नहाने का समय क्या हो, हमारा व्यायाम कितना करना है, हमें तेल की मालिश करनी है कहाँ करनी है, क्या कानों में तेल डालना है, जो कई तरह के मिथ्स हैं कि तेल डालना फायदेमंद होता है, कई जगह आता है कि नुकसानदायक होता है, तो क्या कानों में तेल डालना है, क्या पैर के तलवों में तेल लगाना है, क्या बालों में तेल लगाना है, अगर उपवास करना है तो वो भी आयुर्वेद का एक पार्ट है कि उपवास करना है तो किस व्यक्ति को करना है, किस व्यक्ति को नहीं करना है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक हमें क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको बताने का पूरा काम आयुर्वेद में बहुत अच्छे सिद्धांतों से बताया गया है।
1: यानी कि कैसे दैनिक जीवन को जिया जाए ये आयुष विभाग और आयुर्वेद बिल्कुल क्लियर बताते हैं कि अगर हम इस तरह से अपने दैनिक जीवन को चलाएंगे तो हमें दवाओं की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम वैसे भी स्वस्थ रह सकते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: एक संकट है या एक सहज प्रश्न है, कई बार ऐसी भयावह स्थिति आती है व्यक्ति के शरीर में कि अचानक उसे साइलेंट कई सारी प्रॉब्लम होती है, अब ऐसे में तत्काल वो एलोपैथी की ओर भागता है। एलोपैथी भी कारगर है लेकिन अन्य चीजें शायद उतनी कारगर नहीं है या लोग उनसे जानते नहीं है, तो क्या आयुर्वेद में या होम्योपैथी में क्या इस तरह की दवाएं या इस तरह का चिकित्सा विज्ञान है कि सडन स्थितियां जब आती हैं, कहते हैं हार्ट फेल्यूर हो रहा है या उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ दवाएं ऐसी हो जो इंस्टेंट रिलीफ देती हैं?
0: देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अचानक से इमरजेंसी केसेस जो बनते हैं उसमें एलोपैथी की आवश्यकता शरीर को पड़ती है। तो प्रथमतः जो इमीडिएट और ऐसी कोई समस्या आती है जो लाइफ थ्रेटनिंग है तो वहाँ पर एलोपैथी का सहारा बिल्कुल लिया जाना चाहिए। आयुर्वेद में भी ऐसी दवाइयाँ हैं लेकिन तुलनात्मक रूप से उतनी तेजी से काम नहीं करती हैं जितनी कि एलोपैथी में कर रही है। पहले के जमाने में लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, तब एलोपैथी थी ही नहीं, तब भी उन पे होने वाले जो बीमारियां लगती थी या इमीडिएट कोई एक्सीडेंटल रिजल्ट्स उनकी बॉडी में आते थे तो उसका नियंत्रण भी आयुर्वेद से किया जाता था, लेकिन उसका समय ठीक करने का समय और एलोपैथी के द्वारा ठीक करने के समय में अंतर है। तो एलोपैथी इमीडिएट कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है, इसमें कोई दो राय।
1: लेकिन आयुर्वेद भी कमजोर नहीं है
0: जी,
1: लेकिन त्वरित जिसे कहते हैं फास्ट रिलीफ चाहिए तो हमें एलोपैथी से संपर्क करना होगा। लेकिन आयुष विभाग की जो पांच चीजें आपने बताई, आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग, सिद्धा और यूनानी, ये भी पूरी तरह से कारगर है जो इलाज कर रही है। अब एक प्रश्न है जिससे इसके बाद हम लोगों के जो संशय है वो भी दूर होंगे। इन अगर

0: पूरी 40 का आपके पास डाटा आता हो तो 40 पर लगभग कितने लोगों की प्रतिदिन ओपीडी है एक नॉर्मल?
1: जी, प्रतिदिन की ओपीडी का जो है एनालिसिस हमारे प्रत्येक महीने की बैठक में शासन स्तर से किया जाता है। हमारे जिला चिकित्सालय में प्रति माह की ओपीडी 1300 से ज़्यादा है, मतलब प्रतिदिन का अगर हम एवरेज निकाल लें तो छुट्टियों को हटा दें तो 50 पेशेंट से ज़्यादा का जिला चिकित्सालय में रहता है। आयुष विंग में भी लगभग 50 से ज़्यादा पेशेंटों का रहता है और ग्रामीण स्तर पर 30 से 40 पेशेंट प्रत्येक औषधालय में प्रतिदिन स्वास्थ्य लाभ लेते हैं।
0: तो आपने जो 1300 बताया ये एक दिन का एवरेज बताया है आपने,
1: मासिक
0: एवरेज बताया, मतलब 40 की 40 ओपीडी पर लगभग 40 पूरे एक माह में 1300 व्यक्ति एक
1: नहीं, आप नहीं समझे। 1300 जो मैं बता रहा हूँ जिला आयुर्वेद चिकित्सालय जो हमारा है उसमें,
0: मैं पूरे 40 का टोटल लेना चाह रहा हूँ एक अंदाज,
1: लगभग 15,000 से ज्यादा की ओपीडी हमारी मासिक रहती है।
0: हाँ, ये तो 15,000 जब आदमी जा रहे हैं तो आदमी विश्वास कर रहा है, कहने का तात्पर्य ये है। तो जैसे मान लीजिए मेरे मन में कोई संशय है या हमारा कोई श्रोता सुन रहा है उसके मन में संशय है, पता नहीं वो काम करेगी, लेकिन जब 15,000 व्यक्ति प्रतिमाह जा रहे हैं जिला यूनिट पर आपके 1300 व्यक्ति आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रभावशील है, इस बात को माना जा सकता है। और ये जो आयुष विभाग है ये भारत सरकार के नेतृत्व में वर्क कर रहा है कि राज्य शासन के नेतृत्व में वर्क कर रहा है?
1: भारत शासन में भी आयुष विभाग है, मध्य प्रदेश शासन में भी है। तो जो औषधालयों में सीधा नियंत्रण है वो राज्य शासन का होता है। जैसा कि मैंने बताया आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो निर्मित किए गए हैं वो केंद्र शासन की योजना है,
0: लेकिन गाइडलाइन केंद्र की है, कंट्रोल राज्य सरकार का है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में पंचकर्म का नाम भी लिया जाता है जो शायद मालिश तेल का उपयोग कई सारी चीजों का मिला जुला स्वरूप है, पंच है यानी पांच चीजें हैं, ये क्या है और इसकी सुविधा क्या शिवपुरी में कहीं उपलब्ध है?
1: देखिए, पंचकर्म आयुर्वेद की बहुत फेमस विधा है और इंडिया के मेडिकल टूरिज्म में पंचकर्म बहुत बड़ा
0: योगदान निभा रहा है,
1: योगदान दे रहा है। पंचकर्म पांच ऐसे कर्मों का कॉम्बिनेशन है, पांच ऐसी मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जिसके द्वारा हम बॉडी को, शरीर को रोगों से लड़ने के लिए सक्षम बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू डिसीज, मतलब बीमारी के अनुसार ये निर्भर करता है हमें किस पेशेंट को कौन सा पंचकर्म दिया जाना है। अगर स्वस्थ पेशेंट होता है और उसको अपनी बॉडी को एक तरह से बिल्कुल नए की तरह बनाना हो तो उसको सारे पांचों कर्मों को एक बार में करा दिया जाता है, जिसमें लगभग 45 दिन का एक लंबा समय लगता है। तो उस प्रोसेस को कर देने के बाद में शरीर में जो तीन दोषों के आधार पर रोगों का जो निर्माण होता है, रोग शरीर में बनते हैं, वो तीन दोषों के सिद्धांत पर ही आयुर्वेद पूरा बना हुआ है, वात, पित्त और कफ। इन्हीं दोषों के कॉम्बिनेशन की वजह से ही, कॉम्बिनेशन बिगड़ने की वजह से रोगों का निर्माण होता है। तो पंचकर्म में बीमारी के हिसाब से किस बीमारी में कौन सा पंचकर्म फायदेमंद होता है, अगर हम पहले उस पंचकर्म को करा लें तो हमारी दवाइयों की कार्यक्षमता जो है, उस बीमारी पर काम करने की क्षमता जो है तुलनात्मक रूप से अधिक हो जाती है और रोग हमें जल्दी खत्म करने में उससे सहयोग मिलता है। पंचकर्म बेसिकली पांच कर्म जो हैं, बमन, विरेचन, दो तरह की बस्तियां, आस्थापन, निरु और नस्य। तो नस्य को मैं थोड़ा सा, सभी लोग थोड़े बहुत परिचित होंगे कि जब कभी भी जैसे कि नाक में से खून आता है तो गांव में क्या कहते हैं, कच्चे दूध की दो दो बूंद नाक में डाल लिया जाए, तो नाक में ड्रॉप डालना ही नस्य होता है। इसी तरह से बमन, विरेचन, वो कफ की, अगर कफ से संबंधित बीमारियां हैं तो बमन करवाया जाता है, पित्त से संबंधित बीमारियां हैं तो विरेचन करवाया जाता है, वात से संबंधित बीमारियां हैं तो दो तरह की बस्तियां रहती हैं, एक काढ़े की बस्ती मतलब नीमा के फॉर्म में काढ़ा बना के दिया जाता है और एक तेल की बस्ती जिसे अनुवासन कहते हैं। तो वो ये चार कर्म और पांचवा गर्दन से ऊपर की सारी बीमारियों के लिए नस्य कर्म कराया जाता है। तो इससे पहले जिले में ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन वर्तमान में जिला आयुर्वेद चिकित्सालय पुरानी शिवपुरी में पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है।
0: एक प्रश्न और, भारत डायबिटीज का गढ़ बनता जा रहा है, आंकड़े कह रहे हैं, क्या इस आयुष में और खासतौर पर आयुर्वेद में या होम्योपैथी में डायबिटीज पर भी नियंत्रण करने की संभावना?
1: देखिए, आयुर्वेद के बारे में मैं इससे पहले एक लाइन में और बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद एकमात्र ऐसी विधा है जहां किसी भी बीमारी को होने से पहले उसके क्या सिम्टम्स होते हैं उनको मेंशन किया।
0: अब मेरे को हो गया, सपोज अब क्या करें?
1: देखिए, दोनों तरह की चीजें हैं, वही मैं बताना चाह रहा था, मैं पूर्व रूप से स्टार्ट कर रहा था, मतलब बीमारी होने के पहले आपको कौन से सिम्टम्स आएंगे, बीमारी हो जाने के बाद में जो सिम्टम्स आएंगे वो तो सभी जगह है, लेकिन उससे पहले क्या सिम्टम्स आएंगे वो भी आयुर्वेद में मेंशन है। जैसे कि डायबिटीज के बारे में एक पूर्व रूप बताया है, सुश्रुत ने अपनी बुक में मेंशन किया हुआ है कि ऐसे स्वस्थ व्यक्ति जिनको दौड़ने से अच्छा खड़े होना पसंद होता है, अगर खड़े होंगे तो उनको ये ज्यादा अच्छा लगता है कि थोड़ा सा बैठ लिया जाए, अगर बैठे होंगे तो उन्हें ये लगेगा कि लेट लिया जाए, और अगर लेटे होंगे तो ये सोचेंगे मुझे सोने का मन है, थोड़ा सा सो लेता हूं।
0: ये
1: डायबिटीज का पूर्व रूप है। अगर आप समझ लीजिए, आपको ये, आप सुबह सुबह वॉक पर गए हैं, दोस्तों के साथ में चल रहे हैं, वो आपके साथ साथ में वॉक कर रहे हैं लेकिन आपका मन करने लगे कि यार थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, मतलब डायबिटीज आपके बॉडी में होने के
0: संभावना
1: है, आपको संभावना है, तो उस समय नियंत्रण कैसे किया जाएगा वो आहार विहार का वर्णन अलग है कि आप किस तरह का खान पीन में परिवर्तन कर लेना है ताकि वो रूप में मतलब बीमारी में कन्वर्ट ना हो, उस समय भी इनकी चिकित्सा की जा सकती है और रूप जब डेवलप हो गए तब उसकी चिकित्सा की जा सकती है। बहुत तरह की दवाइयां हैं, जैसे आप हल्दी का नाम ले रहे थे, हल्दी बहुत अच्छी दवाई है, करेला जो है हमारा बड़ा अच्छा डायबिटीज को कंट्रोल करने की दवाई है, जामुन की गुठली जो है डायबिटीज को कंट्रोल करने की बहुत अच्छी दवाई है, सब्जी आती है परवल वो डायबिटीज को कंट्रोल करने की बड़ी अच्छी दवाई है, मेथी डायबिटीज को कंट्रोल करने की बड़ी अच्छी दवाई है, पनीर के फूल जो आते हैं वो गला कर अगर लिए जाए,
0: पनीर तो दूध का पदार्थ है उसके फूल,
1: पनीर के फूल सामान्य भाषा में एक पौधा होता है जिसको पनीर कहा जाता है और उसके फूल आते हैं, तो वो आपको किसी भी ऐसे दवाइयों की दुकान जहाँ पंसारी की दुकान है जिन्हें कहते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल मिलता है उनके यहाँ पे मिल जाएंगे। 7 से 8 फूल डेली आप रात को पानी में गला दें, सुबह उनको मसल कर उस पानी को पी लें तो डायबिटीज को काफी हद तक ये कंट्रोल करता है। लेकिन लिमिटेशन हर चीज की होती है, ओरल मेडिसिन की भी लिमिटेशन होती है, बहुत ज्यादा अगर शुगर बढ़ी हुई है तो एकदम कंट्रोल में ना ला करके सपोर्टिव थेरेपी के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
0: यानी कि डायबिटीज पर भी कंट्रोल है, हर बीमारी पर कंट्रोल है, लेकिन आहार विहार आयुर्वेद का पहला फार्मूला है कि आहार विहार पर हम अपने पर जोर ध्यान दें तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। पंचकर्म का भी आपने सिद्धांत बताया और आयुर्वेद कई चीजों की जननी भी है, ये भी हम सब जानते हैं। सुश्रुत का आपने नाम लिया, चरक है, धन्वंतरी है। तो डॉक्टर अनिल वर्मा जी, आप हमारे श्रोताओं के बीच में आए और शिवपुरी जिले में आयुष विभाग की सुविधाएं और यहां से कैसे लाभ लिया जा सकता है, हमारे श्रोताओं के मन में कई संशय, कई जिज्ञासाएं, कई विचार जो उमड़ते रहते हैं और जिनसे वो खुद निजात नहीं पा पाते, आज जिम्मेदार व्यक्ति जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर अनिल वर्मा जी स्वयं जवाब दे रहे हैं। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई संशय की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं सही कह रहा हूँ
1: जी?
0: मतलब जनता और श्रोता निष्फिक्र होकर जा सकते हैं
1: जी? हमारे जितने भी औषधालय हैं प्रतिदिन खुलते हैं, अवकाश के दिनों को छोड़कर आप वहां पर जाकर स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं।
0: तो डॉक्टर अनिल वर्मा जी, जिला आयुष अधिकारी, हमारे श्रोताओं के बीच में आप रहे, आपने जानकारी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: नमस्कार
2: भैया, आप सुन रहे थे अभी जो भेंट वार्ता जी को विषय है तो शिवपुरी जिले में आयुष विभाग की सुविधाएं। वार्ता कर रहे थे डॉक्टर अनिल वर्मा और उनसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। तो भैया, वाकई में डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी बताई हमें काजे, और हम भी आपसे भैया यही कहना चाहेंगे कि आयुर्वेद वास्तव में भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जी को इतिहास हजारों वर्ष पुरानो मानो जावत है, और आयुर्वेद का मतलब ही ये है कि जीवन को विज्ञान। आयुर्वेद के अनुसार भैया शरीर मन और आत्मा को संतुलन ही अच्छे स्वास्थ्य को आधार है, जहाँ में तीन दोषों का वर्णन अपन देखा था कि तीन दोषों को ज़्यादा महत्व होते हैं, वात दोष, पित्त दोष, कप दोष। तो भैया जो तीनों दोष संतुलित रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं, और असंतुलन होने पर रोग अपन काजे हो जाते हैं। तो जैसे भैया आयुर्वेद में जाके उपाय बताए गए हैं कि संतुलित एवं पौष्टिक आहार लें, योग और प्राणायाम करें और ध्यान करें, जड़ी बूटियों का अपन उपयोग करें, दिनचर्या और ऋतुचर्या को पालन करें। तो ऐसे भैया लाभ भी जाके बहुत होते हैं कि पाचन शक्ति में अपन सुधार होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने में सहायक होता है, मानसिक तनाव कम करने में मदद मिलत है, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा मिलता है और शरीर और मन के संतुलन को बनाए रखते हैं। तो भैया हम तो आपसे यही कहेंगे कि आयुर्वेद का मुख्य उद्देश्य यही है कि रोगों का उपचार करना ही नहीं है बल्कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और रोगी के रोग को निवारण करना है। तो आप जरूर अपन आयुर्वेद की तरफ मुड़ें और आयुर्वेद को अपनाएं और अपनी बीमारियों को अपन जड़ से मिटाएं, यही हम आपसे कहना चाहेंगे और यही आज की भेंट वार्ता का उद्देश्य है। भैया चर्चा तो अपन कर ही रहे हैं पर आपके मनोरंजन को भी हमें पूरा ध्यान देते हैं, तो आपके मनोरंजन के लाने सुनवाओ थे एक बहुत बढ़िया सा लोकगीत अरहु चेत भजन कर हरि का, और गायक कलाकार हैं बाल कृष्ण। सुने आप जो लोकगीत।
3: आरे आ जाऊं

भैया अभी आपने सुना जो लोकगीत, और अब बात करते हैं अपन भैया एक आय का बेहतर स्रोत मधुमक्खी पालन। अपन देख रहे हैं भैया कि हमारे सभी भैया खेती तो करते ही हैं, पर भैया बाकी संगे अपने जरूरी काम भी करना चाहिए आय के स्रोत के लाने। जैसे अपन कोनो भी काम करें, चाहे अपन डेयरी उद्योग खोलें, चाहे फूलन को व्यवसाय करें, चाहे कोनो भी मतलब ऐसो व्यवसाय करें या बगीचा लगाएं या मधुमक्खी पालन करें और या फिर मछली पालन करें, या मतलब इस तरह से भैया क्या मतलब यही है कि अपने नकदी पैसा आते रहे और अपने पूरी तरह से खेती पे ना निर्भर होने पड़े। तो जय के लाने हम एक ना एक आपको ऐसे व्यवसायों की जानकारी देते रहते हैं जैसे आपको फायदा मिले और एक नकदी आमदनी की व्यवस्था आप भी बनी रहे। तो जय के लाने भैया आय का बेहतर स्रोत मधुमक्खी पालन पे अपन बात कर रहे हैं। तो भैया खेती में अपन देख रहे हैं कि लागत बढ़त जा रही है,

खाद बीज दवाई मजदूरी सब महंगो हो जा रहा है। ऐसे भैया किसान भैया अगर खेती के संग संग कोनों अपन अलग से काम करें तो आमदनी तो निश्चित बढ़त है। तो भैया जैसे जो अपन बात कर रहे हैं मधुमक्खी पालन ऐसा ही काम है जो कम खर्च में अच्छो फायदा अपने दे सकते हैं। भैया मधुमक्खी पालन शहद उत्पादन के संग संग फसल की पैदावार भी बढ़ाऊत है। कह सके भैया मधुमक्खी फूलन पे बैठ के परागरण कराते हैं ताकि फसल की पैदावार बढ़िया होते हैं। जहाँ में सरसों सूरजमुखी तुअर सब्जी और फल वाली फसलन में जाको बहुत फायदा मिलत है। हमारे कई किसान भैया सोचते हैं कि मधुमक्खी पालन कठिन काम है पर ऐसा नहीं है भैया। सही जानकारी हो तो कोनो काम अपने कठिन नहीं होते और जो बड़ी आसानी से अपन कर सकते हैं। शुरुआत में हमारे किसान भैया 5 से 10 बक्सन से भी लगा के काम की शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे अनुभव बढ़ने के संग बक्सन की संख्या बढ़ाएं तो व्यापार भी अपना बढ़त है। तो भैया मधुमक्खी प्रकृति की अनमोल देन है जे फूलन से रस और पराग इकट्ठो करत है और वही से शुद्ध शहद तैयार करत है। मधुमक्खियां फसलों में परागरण को काम भी कराते हैं जैसे उत्पादन में अपने फसल में 15 से 30% तक की बढ़ोतरी अपन देख सकते हैं। तो आज बाजार में शुद्ध शहद की मांग बढ़ रही है। हमारे किसान भैया अच्छी गुणवत्ता को शहद तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से बाजार में उन्हें अच्छो मूल्य भी मिलेगा। और भैया अब चलवे की बीरा हो गई अपनी तो जैसे पहले अपन हम आपको मौसम की जानकारी दे देते हैं। तो भैया आज का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा भैया और आर्द्रता रहेगी 65% और हवा की गति 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रहने को अनुमान है। और भैया अपन देख रहे हैं कि आंशिक रूप से बादल भी छा रहे हैं और कहीं कहीं गरज चमक धूल भरी आंधी या हल्की बारिश भी हो सकते हैं। तो भैया कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ बिजली गिरने की ऐसी खबर लगे ऐसी संभावना तो अपन हम तो आपसे यही कहेंगे कि भैया खेती में काम करने समय अपन दोपहर की तेज गर्मी से बचें। यदि गरज चमक शुरू हो जाए तो खुले मैदान पेड़ या बिजली के खम्भे के नीचे अपन को बिल्कुल नहीं खड़े होने। और जय वादन के संगे भैया समय होगा हुआ आपसे विदा लेवे को तो दीजिए इजाजत अपने रूपेश भैया को कार्यक्रम चौपाल से। राम राम, राम राम, जय जवान।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से
1: आकाशवाणी है 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: एक ओर हजारों वर्षों की सभ्यताएं, दूसरी ओर नए भारत की आकांक्षाएं, एक ओर वेदों की वाणी तो दूसरी ओर डिजिटल युग की गति, एक ओर काशी के घाट, दूसरी ओर विश्व मंच पर भारत का बढ़ता सम्मान। पिछले 12 वर्षों में भारत ने सिर्फ विकास की नई इबारत ही नहीं लिखी है, भारत ने अपनी सांस्कृतिक चेतना, विरासत और पहचान को एक नए आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। काशी के धाम की बात करें या फिर केदारनाथ के पुनर्निर्माण की, विदेशों से आए मूर्तियों की बात करें या फिर ज्ञान भारतम मिशन की, साथ ही साथ वंदे मातरम के 150 वर्षों के राष्ट्रीय उत्सव की बात करें या फिर हम बात करें आज आधुनिक होते भारत के नए स्वरूप की, हर जगह चर्चा है एक ऐसे भारत की जिसकी ओर दुनिया उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में पिछले 12 वर्ष किस तरीके के रहे, इस पर चर्चा के लिए आज के खास मेहमान हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद, बहुत सारा आभार यह अवसर प्रदान करने

0: लिए।
1: शुरुआत यहीं से करते हैं, पिछले 12 वर्ष की हम बात करें तो संस्कृति के क्षेत्र में आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि दुनिया को लगता था कि विरासत और विकास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन भारत ने इसे एक साथ एकाकार कर दिखाया है।
0: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में एक तरफ जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए सर्वस्पर्शी योजनाओं के माध्यम से, लोक कल्याणकारी सर्व कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश को परिवर्तित किया, वहीं दूसरी तरफ जहां भारत का आम व्यक्ति गुलामी की मानसिकता के बोझ से दब करके भारत पर स्वाभाविक गर्व करने की जो व्यवस्था थी, जो विचार था, उससे कहीं दूर भटक गया था, उससे कहीं अलग हो गया था। भारतीयों का भारत के प्रति गर्व का बोध वापस स्थापित करने में पिछले 12 साल में सफलता प्राप्त की है। इस 12 साल के दौर में जिस तरह से विरासत और विकास दोनों एक साथ चलें, हम गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ करके अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ें, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दिशा में जिस तरह से पिछले 12 वर्षों में काम हुआ है और जो परिवर्तन और प्रभाव उसका दिखाई देता है, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ कि 12 साल का कालखंड जब भारत के विकसित होने का इतिहास लिखा जाएगा तब भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर उसके रूप में परिभाषित और चिन्हित किया जाएगा।
1: जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे विषय रहे जिसने संस्कृति मंत्रालय ने पिछले 12 वर्षों में बेहतरीन काम किया। अगर एक एक विषय की बात करें तो विदेशों से जो प्राचीन मूर्तियां आई उसका आप कितना प्रभाव मानते हैं? सिर्फ वो मूर्तियों का आना नहीं रहा, वो भारत की सांस्कृतिक चेतना का वैश्विक प्रसार भी दिखाता है और साथ ही साथ दिखाता है कि जब संस्कृति की कोई चीज वापस आती है तो विरासत भी हमारी समृद्ध होती है।
0: देखिए, 70 के दशक के प्रारंभ में यूनेस्को का ये वर्ल्ड कन्वेंशन हुआ जिसमें ये तय हुआ कि सांस्कृतिक धरोहरें यदि अनधिकृत रूप से उस देश से कहीं बाहर ले जाई जाती हैं तो इस कन्वेंशन के बाद की इन संपदाओं पर वो राष्ट्र अपना प्रोवेनेंस प्रूव करके उसको वापस लाने के लिए क्लेम कर सकता है, अनैतिक तरीके से, इलीगल तरीके से, चोरी से, तस्करी से, जो जिस किसी भी देश की संपदा गई हो। तब से लेकर के 2014 तक जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन किया, विरासत का संरक्षण केवल शब्द नहीं था, उसके प्रति जो भाव था, मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूँ कि वो 13 की संख्या बढ़कर के और 670 से ज़्यादा हो गई है। और पिछले वर्षों में जिस तरह से हमने अनेक देशों के साथ इस पर अपने कल्चरल एग्रीमेंट्स किए, ऑब्वियसली अमेरिका जो सबसे बड़ा मार्केट इसका है, ऐसी सारी संपदाएँ चोरी होकर के अमेरिका जाती थी, उनके साथ जो हमने कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन किया, भारत की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग जब भारत में हुई थी 2024 के वर्ष में उस समय में, उसके चलते हुए एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ और हम 670 के आंकड़े को पार कर पाए। और आज जिस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम आगे चले हैं, इस साल के अंत तक जाते जाते हम 1000 के आंकड़े को पार करके हम 4 डिजिट की संख्या में पहुँच जाएंगे। इतना ही नहीं, विभिन्न वैश्विक मंचों पर जहां ये विषय रेलेवेंट है, भारत ने अपनी इस सफलता को दुनिया के दूसरे देशों के साथ में भी साझा करके ऐसे अनेक देश जिन्होंने गुलामी का दंश सहा है उनकी आवाज को बुलंद करने का भी काम किया है। हमारी कल्चरल प्रॉपर्टीज का रेस्टिट्यूशन हमारा सांस्कृतिक सभ्यतागत हक है, ये आवाज वैश्विक मंच पर भारत ने एक नेतृत्वकर्ता बनकर के उठाई है। जब एक संपत्ति, एक संपदा, चाहे वो अन्नपूर्णा की मूर्ति हो, वो ट्रैक करके प्रधानमंत्री खुद इंटरेस्ट लेकर के वापस लाते हैं और वो काशी विश्वनाथ के मंदिर में जब पुनर्स्थापित होती है, वो एक सभ्यतागत मूल्य का पुनर्स्थापन होता है, एक इतिहास का वापस पुनर्स्थापन होता है और एक राष्ट्रीय संकल्प का सिद्ध होना उसके कारण से दिखाई देता है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी इस विचार के प्रति, इस विषय के प्रति निष्ठा और संकल्प शक्ति, इन तीनों का प्रकटन इसके माध्यम से होता है।
1: अगर हम सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बात को थोड़ा और आगे लेकर जाएं, हमने देखा कि काशी विश्वनाथ का पूरा कॉरिडोर बना, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ, उज्जैन में जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है महादेव का मंदिर, वहां पर महादेव लोक बनाया गया और बहुत टूरिज्म को बढ़ावा मिला। इसके दो पहलू हैं, एक तो जो सांस्कृतिक कॉरिडोर का निर्माण होना और उसके जरिए युवाओं को जोड़ना और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना। संस्कृति मंत्रालय आने वाले समय में भी इस तरह की किस योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, हमारी संस्कृति के मानबिंदु, हमारी सभ्यता के मानबिंदु, हमारी आस्था के केंद्र, जिनकी आपने चर्चा की, काशी बाबा का कॉरिडोर बनाने की बात हो, महाकाल लोक बनाने की बात हो, केदारनाथ के पुनर्निर्माण की बात हो, सोमनाथ जो भारत की अदम्य जिजीविषा का प्रतीक है, उसके मंदिर के परिसर के पुनर्निर्माण के साथ साथ में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का विषय हो, या सोमनाथ के आक्रमण उसके ध्वस्त किए जाने के 1000 साल के पूरे होने को, या पुनर्निर्माण के 75 साल पूरे होने के को वर्ष पर्यंत उत्सव के रूप में मनाने और देश को उसके साथ जोड़ने का विषय हो, जगन्नाथपुरी के धाम से लेकर के देश के अन्य इस तरह के श्रद्धा के केंद्रों को प्रसाद योजना के माध्यम से पर्यटन मंत्रालय द्वारा विकसित करने, वहाँ अवसंरचनाओं के विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में टूरिस्ट एमिनिटीज़ को बढ़ाने का काम हो, निश्चित रूप से उसने वहाँ जाने वाले दर्शनार्थियों के अनुभव के स्तर को समृद्ध करने का काम किया है। लेकिन इसके चलते हुए मात्र पर्यटन को या धार्मिक पर्यटन को उछाल मिलाओ, ऐसा नहीं है। पिछले वर्षों में जिस तरह से गरीब कल्याण की योजनाएं बनाई गई, उनको जिस तरह से सैचुरेशन के मंत्र के साथ में धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए जो 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल पाए, मध्यम वर्ग को जिस तरह से दोहरी राहत प्रदान की गई, एक टैक्स में कटौती करके, इनकम टैक्स के स्लैब्स को रिवाइज करके, जहां 2 लाख रुपए के ऊपर की आय पर इनकम टैक्स लगता था, आज 12.5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हुआ। दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष करों में GST का लागू करके, देश में एक कर की व्यवस्था को लागू करके, जो कैस्केडिंग इफेक्ट से टैक्स लगता था, टैक्स ओवर टैक्स, उससे राहत प्रदान करके, और तीसरे, देश की महंगाई को पिछले 12 वर्षों तक निरंतर काबू में रख करके जो है हिस्टोरिकली लो बनाए रखने में कामयाबी प्राप्त करके, मध्यम वर्ग को जिस तरह से लेवरेज किया, उनकी जेब में जब डिस्पेंसिबल पैसा आया, तो सामान्य भारतीय की जिस तरह की सोच, मानसिकता और जिस तरह का विचार होता है, उसकी जेब में जब डिस्पेंसिबल इनकम होती है, तब वो पहली बार घर से बाहर निकलने का अवसर मिलता है, तो दशकों से, कई केसेस में पीढ़ियों से दबी हुई आकांक्षा कि कभी हमारे पास पैसा होगा तब मैं अपने बूढ़े माँ बाप को लेकर के आस्था के किसी केंद्र में, जहाँ परिवार की आस्था हो या जिन जिन जगहों पर आस्था हो, वहाँ लेकर के जाऊँगा, दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करूँगा, दर्शन कराने का पुण्य प्राप्त करूँगा। ये सपना इन सब परिस्थितियों के कारण से साकार हुआ, और इसके साथ साथ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ, सड़कें बनी, वर्ल्ड क्लास रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ, मॉडर्नाइज रेलवे भारत में आई, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ में उनके परिचालन की गति पड़ी ताकि आवागमन में समय कम हो, नए हवाई अड्डे बने, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई यात्रा कर सके, इस सपने को साकार सरकार ने किया, उसने भी निश्चित रूप से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया। पर्यटन की गतिविधि जो कहीं भी होती है, पर्यटन की अर्थव्यवस्था जो है वो ओवरऑल भारत की GDP में 6% का कंट्रीब्यूशन करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन है, हमको इसको 2047 तक, जब भारत विकसित होगा, तब तक 10% के ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर लेकर के जाना है। लेकिन दूसरा, पर्यटन की अर्थव्यवस्था सबसे डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होती है। जब आप और मैं पर्यटन के लिए कहीं जाएं, चाहे वो किसी भी पर्पज के लिए होगा, ट्रांसपोर्टर को उसको लेकर के रोजगार मिलता है, ट्रांसपोर्टर का कैस्केडिंग इफेक्ट से ड्राइवर को रोजगार मिलता है, गाड़ियाँ मैन्युफैक्चरिंग करने वालों को उसके चलते हुए रोजगार मिलता है, वो एक कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है, होटल में ठहरते हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा रोजगार का प्रदाता है, निवेश विज रोजगार सृजित रोजगार अगर देखें तो हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार सृजन करने वाला होता है, उनको रोजगार मिलता है, रेस्टोरेंट्स को रोजगार मिलता है, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को रोजगार मिलता है, कोई सुवेनियर शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, क्राफ्ट शॉप पर जाकर के कुछ खरीदता होगा उसको रोजगार मिलता है, इसके अतिरिक्त टूरिस्ट गाइड को रोजगार मिलता है, अनेक लोगों को, पूरे समाज को उससे लाभ होता है। रास्ते चलते हुए कोई रोक करके, शायद कोई खेत में से तोड़ करके फल लेकर के बैठी हुई एक महिला से अगर कोई जामुन खरीद करके खाए, कोई अमरूद खरीद करके खाए, कोई फल खरीद, केला खरीद के खाए, उस फार्मर को रोजगार मिलता है। तो ये जो डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी और उसके साथ साथ में रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये दोनों ही पर्यटन के क्षेत्र की खूबसूरती है, खूबी है। और मैं ये मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हम 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था जो आज 4 ट्रिलियन पर है और पूरी दुनिया जिस बात पर विश्वास करता है कि 2047 तक 30 ट्रिलियन से ज्यादा की अर्थव्यवस्था होगी, उसमें जब भारत का ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर

0: 10% का कंट्रीब्यूटर बनेगा। निश्चित रूप से जिस प्रमाण में भारत में डोमेस्टिक ट्रैवल बढ़ेगा, उसी प्रमाण में भारत का इनबाउंड टूरिस्ट, जो विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि भारत की छवि बदल रही है, भारत की तरफ देखने की दृष्टि बदल रही है। तो भारत में एक तरफ भारत की 30 ट्रिलियन की उस संभावित अर्थव्यवस्था में 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर होगा, और वहीं भारत में जो 2,30,000 करोड़ रुपए का आय जो है विदेशी मुद्रा की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर से होती है, ये भी लगभग इसमें जो है 10 गुना की अभिवृद्धि होगी। तो भारत में टूरिज्म सेक्टर भारत की इकोनॉमी का ड्राइवर भी बनेगा, बड़ा स्टेक होल्डर होगा, और क्योंकि जैसा मैंने कहा ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी होने के कारण से बहुत सारे रोजगार का अवसर पैदा करती है। जब हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे जिस लक्ष्य को लेकर के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम एग्रीकल्चर के बाद में सबसे बड़े एम्प्लॉयमेंट जनरेटर सेक्टर होंगे।
1: जी बिल्कुल, इसी में दो और पहलू हैं मंत्री जी। छोटे राज्यों की बात करें, बिहार में महाबोधि मंदिर कॉरिडोर की बात हुई, विष्णु प्रयाग मंदिर की बात हुई, साथ ही साथ बिहार में जहां सीता माता का जन्म हुआ था वहां भी शुरुआत चल रही है, रामायण सर्किट महाभारत सर्किट की भी चर्चा जोरों पर रही, इन सब का क्या रिस्पॉन्स आप देख रहे हैं?
0: देखिए, इन योजनाओं पर हम राज्यों के साथ में निरंतर बातचीत करते हुए इस पर आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कॉरिडोर्स या विषय हो सकते हैं जिसको स्तंभन करने के लिए जिस पर हम काम कर रहे हैं। हिस्टोरिकल ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, नेचर बेस्ड ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, ट्रैकिंग ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, बुद्धिस्ट बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, हम वाइल्ड लाइफ बेस्ड टूरिज्म के ट्रेल्स पर काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत सारी ट्रेल्स पर एक साथ में काम हो रहा है। और क्योंकि संभावनाओं का द्वार बहुत बड़ा है, इसलिए हम नए डेस्टिनेशंस डेवलप करने के लिए भी प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उनके विजन के साथ में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ा उछाल दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में सस्टेनेबिलिटी के लिए, नए अनुभवों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हमको नए अनुभव सृजित करने पड़ेंगे। जहाँ एक तरफ हम अपनी सभ्यतागत धरोहर, चाहे वो राखीगढ़ी की आर्कियोलॉजिकल साइट होगी वहाँ से लेकर के और चित्तौड़ के किले की ऐतिहासिक साइट तक, उन सब को नए सिरे से ग्लोब जो है देश परियोजना के तहत डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 50 से ज़्यादा विश्व स्तरीय आइकॉनिक डेस्टिनेशंस नए बनाने के ऊपर भी हम माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं।
1: अगर चर्चा को थोड़ी आगे बढ़ाएं, पांडुलिपियों के संरक्षण पर प्रधानमंत्री का बहुत जोर रहता है, ज्ञान भारतम मिशन चलाया जा रहा है पांडुलिपियों के संरक्षण और उसमें AI तकनीक का इस्तेमाल करके उनका डिजिटलाइजेशन, कुछ उसके बारे में बताएं।
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब विरासत के संरक्षण की बात की तब उनका मार्गदर्शन था कि हमको अपनी बौद्धिक संपदा की समृद्ध विरासत का संरक्षण भी करना चाहिए। भारत के हजारों साल के निरंतरता के सभ्यतागत इतिहास में भारत के ऋषियों ने, मनीषियों ने जो अनुभूत ज्ञान अर्जित किया, जो समृद्ध ज्ञान की धरोहर खड़ी की गई थी, वो कालांतर में अंग्रेजों की कुत्सित नीतियों के चलते हुए और उससे पहले पश्चिम से आए हुए आक्रांताओं के आक्रमण के समय में नष्ट कर दिए जाने के भय से उनको दबा छिपा करके रखने की पद्धति बन गई थी। दुर्भाग्य से आजादी के बाद में भी जिस तरह की मानसिकता के लोग सत्ता के सिंहासन पर बैठे थे, जो सिर्फ जन्म से भारतीय थे, बाकी मन से, विचार से, आत्मा से, सोच से वो कहीं भारतीय नहीं थे। भारतीय परंपराओं के प्रति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति, भारत के ज्ञान के प्रति उनके मन में श्रद्धा का भाव नहीं था। वो पाश्चात्य परंपरा से और पाश्चात्य सोच से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भी उदासीनता रखी। ये हमारी हजारों साल की जो है बौद्धिक संपदा धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो रही थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा इसको चिन्हित किया जाना चाहिए और उनका मार्गदर्शन का था कि इनको चिन्हित करके मात्र संरक्षण करने से काम नहीं चलेगा। किसी एक मैन्युस्क्रिप्ट को अगर हम शिष्य संहिता को अगर हम डिजिटाइज कर देंगे, उसका डिस्क का स्कैन करके डिजिटल वर्जन को अपलोड कर देंगे, उसको हम सुरक्षित तो कर पाएंगे। उसको अगर क्षरण हो रहा है तो उसको कुछ सालों के लिए, आने वाले कुछ सदियों के लिए हम उसको एक बार फिर कंजर्व करके शायद रख तो पाएंगे, लेकिन आज के वर्तमान संदर्भ में वो उपयोगी हो ये नहीं कर पाएंगे। तो ये जो हमारा अथाह ज्ञान का सागर है, ये वर्तमान में विश्व के उपयोग में आए, इसके लिए ये आवश्यक है। और उनका मार्गदर्शन था कि हम तकनीकी का उपयोग करके इसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में लेकर के आए, ताकि आज की उपलब्ध तकनीकियों के आधार पर उनको देश और

दुनिया की विभिन्न प्रचलित भाषाओं में परिवर्तित किया जा सके, ट्रांसलिटरेट किया जा सके। हमने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में इस विषय से जुड़े हुए सारे विशेषज्ञों को बुलाया। 3 दिन तक, सुबह से लेकर रात तक, देर रात तक सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, जिसमें पांडुलिपियों को रखने वाले भी थे, उनके कंजर्वेशन पे काम करने वाले भी लोग थे, एंडोलॉजिस्ट भी थे, टेक्नोलॉजी के लोग भी थे, जो भाषाएं डिसाइफर्ड नहीं है उनके डिसाइफरमेंट के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ थे, ऐसे लोगों ने अलग अलग वर्टिकल्स में बैठ करके जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने दिए थे, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, उसके सॉल्यूशन और उसका रोड मैप बनाने पर विचार विमर्श किया। उन सबके प्रेजेंटेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं 3 घंटे तक बैठ करके सुने और फिर आगे उसका एक रोड मैप उनके मार्गदर्शन में बना। हमने अभी 2026 के मार्च के 20 तारीख को एक ऐप लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री से लॉन्च करवा करके एक सर्वे देश में प्रारंभ किया कि मैन्युस्क्रिप्ट जिसके पास में भी है वो उसका फोटो, उसका मेटा डेटा अपलोड करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 1,90,00,000 से जैसा ऐसे ग्रंथ जो हैं वो लोगों ने अपलोड किए, उनकी सूचना अपलोड की। हमने वेरिफिकेशन का प्रोसेस, क्योंकि कहीं डुप्लीकेशन नहीं हो, डी डुप्लीकेशन भी आवश्यकता थी, कहीं हो सकता है कि गलत एंट्री आ जाए, इन सब का ध्यान में रखते हुए इंडिविजुअल एंट्री को वेरीफाई करके हमने अपनी रिपोजिटरी पर रखना शुरू किया है। वो संख्या भी 1,08,00,000 को क्रॉस कर चुकी है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में जब ये सारी बौद्धिक संपदा, ये सारी धरोहर संरक्षित भी होगी और इस सारी धरोहर और संपदा को आज का विश्व जान सकेगा, आज विज्ञान पढ़ने वाले हम सब लोग, आप और मैं, जिस विषय को और जिन पुस्तकों को पढ़ करके जो हमको पढ़ाया गया, हम जिसको पढ़ करके सीखे, वो ये कहता है कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, गैलीलियो ने सिद्ध किया था लगभग 400 वर्ष पूर्व। जब उसने ये कहा था तब उसको कितनी तरह की कठिनाइयों और यातनाओं को झेलना पड़ा था, सूली पे लटकाने तक का उपक्रम किया गया था। लेकिन हम मानते हैं कि उन्होंने ये विश्व में सबसे पहले वैज्ञानिक रूप से प्रतिस्थापित किया। लेकिन भारत की बौद्धिक संपदा ये 400 साल पहले भारत की मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि 2000 साल पहले ऋषि आर्यभट्ट ने स्थापित कर दिया था कि सूर्य और धरती के बीच में कितनी दूरी है, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, धरती सूर्य का चक्कर लगाने के लिए कितना समय लेती है, धरती अपने एक्सिस पर घूमने में कितना

0: इसके अतिरिक्त अन्य ग्रहों और उन ग्रहों के उपग्रह क्या हैं, उस सब का रचना संसार उन्होंने पुस्तक में लिखा हुआ था। जब मैं आपसे पूछता हूँ कि एक भारत की आने वाली पीढ़ी का बच्चा, चाहे जैन अल्फा होगी, बीटा होगी, जैन जी होगी, जब ये पढ़ेगा कि जो विज्ञान की किताबों में हमको पढ़ाया जाता है 400 साल पहले जिस खोज को यूरोप में होने की बात की जाती है, वो गर्व करते हैं, वो हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज जो है 2500 साल पहले भी जानते थे। जब वो ये अनुभव करेगा कि जब पूरा विश्व और विश्व के लगभग सब देशों जो आज अपने आप को विकसित होने का दंभ भरते हैं, अभिमान करते हैं, वो जब अपने आप को पशु से डिस्टिंक्ट करने के लिए, अलग दिखाने के लिए या अपनी लज्जा छुपाने के लिए प्रयासरत थे, जब वो पेड़ की छाल या जानवर की खाल लपेट रहे थे, तब हमारे यहाँ जो है वो भरत मुनि नाट्य शास्त्र लिख रहे थे। और उस नाट्य शास्त्र में वो मंच सज्जा कैसे हो, फेस एक्सप्रेशन कैसे हो, रस की अभिव्यक्ति कैसे हो, व्यक्ति की आंखों का और भावों की अभिव्यक्ति का सामंजस्य क्या है, हाथ की उंगलियों का लस्य क्या है, बॉडी का जेस्चर्स क्या होते हैं, किस तरह की ड्रेस होती है, क्या कलर कॉम्बिनेशन होता है, इन सब के ऊपर वो लिखित में शोध करके अपने ग्रंथ लिख रहे थे। हमारा भारत कितना समृद्ध था, ये जब हमारी नई पीढ़ी जानेगी तब वो भारत के प्रति गर्व की अनुभूति करेगी। और जिस देश और समाज के लोग अपने राष्ट्र पर, राष्ट्र की परंपराओं पर, राष्ट्र के इतिहास पर, देश की मान्यताओं पर गर्व करते हैं, वो देश निरंतर प्रगति करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो ज्ञान भारत मिशन है, ये निश्चित रूप से इस देश को परिवर्तित करने वाला होगा, इस देश के ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत बड़ा योगदान करने वाला होगा। और न केवल भारत के प्रति, अपितु भारत के प्रति पूरे विश्व की देखने की दृष्टि बदलेगी, और इसमें छुपा हुआ अकूत ज्ञान और संपदा जो है वो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगी।
1: अब थोड़ी चर्चा वंदे मातरम की कर लेते हैं। 150 वर्ष पूरे हुए हैं, राष्ट्रीय उत्सव मनाया जा रहा है, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से कई तरह की पहल की गई, राष्ट्रीय चेतना का एक मंत्र था सिर्फ एक गीत न होकर वंदे मातरम। क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं और किस तरह की योजनाएं हैं इस दिशा में?
0: कि वंदे मातरम का गीत वो केवल एक गान नहीं, उस समय की परिस्थिति की कल्पना कीजिए जब अंग्रेजों का दमन चक्र चरम पर था। देश और देश के बारे में विचार करना, देश और देश के भक्ति की बात करना, परतंत्रता से मुक्ति की बात करना, उसके लिए अनेक अत्याचार होते थे, अनेक यातनाएं सहन करना पड़ती थी, और देश जो है मानसिक रूप से देशवासी और देश के उस समय के लोग टूट रहे थे। उस समय पे बंकिम बाबू ने जो ये अमर गीत लिखा, इस गीत ने एक भारत के उस कम मानसिकता की कमजोरी के उन्मूलन के लिए काम किया, और दूसरा भारत के विभिन्न हिस्सों में जो बायर कालांतर में अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पर स्वतंत्रता के लिए अलग अलग मार्ग से संघर्ष हो रहा था, उस सबको एकता के सूत्र में निबद्ध करने का काम किया। और वंदे मातरम का यह अमर गीत जिसने हजारों लोगों को बलिदान होने के लिए प्रेरित किया, समर्पित करने के लिए प्रेरित किया, और उनके बलिदान से इस गीत के माध्यम से, क्योंकि उनके अंतिम शब्द वो मतंगिनी हाजरा से लेकर के अनेक अनेक ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन के अंतिम शब्द पंख फांसी के फंदे पर झूलने से पहले या सीने पर गोली खाने के पहले, या वीर सावरकर जैसे लोगों ने कोड़ों की मार खाते हुए कोल्हू में बैल में जुते हुए भी जो वंदे मातरम का उद्घोष किया, उसने लाखों लोगों को देश की आजादी की लड़ाई के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त किया था। इसलिए वंदे मातरम भारत की आत्मा का, भारत की सांस्कृतिक चेतना का गीत था। इस अमर गीत के जब 150 साल पूरे हुए, ये दुर्भाग्य था कि आजादी से पहले जिस तरह के विचार के लोग थे, और जैसा मैंने कहा कि उनके हृदय में कहीं भारत की चिति और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के प्रति इस तरह का प्रबल वेग नहीं था, उन लोगों ने वंदे मातरम के विभाजन को स्वीकार किया। जिस वंदे मातरम के विभाजन ने देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस वंदे मातरम के एहसास के साथ में, उस वंदे मातरम की भावना के साथ में, वंदे मातरम के गीत के साथ में अपने आप को खपा देने वाले लोगों की प्रेरणा प्राप्त करते हुए, इस महत्वपूर्ण समय में जब देश 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहा है, तब वंदे मातरम एक बार फिर प्रेरणा का पुंज बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए साल भर तक इस 150वीं शती पर स्मरणोत्सव आयोजित करने का हम सबको मार्गदर्शन दिया। हमने उस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला प्रारंभ की, अलग अलग जगह पर इसके निमित्त कार्यक्रम हो, अलग अलग विधाओं के कार्यक्रम हो, उन सबको आयोजित करने पर कार्य की श्रृंखला प्रारंभ की। इसके

0: इस पर एक हर एक व्यक्ति इसके साथ में जुड़े। जो वंदे मातरम का डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने बनाया, उस प्लेटफॉर्म पर भारत के लोग खुद एकत्रित होकर के अपने स्वर में वंदे मातरम को गा करके अपलोड करें, वंदे मातरम के साथ में उन लोगों को जोड़ने के लिए, प्रेरणा को प्राप्त कर सकें, ऐसा अवसर प्रदान करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म सृजित किया, जिस पर करोड़ों लोगों ने आकर के वंदे मातरम का गायन करते हुए रजिस्टर किया। वंदे मातरम और वंदे मातरम से जुड़े हुए विषयों की देश भर में अनेक जगह पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। वंदे मातरम के इतिहास से जुड़े हुए अनेक गोष्ठियां आयोजित की गई, विचार विमर्श आयोजित किए गए और किए जा रहे हैं। देश भर एक साथ में, एक जगह पर एक साथ में वंदे मातरम का गायन करें, इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए। और उनके साथ साथ में वंदे मातरम पर अलग अलग तरह की, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अनुकूल फिल्म्स बन सके, वीडियो मटेरियल बन सके, अपने अपने तरह से लोग वीडियो मटेरियल बनाए, इसके लिए कॉम्पिटिशन आयोजित किए, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अब तक अपने कंटेंट अपलोड किए। इस तरह से पूरे देश में वंदे मातरम को पूरे देश को जोड़ने और एक राष्ट्रभक्ति का ज्वार हम पुनः इस महत्वपूर्ण समय में खड़ा कर सकें, जो उतना ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है जितना आजादी की लड़ाई थी, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम निरंतर काम कर रहे हैं।
1: दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मंत्री साहब, और हम बात योग की करें, आयुर्वेद की करें या भारतीय भाषाओं की करें, दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाना, जिसे आज आधुनिक दौर में सांस्कृतिक कूटनीति भी कहते हैं, संस्कृति मंत्रालय इस दिशा में किस तरह की पहल कर रहा है?
0: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके इनिशिएटिव पर जिस तरह से योग पूरे विश्व तक पहुंचा, आज दुनिया के हर देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को, जो अभी आने वाले दिनों में 21 तारीख को आने वाला है
1: जी,
0: पूरा विश्व योगमय हो जाता है, ऐसा हम सब देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन विषय वहां तक नहीं है। मुझे, क्योंकि दुनिया के अनेक देशों में जाने का सौभाग्यपूर्ण अवसर माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मिलता है, डे टू डे लाइफ में भी योग की एक्सेप्टेबिलिटी एज ए वेलनेस प्रैक्टिस, ए बैलेंसिंग प्रैक्टिस इन द लाइफ, वो अपनाने की में बहुत बड़ी गति मिली है। लाखों लाखों लोगों के जीवन का योग हिस्सा बना है, और निश्चित रूप से उसके माध्यम से भारत के प्रति सम्मान बढ़ा है। भारत ने जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति की, विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म्स पर भारत की प्रासंगिकता बढ़ी, इंपॉर्टेंस बढ़ी, भारत ने एक सदस्य देश से आगे बढ़ करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से विभिन्न विधाओं में एक लीडरशिप का रोल लेना प्रारंभ शुरू किया, भारत ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, और इन सब के चलते हुए भारत की तरफ देखने की दृष्टि जिस तरह से विश्व की बदली, मैं मानता हूं कि उसके कारण से भारत की सांस्कृतिक परंपराओं, भारत के ज्ञान, भारत से निकले हुए विषयों की एक्सेप्टेबिलिटी भी पूरे विश्व भर में बढ़ी। हमने योग की बात की, हम भारत की संस्कृत की बात कर सकते हैं। आज दुनिया के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में से 75 में जो है संस्कृत का विभाग काम करता है। लगभग 40 से ज्यादा विश्वविद्यालयों में वेद अध्ययन केंद्र खुले हैं या खुल रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत की जीवन पद्धति, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ की बात की, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से सारी दुनिया घबराई हुई है। भारत की कृषि परंपरा, भारत की परिवार व्यवस्था, भारत के गौवंश, इन सब की डिमांड पूरी दुनिया में नए सिरे से बढ़ रही है। भारत अब केवल दुनिया के लिए एक देश नहीं, भारत दुनिया के लिए एक इंस्पायरिंग नेशन के रूप में खड़ा हो रहा है। और भारत जिस दिशा, जिस गति से प्रगति कर रहा है, आज भारत विश्व के लिए एक भरोसेमंद मित्र और पार्टनर के रूप में खड़ा हो रहा है। हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को लेकर के दुनिया के विभिन्न देशों में गए, निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा कूटनीतिक प्रभाव पड़ा है। और इन सब विषयों को लेकर के भारत की छवि, जो कभी भ्रष्टाचार से ग्रसित देश, कभी कमजोर देश, आतंकवाद से पीड़ित देश, नक्सलवाद से ग्रसित देश के रूप, छवि के रूप में बनी हुई थी, आज एक सशक्त आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए देश की तरह छवि बनी है।
1: आपसे एक और सवाल समझना चाहेंगे कि जब हम बात अमृतकाल की करते हैं और 2047 में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की बात करते हैं, तो संस्कृति मंत्रालय किन भविष्य की योजनाओं पर काम कर रहा है?
0: देखिए, आजादी के 100 वर्ष पूरे करने तक देश

0: विकसित देश बने। एक बहुत विजनरी और बहुत बड़ा संकल्प देश के प्रधानमंत्री ने लिया। जो देश 2014 से पहले अविश्वास के भाव में या आत्मविश्वास की कमजोरी से ग्रसित था, जहां व्यवस्था पर से विश्वास डगमगाया हुआ था, उस देश को 12 साल के इस कालखंड में, जो बहुत छोटा है किसी देश के परिवर्तन के दृष्टिकोण से, उससे बदल करके विश्वास से भरे हुए देश के रूप में परिवर्तित करके हम विकसित हो सके, इस दिशा में ले जाने का एक साहसिक काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देश के 140 करोड़ लोगों की ताकत पर हम कदम दर कदम दिन प्रतिदिन उस दिशा में आगे बढ़ रहे। इस मंत्र के साथ में हम भारत को विकसित करते हैं कि भारत विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कृति मंत्रालय की भूमिका बहुत बढ़ती है। जब कोई देश प्रगति करता है, विकसित होता है, तो निश्चित रूप से सम्मान अर्जित। मैंने एक दिन कहीं ऑन एयर इंटरव्यू में कहा था, और मैंने पत्रकार मित्र जो बातचीत कर रहे थे उनसे कहा, क्या आप कभी किसी ऐसे विक्षिप्त व्यक्ति के घर गए हैं जो एक छोटे से झोंपड़ी में कहीं रह रहा हो, चारों तरफ दुर्गंध हो, महीनों से नहाया नहीं हो, कपड़ों में से दुर्गंध आ रही हो, बालों में शायद कीड़े रंग रहे हों, चारों तरफ बर्तन गंदे पड़े हों, मैले कुले चले कपड़े पड़े हों, सब कुछ अव्यवस्थित हो, क्या आप वहां जाकर के आपके मन में क्या भाव होगा जब आप जाएंगे? या तो करुणा का भाव
1: जी,
0: या घृणा का भाव होगा, या दया का भाव होगा, या दान का भाव होगा। आपके मन में सेंस ऑफ ओनरशिप उसके लिए नहीं होगी। तो भारत की छवि जब ऐसी थी, तब देश और दुनिया के लोगों की भारत के प्रति सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं थी। अब जब परिस्थितियां बदल गई है, अब जब भारत विकसित होने वाला है, विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो भारत की तरफ देखने की दृष्टि और भारतीयों की भारत को ओन करने की दृष्टि बदली है, का विचार बदला है, भाव बदला है। और ये जब भाव बदलता है, जब देश अपनी सांस्कृतिक परंपराओं पर गर्व करना शुरू करता है, जब देश अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करता है, तब राष्ट्रीय भाव से उत्प्रोत होकर के जब काम करने लगता है, तो राष्ट्र का संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाता है। इसलिए संकल्प को सिद्ध करने में भी संस्कृति मंत्रालय और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं का पुनरुद्घाटन, भारत का सांस्कृतिक पुनर्जागरण निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। लेकिन उसके साथ साथ में भारत जब विकसित होगा, तब भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत परंपराएं, भारत की एकता में विविधता और विविधता में एकता, ये दोनों विश्व को भारत की तरफ आकर्षित करने और भारत की तरफ सम्मान की दृष्टि से देखने का एक नया नजरिया जो है वो सशक्त रूप से पैदा करेगी।
1: कार्यक्रम के अंत में युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो अपनी भारतीय संस्कृति से जुड़ें, उन पर गर्व करें और उनका प्रचार प्रसार भी करें?
0: देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं की ताकत के आधार पर ही भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वो हमारी सबसे बड़ी धरोहर है और ये धरोहर देश की सांस्कृतिक परंपराओं के साथ में जुड़े हैं। उसके लिए मैं कहूंगा कि हम सब लोग जब कभी भी अवसर मिले, जहां कहीं भी अवसर मिले, जैसा भी अवसर मिले, हम देश की विरासत के साथ में, सांस्कृतिक संपदा के साथ में, धरोहर के साथ में, परंपराओं के साथ में जुड़ें। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि वो सभी तीर्थयात्रा के लिए जाएं, वो भावना का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है। वो भारत को देखें, भारत की विविधता को अनुभव करें, भारत की सांस्कृतिक वैधव्य को, जो विविधता है, वैविध्य को अनुभव करें, वो भारत की जो है नेचुरल लैंडस्केप की जो डाइवर्सिटी है उसको अनुभव करें, भारत के भोजन की जो समृद्ध परंपराएं हैं और उनका जो वैविध्य है उसको अनुभव करें, और उसके साथ साथ में भारत को जाने और पहचाने। जब वो ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा और सम्मान दोनों बढ़ेगा और वो उनको भारत के लिए जुट जाने के लिए अभिप्रेरित करेगा। आइए हम सब मिलकर के भारत को जानना प्रारंभ करें, भारत को पहचानना प्रारंभ करें, भारत को जीना प्रारंभ करें और भारत को जान पहचान करके भारत के लिए जीना प्रारंभ करें।
1: कहते हैं नील गगन में सांध्य तारा का, पावस में प्रथम फुहारा का, और माला में जो स्थान प्रथम मणि का रमणीय होता है वो ऐतिहासिक होता है। भारत के विकसित होने की इस यात्रा में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की जो पहल है वो इसी तरह की ऐतिहासिक पहल है। आकाशवाणी पॉडकास्ट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष जन विश्वास। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपकी परछाइयां फिल्म से लिया है। लता मंगेशकर की आवाज है। राजू मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा। संगीत मदन मोहन का।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए आपकी कसम फिल्म के इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण, वक्त है अंतराल का।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। कुछ ही देर में समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व में विकास को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का काम शुरू। भारत ने अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब कर भारतीय नाविकों वाले वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी हमलों का कड़ा विरोध किया। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने उत्तर कोरिया में ड्रोन घुसपैठ और शक्ति के दुरुपयोग के लिए पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 30 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई। और पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम विदेश नीति के माध्यम से भारत को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में सरकार के कदमों पर जानकारी दे रहे हैं।
1: पिछले 12 वर्षों में भारत अपनी साहसिक पहलों के दम पर एक मजबूत ग्लोबल लीडर के रूप में उभरा है। इन पहलों में बड़े लक्ष्यों को हासिल करने का जज्बा और काम करने की लगन दोनों शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इन कोशिशों को जिम्मेदारी और सबको साथ लेकर चलने की भावना से जोड़ा गया है, जिससे भारत की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। भारत ने इंडिया फर्स्ट के सिद्धांत को सबसे ऊपर रखते हुए अपनी विदेश नीति में नई ऊर्जा भरी है, पुराने रिश्तों को मजबूत किया है और नए दोस्त भी बनाए हैं। दुनिया भर में भारत के जुड़ाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्य है। 2025 में श्रीलंका के पूर्वी तट पर चक्रवात दित्वा टकराया था, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। श्रीलंका के लोगों के साथ खड़े होकर भारत ने उन्हें तुरंत मानवीय सहायता और आपदा राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया। इस बचाव और राहत कार्य में भारतीय नौसेना, वायुसेना, थल सेना और आपदा प्रतिक्रिया के दलों ने मिलकर काम किया। भारत ने श्रीलंका को हर तरह की मदद दी। पानी साफ करने वाली किट, दवाएं व सर्जिकल उपकरण और 60 टन विशेष मशीनें शामिल थी। भारतीय नौसेना के जहाजों ने तमिलनाडु से 1000 टन से ज्यादा राहत सामग्री पहुंचाई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने 264 लोगों की जान बचाकर उन्हें सुरक्षित निकाला और 50 टन सामग्री एयरलिफ्ट की। इसके अलावा वहां फंसे 2500 से ज्यादा भारतीयों को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया। चक्रवात दित्वा के बाद प्रभावित इलाकों में रास्तों को फिर से जोड़ने और मजबूत करने के लिए भारत ने 14 लोहे के अस्थायी पुल भेजे। भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए श्रीलंका के बंदरगाह और नागर विमानन उप मंत्री जनित रवान कोदितवक्कू ने कहा कि भारत ने श्रीलंका के लोगों के प्रति प्यार और अपनापन दिखाया है। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी सफलता कोविड महामारी के दौरान देखने को मिली। भारत ने वैक्सीन मैत्री पहल शुरू की, जो इंसानों को ध्यान में रखकर की गई भारत की कूटनीति का एक बड़ा उदाहरण है। जनवरी 2021 से भारत ने 99 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को 30 करोड़ से अधिक वैक्सीन डोज सप्लाई की है। इसमें 50 से ज्यादा देशों को तोहफे में दी गई और कोवैक्स पहल के जरिए दी गई डोज शामिल है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने अपनी पड़ोसी प्रथम नीति के अंतर्गत अपने पड़ोसी देशों को सबसे आगे रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बांग्लादेश के रहने वाले फिजियोथेरेपिस्ट और योग शिक्षक डॉक्टर ज्योतिष को विश्वास ने कहा,
2: इंडिया जो किया हमारे लिए वैक्सीन, वो टाइम पे फास्ट रिस्पॉन्स किया और भेज दिया, हम भी वो वैक्सीन लिया तो हमारे भी बहुत अच्छा हुआ। हमारा रिलेटिव्स और देशवासी को लिए वो एक बहुत अच्छा तोहफा था इंडिया से, तो इसलिए हम बहुत कृतज्ञ हूँ।
1: पिछले 12 वर्षों में वैक्सीन मैत्री, ऑपरेशन सागर बंधु जैसी पहलों के जरिए भारत एक ग्लोबल लीडर के रूप में आगे आया है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्ष के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
3: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
0: देश में 2014 में स्टार्टअप की संख्या लगभग 350 थी, अब 2,35,000 से अधिक स्टार्टअप और 131 यूनिकॉर्न है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत अब स्टार्टअप के मामले में विश्व का तीसरा प्रमुख देश है।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों जैसे स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत, अटल इंक्यूबेशन सेंटरों की स्थापना, फंड ऑफ फंड्स की व्यवस्था तथा अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे कदमों ने भारत के उद्यमिता परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। आज देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम डीप टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष, रक्षा, कृषि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विविध क्षेत्रों तक विस्तारित हो चुका है। शिखर सम्मेलन में जिन स्टार्टअप्स को विशेष रूप से प्रदर्शित किया जाएगा उनमें मेडेव प्लस भी शामिल है। भारत फ्रांस इनोवेशन ईयर के अंतर्गत आयोजित यह सम्मेलन दोनों देशों के बीच उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्रों में सहयोग को

0: के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने ड्रोन, सीसीटीवी और आधुनिक निगरानी प्रणाली जैसी तकनीकों का उपयोग कर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पूरी यात्रा के दौरान शिविर स्थलों पर प्रबंधों की लगातार निगरानी करेंगे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के पंजीकरण, रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और आपदा प्रबंधन सहित सभी जरूरी सेवाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मौसम की मौजूदा स्थितियों और पूर्वानुमान के अनुसार तीर्थयात्रियों के जत्थों की आवाजाही को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिए। यह भी कहा गया कि यात्रा से जुड़े सभी स्थानीय लोगों और जानवरों का पंजीकरण किया जाए और उन्हें QR कोड वाले पहचान पत्र जारी किए जाएं। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जमीन के बदले आम आदमी को उचित कीमत दे रही है।
3: जमीन हैंडओवर करने का काम कर दिया, डेली हैंडओवर हो रहा है। अब तो 100 किलोमीटर के आसपास की जमीन हम लोग हैंडओवर कर दिया है। नॉर्थ बंगाल में कुछ एरिया जो चिकन लेग से लगा हुआ है उसमें फेंसिंग का काम BSF चालू भी कर दिया है। हम लोग समयबद्ध तरीके से ये भी पूरा करने का काम करूँ, ये देश की सुरक्षा का सवाल है।
1: कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। नीट पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच NTA ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि असैन्य जहाज पर जानलेवा हमला और खतरनाक साधनों का उपयोग गंभीर चिंता का विषय है और ये बात अमरीका राजनयिक को बताई गई। इसी तरह के हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। एक रिपोर्ट।
5: पश्चिम एशिया के लिए ये नई कूटनीतिक कोशिश बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की हमले रद्द करने की घोषणा से कुछ समय के लिए ये उम्मीद जगी थी कि इलाके में बड़े टकराव को टाला जा सकता है। हालांकि ईरान का कहना है कि किसी भी अंतिम समझौते को मंजूरी नहीं मिली है और कई बड़े मुद्दे अब भी नहीं सुलझे हैं। मुख्य अड़चनों में ईरान का परमाणु कार्यक्रम, रोकी गई संपत्ति की बहाली और हॉर्मुज जल डमरू मध्य से जुड़ी भविष्य की सुरक्षा व्यवस्था शामिल है। भले ही बातचीत करने वाले पर्दे के पीछे काम कर रहे हो, लेकिन पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां जारी हैं, जिससे ये खतरा बना हुआ है कि कोई भी गलत कदम कूटनीतिक प्रगति को तेजी से पटरी से उतार सकता है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर ड्रोन हमले करने का आरोप लगाया।

0: खेल जगत कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष बजपेयी। श्रोताओं, एक ऐसा खेल जो पूरे विश्व में काफी लोकप्रिय है, इसमें दो खिलाड़ी एक दूसरे पर मुक्कों से प्रहार कर अपनी जीत सुनिश्चित करते हैं। इस खेल में फिजिकली और मेंटली फिट होना बेहद जरूरी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉक्सिंग की। आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच नेहा कश्यप। आपने खेल जगत में अपनी मेहनत, समर्पण और प्रतिभा के बल पर एक अलग पहचान बनाई है। नेहा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर आपका।
0: नेहा जी, सबसे पहले आप अपना संक्षेप में परिचय हमारे श्रोताओं को दें, और आपके मन में कब ऐसा ख्याल आया कि आपको बॉक्सिंग के क्षेत्र में ही करियर बनाना चाहिए या बॉक्सिंग जैसे चुनौतीपूर्ण खेल को ही आपको अपनाना चाहिए?
1: जी बिल्कुल, मेरा नाम नेहा कश्यप है और मैं बॉक्सिंग कोच हूँ टीटी नगर स्टेडियम भोपाल में। मैं काफी छोटी थी और हम चार बहनें हैं, जिसमें कि मुझे लगता है कि उस टाइम पे मैं काफी उद्यमी रही थी और काफी नॉटी चाइल्ड थी मैं। बहुत ज़्यादा शरारतें करना, फिजिकल एक्टिविटी में थोड़ा इन्वॉल्व रहना। तो उस समय मेरे जो ब्रदर हैं मिस्टर रोशनलाल जी, उन्हें लगा कि इनको स्पोर्ट्स में डालना चाहिए, ये कुछ बेहतर कर सकती हैं। तो उन्होंने मुझे कहा, और वो मेरे भाई थे और काफ़ी अच्छे, खुद भी वो प्लेयर रहे हैं, अभी वो इंटरनेशनल कोच हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। तो इस तरीके से मैं खेल से जुड़ी और आज तक मैं उस चीज को जारी कर पा रही हूँ।
0: अब हम आपसे बात करते हैं आपके सफर की, जब आपने इस खेल को चुना और यहाँ तक जब आप पहुंची है एज ए कोच के तौर पे, तो यह सफर आपका कितना चुनौतीपूर्ण रहा?
1: जिस टाइम पे मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था और मैं बॉक्सिंग से जुड़ी थी, उस समय में गर्ल्स को लेकर, महिलाओं को लेकर इतनी कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। और अगर लड़कियां कुछ ऐसा करती भी थी कि फिजिकल एक्टिविटी से जुड़ी हुई, तो वो कुछ ही चीज़ें थी, जैसे कि भरतनाट्यम हो गया, कोई इंडियन क्लासिकल फोक या ऐसे कोई डांस हो, तो इससे ज़्यादा वो अपने लिमिट को क्रॉस नहीं कर पाती थी अगर वो कुछ फिजिकल एक्टिविटी में करती भी थी तो। और उस समय में स्पोर्ट्स से जुड़ना तो बिल्कुल ऐसा हो जाता था, जो सोच थी लोगों की, कि ये तो हमारे लिए समय की बर्बादी है
0: जी।
1: अगर आपको कुछ करना है तो आप पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए, कुछ बड़े लेवल पे करिए थ्रू एजुकेशन। तो उस टाइम पर ये काफी मुश्किल रहा था, क्योंकि जो भी इंसान बात करता था या सोचता था, तो उसे ऐसा लगता था कि ये तो समय खराब कर रहे हैं अपना, ये जो बच्चे हैं या जो महिलाएं हैं जो भी स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं छोटी, उस टाइम पे अपना समय बर्बाद कर रही हैं, और ये उन्हें आगे समझ में आएगा कि उन्होंने कितना अपना समय खराब कर दिया है। तो इस तरीके से थोड़ी कठिनाइयां तो आई थी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने, मेरे भाई ने, सबने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और उन्होंने यही कहा कि आप जो कर रहे हैं उसको पूरी लगन से और मेहनत से करिए, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर आप किसी चीज को ईमानदारी से कर रहे हैं तो आप उसमें सफल ना हो। तो ये चीज काफी अच्छी रही मेरे लिए।
0: निश्चित तौर पर जो सीख मिली आपको आपके घर वालों से, वो आपके काम आई और आज आप इस मुकाम पर हैं कि आप युवाओं को प्रशिक्षण दे रही है। नेहा जी, आपने जब बॉक्सिंग ज्वाइन की तो उस समय आप कितने वर्ष की थी?
1: जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट करी थी तब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी और तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं इसी खेल से जुड़ी रहूंगी। तब मेरा मानना ये था कि अभी मुझे सिर्फ मेहनत करनी है और जैसे कि हम किसी अंधेरे में टॉर्च लेके जा रहे होते हैं और हमें स्टेप बाय स्टेप थोड़ा बहुत रास्ता दिखता है, उस तरीके से सिर्फ मैंने एक सोच रखी थी कि बस धीरे धीरे चलते रहेंगे और जहां तक हम जा सकते हैं, जहां तक हमें वो रोशनी ले जाए, वहां तक जाने की हम कोशिश करेंगे।
0: अब बात करते हैं आपकी उपलब्धियों की, तो आपकी अभी तक की उपलब्धियों के बारे में हमें बताएं।
1: जब से मैंने खेलना शुरू किया एज अ प्लेयर, मेरा करियर बहुत ज्यादा नहीं रहा। मेरे नेशनल लेवल पर ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल है यूनिवर्सिटीज में और फेडरेशन कप, इन सब में मेरे मेडल रहे हैं। लेकिन मुझे इसके बाद इंजरी हो गई थी थोड़ा स्पाइन की, तो मुझे रोकना पड़ा और जब तक वो रिकवर हुई, मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे खेलने की जगह कोचिंग लाइन में आना चाहिए और एक गुरु की भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि शुरू से जो मैंने चीजें फेस करी, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो मेंटली हो, तो मैं नहीं चाहती थी कि अब आने वाली जनरेशन उसको फेस करे। तो मुझे लगा कि अब मुझे इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए लाइन को और एज अ कोचिंग थोड़ा एक्सपीरियंस देना चाहिए लोगों को।
0: नेहा जी, एक बॉक्सिंग कोच के रूप में खिलाड़ियों को तैयार करने में किन बातों पर सबसे अधिक ध्यान आपको देना पड़ता है?
1: होता यह है कि जो एक कोच रहता है, उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें रहती हैं जो उसे काम करवाना है बच्चों से, और बच्चों की भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा
0: जी
1: रहते हैं
0: जी
1: और अलग अलग स्तर के रहते हैं, जैसे कि कोई नेशनल प्लेयर है तो कोई स्टेट लेवल का है, कोई इंटरनेशनल है, और किसी का मेडल है किसी का नहीं है। अब इसके बाद बच्चा 6 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र के बीच में है, तो हर तरीके का बच्चा और हर तरीके का उसका बॉक्सिंग का एक्सपीरियंस, उसका करियर, इन सब के साथ डील करने के लिए कोच एक ही है, और कोच का मेंटल लेवल बिल्कुल सटीक है, उसे पता है कि मुझे क्या काम कराना है कैसे कराना है। लेकिन चुनौती तब आती है, चैलेंजेस तब फेस करने पड़ते हैं जब वही सेम चीज़ बच्चों के दिमाग में ना हो, क्योंकि बच्चे अलग अलग हैं, उनका अलग अलग दिमाग है, उनकी अलग अलग सोच है। अगर आज मैंने शाम को सोचा कि कल सुबह मैं बच्चों से 8 किलोमीटर रनिंग करवाऊंगी, तो हो सकता है कि उसके लिए मैं मेंटली फिट हूं लेकिन बच्चा नहीं है।
0: बिल्कुल
1: तो सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि आज ही मुझे आज का काम भी करवाना है और आज ही मुझे उनको कल के लिए मेंटली प्रिपेयर भी करना है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: ताकि वो अपना बेस्ट दे सके। क्योंकि सिर्फ बोल देना, कह देना, बच्चों ने सुन लिया, उस काम को कर लिया और बस वो हो गया, उससे कभी भी रिजल्ट नहीं आते हैं जब तक वो अंदर से भूख ना हो कि नहीं वो करना है और बहुत अच्छे स्तर पर करना है, उस लेवल पर करना है कि अब इसमें कुछ ना कुछ बेहतर होगा, जो कल हमने किया था उससे अच्छा होगा, आज 2 मुक्के हमने 1 सेकंड में मारे थे तो कल हमें 1 सेकंड में 5 मुक्के मारने हैं। तो ये जब तक अंदर से भूख नहीं आएगी, जब तक अंदर से चीजें उत्पन्न नहीं होगी बच्चों के अंदर कि नहीं हमें कुछ करना है, तब तक वो उस चीज में अच्छा रिजल्ट दे ही नहीं सकते हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती यही आती है कि हमारे साथ साथ हमें हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके मेंटल लेवल को भी हमेशा सही रखना है, हेल्दी रखना है और बनाए रखना है कि हमें काम किस तरीके से करना है और किस लेवल पर करना है।
0: जी। तो आप जो बच्चे हैं उनको किस तरह से मोटिवेट करती है?
1: एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं ना, हम उनको आज अगर मोटिवेट करेंगे तो वो कल कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मेंटली डाउन जाएंगे ही जाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो मैं उनको सबसे पहले ये बोलती हूँ कि आपको कुछ नहीं करना, बस करना है, आपको सिर्फ उस काम को करना है और जितना हो सकता है आप उसमें मन लगाएं। और दूसरी चीज कि जैसे जैसे आप इसी काम को करते जाते हैं और पूरा फोकस होकर करते हैं, बिना किसी मतलब परेशान हुए, चिढ़ते हुए, अगर आप उसको संयम से उस काम को करते हैं तो धीरे धीरे आप खुद उसमें निपुणता हासिल करने लगते हैं। और एक्चुअली क्या है कि मेरे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको मैं सबको मेडिटेशन करवाती हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाती हूँ, ताकि कहीं पर भी उनके साथ आगे चल के कहीं जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ना लगे,
0: जी
1: उनको उतना ज़्यादा परेशान ना करें। और इस तरीके से हम आपस में एक एज अ टीम वर्क हम काम कर रहे हैं अभी।
0: नेहा जी, फिजिकली फिट होना तो जरूरी है ही बॉक्सिंग में, और साथ ही मेंटली फिट होना भी जरूरी है। जैसे आपने कहा मेंटली फिट रखने के लिए आप उनको मेडिटेशन कराती है, फिजिकल फिट रखने के लिए उनको कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेस है जो करना आवश्यक है और वो करना जरूरी है हर प्लेयर के लिए?
1: एक्चुअली यहाँ बात सिर्फ प्लेयर की नहीं है, कोई भी पर्सन, कोई भी, चाहे वो किसी भी एज का क्यों ना हो, सभी के लिए फिजिकल फिटनेस और मेंटली हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की, तो कुछ ना करे कोई भी, चाहे वो प्लेयर हो, हेल्दी प्लेयर हो या वो इंजर्ड प्लेयर हो, वो छोटी छोटी कुछ चीज़ें, या वो नॉन प्लेयर पर्सन हो, वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखे, जैसे कि अपनी एज के हिसाब से अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है या कोई बुजुर्ग है तो वो वॉकिंग हमेशा करें। आप छोटी छोटी चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि किराना तक जाना है तो आप स्कूटी से ना जाएं, बाय वॉक जाएं। अगर आप सुबह उठ रहे हैं तो आप थोड़ा सा सैर बाहर नहीं कर पा रहे तो अपनी छत पर कर लें, थोड़ा सीढ़ियाँ चढ़ लें, ये सब चीज़ें। और जो प्लेयर हैं उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कभी भी फिजिकल एक्टिविटी को छोड़ना नहीं है। मतलब कि ऐसा वो दिन ना आए जिस दिन हमें लगे कि नहीं भाई आज तो बिस्तर से नहीं उठना है, आज तो मन नहीं कर रहा, आज तो सोना है, बस वो परिस्थिति नहीं आनी चाहिए, वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। आपको बिस्तर से उठना है, आपको थोड़ा सा दौड़ना है, आपने 15 मिनट 20 मिनट जॉगिंग कर ली, थोड़ा सा आप स्विमिंग करने चले गए, या कभी आपने साइकिलिंग कर ली, आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ही। अगर कोई बॉक्सर है उसे फुटबॉल वॉलीबॉल खेलना पसंद है तो थोड़ी देर जाके वो खेल आए। मतलब ये वो कंडीशन है जहाँ पर आपका मन नहीं है या फिर आपको इंजरी है, आप कुछ कर नहीं सकते, तो भी मैं कहूँगी कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों को करें। जैसे कि हम हमेशा दिन में 3 बार खाना खाते हैं, पर सपोज कभी हमारा मन नहीं है तो हम हल्का फुल्का कोई फ्रूट ले
0: बिल्कुल
1: लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: मतलब हमें किसी भी चीज़ की कंसिस्टेंसी को ब्रेक नहीं होने देना
0: बिल्कुल।
1: है, हमें उससे चलते रहने देना। और सेम यही मेंटल हेल्थ के लिए है कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो पूरा हमारी लाइफ को, हमारे अपीयरेंस को, हमारे एटीट्यूड को, हमारे बिहेवियर को बताती है कि हम कैसे हैं, और वो ही उसको क्रिएट करती है एक्चुअल में।
0: जी
1: अगर हम मेंटली फिट रहेंगे, थोड़े काम रहेंगे, तो हम हर सिचुएशन को डील कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि उनके जीवन में परेशानियां नहीं आएगी, उनको चैलेंजेस नहीं होंगे। हाँ, बस ये है कि जो मेडिटेशन करते रहते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते रहते हैं, अपने आप को थोड़ा शांत रख पाते हैं, उनके लिए वो परेशानियां उतनी बड़ी नहीं रहेंगी जितनी बाकी लोगों को
0: बाकी लोगों
1: लगती
0: के लिए
1: हैं।
0: रहेगी।
1: जी
0: बिल्कुल सही
1: बिल्कुल।
0: बात है नेहा जी। एक कोच को किस प्रकार अपने आप को अपग्रेड करना होता है वक्त के साथ?
1: सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि जितने भी कोचेज हैं, वो चाहे रीसेंट कोच बने हों या वो पुराने कोच रहे हैं, उनको फिजिकल एक्टिविटी खुद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब वो खुद फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो होता यह है कि सरकार जो है वो समय समय पर 6 महीने, साल भर में कोई ना कोई कोर्सेज निकालते रहते हैं, जो कि या तो SNC के, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग के रहते हैं हमारी फिजिकल एक्टिविटी से जुड़े, या फिर साइकोलॉजी के रहते हैं हमारे मानसिक रूप से जुड़े हुए, तो ऐसे वो कोर्सेज निकालते रहते हैं। पर वो आप कोर्सेज करने चले जाएं और आप फिट ही नहीं हैं, तो आप उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे।
0: बिल्कुल
1: जैसे कि अगर मैं डेली वर्कआउट कर रही हूँ, मैं डेडलिफ्ट उठा रही हूँ 60-70 किलो का, या मैं कोई डंबल उठा रही हूँ 15-17 किलो का, और फिर मैं कुछ दिनों बाद कोर्स के लिए चली जाऊँ और वहाँ मुझे कहा जाए कि आपको डेडलिफ्ट करना है इस तरीके से, अभी तक आप जो करते थे वो टेक्निक पुरानी थी, अब आपको इस टेक्निक से करना है, अगर वो बताएं तो मैं उसको कर तो पाऊं। अब अगर मैं खुद ही नहीं कर रही थी, तो मैं उसको एक्सपीरियंस कैसे करूंगी, मैं
0: बिल्कुल
1: उसे
0: बिल्कुल
1: सीखूंगी कैसे?
0: बिल्कुल
1: सिर्फ देखकर मैं ये समझ पाऊंगी कि हाँ ये ठीक है, वो गलत है, लेकिन खुद से एक्सपीरियंस करना एक एक मसल को, और जब मैं वो लोड ले रही हूं, तो उस पेन को, उस मेंटल स्ट्रेंथ को, कि हाँ मैं कर सकती हूँ, हाँ मैं नहीं कर सकती हूँ, इन सब चीजों को अगर मुझे एक्सपीरियंस करना है, तो एक कोच को खुद हमेशा फिजिकल एक्टिविटी करते रहना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और समय समय पर जो हमारी सरकार है, वो कोई ना कोई कोर्सेज निकालती रहती हैं, तो तरीके से आप खुद को अपग्रेड रख सकते हैं।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने। अब हम आपसे जानना चाहेंगे आपके अनुसार बॉक्सिंग महिलाओं के आत्मविश्वास में कैसे मदद करता
1: बॉक्सिंग जो है वो एक कॉम्बैट स्पोर्ट्स है,
0: है?
1: और ये जो हमारा बॉक्सिंग गेम है, वो आपको सिर्फ शारीरिक रूप से ही स्ट्रांग नहीं बनाता है, इवन मेंटली भी आपको स्ट्रांग बनाता है। क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं छोटी थी, तो मैं छोटी छोटी बातों पे झगड़ने लगती थी, गुस्सा करती थी, लेकिन जब से मेरी पूरी एनर्जी स्पोर्ट्स में गई है, इस गेम में गई है, इस फिजिकल एक्टिविटी में गई है, तब से मेरा मन बहुत शांत हो गया है, और मैं छोटी छोटी बातों पे परेशान, एकदम से गुस्सा नहीं दिखाती हूँ। मैं अपना सारा गुस्सा, जो मेरा सारा एग्रेशन है, वो सारा का सारा वो खेलते हुए ही निकल जाता था। तो बाकी जगहों पे मैं काफी काम और फ्री फील करती थी। और इसी तरीके से जितनी भी जनरेशन है, मुझे लगता है कि सभी को कोई ना कोई स्पोर्ट्स करना चाहिए, किसी ना किसी खेल से जुड़े रहना चाहिए, ताकि अगर आप थोड़े एग्रेसिव हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो वो आपका सारा का सारा जो एनर्जी है वहाँ पर निकल जाए, और आप बेहतर सोचने समझने की क्षमता रखें।
0: जी नेहा जी, युवाओं को फिट और अनुशासित रखने के लिए आप क्या सलाह देना चाहेगी?
1: मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि आप जिस भी उम्र के हों, या जो भी काम कर रहे हैं, अच्छी हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहा है, तो कोई डांस से जुड़ा हुआ है, कोई सिंगिंग से जुड़ा हुआ है, काफी सारी चीजें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको एक बेहतर इंसान बनना है मानसिक रूप पर और शारीरिक रूप पर, तो आप कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। कुछ ना करें तो जॉगिंग जरूर करें, थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर करें, 5 मिनट के लिए ही सही, थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लें, साइकिलिंग कर लें, और रोजमर्रा की जो आपके काम रहते हैं उनको बाय वॉक करें, जितना भी आप कर सकते हैं, जो आसपास के 400-800 मीटर के दायरे में जितने भी आपके काम आते हैं, तो वो सारे आप पैदल जाकर ही करें, उसके लिए आप स्कूटी या बाइक ना उठाएं,
0: जी
1: तो वो काफी इफेक्टिव रहेगा आपके आगे की हेल्थ के लिए।
0: जी नेहा जी, निश्चित ही आपसे बातचीत करने के बाद हमें यह महसूस हुआ, पहले के समय में हम कहते थे कि सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में ही कोई अपना भविष्य सवार सकता है, पर वर्तमान परिदृश्य में अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर खेलों में भी एक अच्छा करियर विकल्प है। नेहा जी, आप हमारे इस व्यूज में आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।

0: अभी आपने अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच नेहा कश्यप से की गई यह बातचीत सुनी। इसी के साथ खेल जगत के आज के अंक से हमें इजाजत दीजिए, अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।
1: खेल जगत में अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉक्सिंग कोच नेहा कश्यप से मनीष गजभिये की बातचीत। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत अरिजीत सिंह की आवाज में है। फिल्म का नाम है यंगिस्तान।
2: कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे।
1: जीत गांगुली ने इस गीत की धुन बनाई है। गीत लिखा कौशर मुनीर ने।

अगला गीत लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, जैम ने इसका संगीत तैयार किया है। रईस फिल्म का ये गाना है जिसे गाया अरिजीत सिंह और हर्ष।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में गाए सिटी लाइट फिल्म के गाने के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय रात्रि के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को छाया पाठक का नमस्कार। श्रोताओं, पहला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वयंवर फिल्म से। मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें हैं, गुलजार के बोल, संगीत राजेश रोशन का। इस गीत को सुनना चाहा है कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना, आदित्य, अदिति शिवानी और मीनूरा श्रीमाली ने। गौतम नगर जिला नांदेड़ से ये पत्र आया प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले का। छुआ जो मैंने एक फूल गुलाब का, सारे बदन से तेरी खुशबू आने लगी।

अगला गीत सुनना चाहा है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी मनन और तानिया ने। इन श्रोताओं की पसंद है सुहागन फिल्म का गीत जिसे गाया मोहम्मद रफी ने। संगीत तैयार किया मदन मोहन ने, गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने। न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला गीत इन श्रोताओं की पसंद का है। कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। भाटापारा दत्तरेंगी से पतराया द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश, तारनी, सूरज, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर का। इन श्रोताओं ने सुनना चाहा है कामचोर फिल्म का गीत, जिसे आवाजें दें किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। इंदिवर के बोल हैं, संगीत राजेश रोशन ने तैयार किया है। एक चेहरा जो आंखों में बसा रहता है, एक तसव्वुर है जो तन्हा नहीं होने देता।

अगला गीत बदलते रिश्ते फिल्म से लिया है, जिसे गाया है लता मंगेशकर महेंद्र कपूर ने। अनजान के बोलों को संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुना चाहा घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत हेमेंद्र और सनमती पंचोलिया ने। मेरे दिल की धड़कन अक्सर बढ़ जाती है, मेरे दिल की धड़कन अक्सर बढ़ जाती है जब तेरी खुशबू इन हवाओं से मिलकर मुझे छू जाती है।

अगला गीत सुनना चाहा है सरोचोक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम आयशा खान हदिया असमा सालिया शोएब खान राव भाई शाहिद भाई गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने इन श्रोताओं की पसंद है अमानत फिल्म का गीत जिसे गाया मोहम्मद रफी ने। दूरी ऐसी कि मिटती ही नहीं मैं तेरे पास भी आऊं तो कहां तक आऊं।

कार्यक्रम का अंतिम गीत जूली फिल्म से लिया है, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा, संगीत तैयार किया राजेश रोशन ने। सुना चाहा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभ चंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल ने। हर मोड़ पर नई शुरुआत हो सकती है, दूर रहकर भी बात हो सकती है। माना कि आपसे दूर है बहुत, लेकिन आंखें बंद करके तो मुलाकात हो सकती है।

लता मंगेशकर की आवाज में गाए जूली फिल्म के इस गाने के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त करने के छाया पाठक को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 10:30 बजे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में लीजिए अब सुनिए सोनू मजूमदार का बांसुरी पर बजाया राग सरस्वती।

0: अभी आप सुन रहे थे रोनू मजूमदार का बांसुरी पर बजाया राग सरस्वती। इसके साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, रात्रि के 11 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से, 11:05 पर आकाशवाणी दिल्ली से ही आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस कार्यक्रम में पिछले 12 वर्षों के दौरान स्टार्टअप के क्षेत्र में भारत की महत्वपूर्ण यात्रा दिखाई जाएगी।
2: भारत सरकार की शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुगम श्री अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्री शाह ने तीर्थ यात्रा के मार्ग पर बहुस्तरीय सुरक्षा ग्रिड बनाने का निर्देश दिया। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 28 अगस्त तक चलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज हैदराबाद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की रक्षा अनुसंधान तथा विकास प्रयोगशाला में उन्नत हथियार प्रणाली परिसर का उद्घाटन किया। ये परिसर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल परिसर का हिस्सा है। रक्षा मंत्री ने भारत की तकनीकी उत्कृष्टता, रणनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा में DRDO की मिसाइल प्रणाली तथा सामरिक समूह प्रणाली के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण साकार करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई उपाय किए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रेलवे भर्ती बोर्ड प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। श्री वैष्णव ने पारदर्शी, सटीक और प्रौद्योगिकी आधारित व्यवस्था पर जोर दिया। श्री वैष्णव ने विभागीय परीक्षाओं को कंप्यूटर आधारित टेस्ट में बदलने की प्रगति की भी समीक्षा की। रेल मंत्रालय ने बताया कि भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2025-26 में 6 प्रमुख श्रेणियों में 47,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर 43,000 से अधिक उम्मीदवारों की भर्ती की है। पश्चिम बंगाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में ये जानकारी दी। श्री अधिकारी ने इस परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया। उन्होंने बताया कि लोग भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए अपनी जमीन दे रहे हैं। कैबिनेट सचिव डॉक्टर TV सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस बीच NTA ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा की अवधि 15 मिनट बढ़ाकर 195 मिनट कर दी है। विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमेरिकी दूतावास के उप प्रमुख जैसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमेरिकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल हैं। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। पीवी सिंधु ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की चेन सू यू को 21-6, 21-9 से हराया। अब उनका सेमीफाइनल में मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आज ग्रुप बी में सह मेजबान कनाडा का मुकाबला बोस्निया हर्जेगोविना से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय जूलियट आरकेल। Prime Minister Narendra Modi today highlighted that from financial inclusion and entrepreneurship to education, healthcare, sanitation, housing, sports, science and governance, women are playing a prominent role across diverse sectors. In a social media post, Mr. Modi said the growing participation of women in emerging fields such as drone technology is opening new avenues of opportunity and transforming the development landscape across the nation. He noted that over the last 12 years, the NDA government has worked to further women-led development and this is visible across sectors. Union Home Minister Amit Shah has said that the government is fully committed to ensuring the highest level of security and a smooth pilgrimage experience for devotees undertaking the Amarnath Yatra. He said this while chairing a high-level meeting in New Delhi to review the preparedness of the Sri Amarnath Yatra. The Amarnath Yatra will begin on 3rd July and conclude on 28th of August. Fencing work in the border areas of West Bengal has started. West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari today informed the media at a program in Kolkata. Mr. Adhikari said people are giving their land for fencing along the Indo-Bangladesh border.
4: The work of handing over the land has been completed. So far, we have handed over land covering nearly 100 kilometers. In North Bengal, adjoining the Chicken's Neck Corridor, the Border Security Force has already begun the fencing work. We will complete this task within the stipulated time frame as well. This is a matter of national security.
3: Defence Minister Rajnath Singh today inaugurated the Advanced Weapons System Complex at the Defence Research and Development Organisation's DRDO Defence Research and Development Laboratory, DRDL, part of the APJ Abdul Kalam Missile Complex during his visit to Hyderabad in Telangana. Addressing the gathering, Mr. Singh said that the government has undertaken a number of measures over the last 12 years to promote research and development with the objective of realising the vision of Make in India and Atmanirbhar Bharat in the field of defense technologies. External Affairs Ministry today summoned Shah Jade Affair of the United States, Jason Meeks, and launched a strong protest regarding continuing attacks by U.S. naval forces on commercial vessels carrying Indian mariners in the Gulf of Oman. The ministry said in a statement that such actions are unacceptable and undermine the safety, security, and stability of international maritime commerce in a sensitive region at a difficult time. The Shah Jade Affair was requested to convey India's strong concerns to his authorities and to ensure that U.S. forces operating in the region take all necessary measures to prevent the loss of civilian life. As Prime Minister Narendra Modi and French President Emmanuel Macron prepare to jointly inaugurate the Bharat

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है। सुबह की इस कोमल बेला में आपका स्वागत है। कार्यक्रम भोर सुहानी के साथ मैं आपकी हमसफर अर्चना गोयल, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, ये वो समय है जब दुनिया धीरे धीरे जाग रही होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस शांत समय में अपने सपनों को नया आकार दे रहे होते हैं। कहते हैं कि सुबह सिर्फ समय नहीं होता, एक एहसास होता है, और आज इसी एहसास को महसूस करने के लिए हम और आप साथ हैं।

देखिए ना, बाहर पेड़ बिना शिकायत के खड़े हैं, हवा बिना शोर के चल रही है, आसमान बिना रुके रंग बदल रहा है। प्रकृति हर सुबह एक बात सिखाती है कि जीवन को सहज बनाइए। सब कुछ अपने समय पर खिलता है, क्योंकि यही मौसम होता है। निधिया से बहारें जब जागती हैं,

अगर आपके पिछले कुछ दिन कठिनाई में बीते हों, तो ये सुबह आपके लिए एक संदेश लाई है। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह आती है। इसलिए आज अपने लिए बस एक काम कीजिए, मुस्कुराइए बिना वजह।

वाकई बहुत ही सुंदर गीत, मुस्कुराते रहो और गम छुपाते रहो। दोस्तों, सुबह की ये नरम धूप, ये शांत हवा, एक कप चाय, खिड़की से आती हल्की रोशनी और मन में कोई जल्दी नहीं, सुबह शायद इसी का नाम है। और ये कुछ पल उम्मीद है कि आपका दिन सुंदर बनाएंगे।

आप सुन रहे हैं भोर सुहानी, जहां हर सुबह सूरज नहीं उगता बल्कि उम्मीदें जागती हैं, मन मुस्कुराता है और दिन को एक नई दिशा मिलती है। आज की सुबह भी कुछ अलग है। आज हम दिन की शुरुआत करेंगे जोश से, शोर से नहीं, ऊर्जा से लेकिन जल्दबाजी से नहीं। चलिए मन की खिड़कियां खोलिए और खूबसूरत सुबह को अपने अंदर बिखेर दीजिए।